राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभ्युदय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब

0: अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
1: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतर्राज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
6: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
7: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
8: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
9: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं, मेहनत का रास्ता चुनें। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD प्रिडिक्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Baluchistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High Court has cancelled OBC All Certificates issued under the OBCA and OBCB classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. We have more details on this from our correspondent.
12: The Calcutta High Court has cancelled OBC.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:23 और आज 13 अगस्त की सुबह, दिन है आज गुरुवार का, बहुत ही प्यारी सी सुबह है और आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आज की मॉर्निंग। साथियों, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मौसम बहुत औसम है, कल भी बहुत कड़क वाली धूप थी और आज भी बहुत कड़क वाली धूप है। आज के वेदर को देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आज बहुत ज़्यादा भयंकर धूप रहने वाली है। इनफैक्ट सूरज चाचू को देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि यार सच में बहुत ज़्यादा भयंकर धूप है आज की सुबह। आप जहां भी निकल रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या रहेगा आज का टेम्परेचर, कैसा रहने वाला है आज का वेदर, सारी अपडेट आपको बताऊंगा ना थोड़ी देर में। अभी तो मेरी कंपनी शुरू हुई है, अब से लेके 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे मैं आपको मिलूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छी गाने से होगी आज की किक स्टार्ट, क्योंकि वीकेंड वाली वाइब आपको मिलने वाली है इसी स्टेशन पे। बट उससे पहले आज का थॉट ऑफ द डे, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। आज का मेरा बड़ा प्यारा सा

कहते हैं दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं है, बस अपनी रोशनी बढ़ाता है। उसी तरह जीवन में हर नकारात्मकता का जवाब बहस से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से और सकारात्मक सोच के साथ हमें देना चाहिए। कहते हैं ना, जब सोच मजबूत होती है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें ज्यादा देर रोक नहीं पाती हैं। श्रोताओं, तो किसी भी चीज़ को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बस एक पॉजिटिविटी के साथ जो है आप शुरू कीजिए। अगर आज दिन की शुरुआत भी आप कर रहे हैं तो एक अच्छे से स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपकी सुबह भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए श्रोताओं, 8:25 हो गए, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद पे RJ आनंद को, और अब से लेकर 10 तक यहाँ पर आपको बेहतरीन गाने मिलेंगे, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्या चल रहा है हमारी लोकैलिटी में, सारी इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग सब कुछ आपको पता लगेगा मेरे साथ। आने वाला ब्यूटीफुल ट्रैक हेलो ब्रदर से निकल गया है राइट नाउ, आपके रेडियो सेट पे इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। शानुदा एंड अलका याग्निक जी की आवाज का जो कॉम्बिनेशन है यार, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एंड सच में व्हाट अ सॉन्ग। इसी गाने के साथ करते हैं आज के सफर की किक स्टार्ट। अरे वाह, आप कहाँ जा रहे हैं, स्टेशन रोड, दिल्ली रोड, या आप जा रहे हैं कांच रोड, आप जहां भी जा रहे हैं गुड लक, आप पहुंचिए। अच्छा, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे आई एम श्योर आप। चलिए आप निकलिए, फिलहाल मैं अभी यहाँ पर गाना छोड़ के आपके लिए जा रहा हूँ बहुत प्यारा सा, थोड़ी देर में लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा आज का दिन क्यों खास है। आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही FM मुरादाबाद 89.6। I'll be right back. Good morning.

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, और दिल से कहिए जियो बिंदास।
4: 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: बिल्कुल जी, गुनगुनाना बहुत जरूरी है। वापस से मेरी एंट्री हुई है 8:37 का समय। आप जहाँ भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी स्कूल से बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी जो है अब निकल रहे हैं अपने नाश्ते वाश्ते का सामान लेने। तो अपाजी जहाँ भी जा रहे हैं आप जाइए और रेडियो ऐसे ही सुनते रहिए। ढेर सारे संदेश आपके मुझे मिल रहे हैं, और आप लोग जो फोटो शेयर कर रहे हैं ना आज की सुबह, मतलब माइंड ब्लोइंग। कभी कभी ना कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं यार आप लोगों। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तारीख हो गई है 13। इंडिपेंडेंस डे की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और कल भी एक बहुत ही सुंदर भव्य यात्रा हुई मुरादाबाद की इंपीरियल तिराहे से जो निकाली गई। कल आप लोगों ने शायद उसके स्टेटस आई एम श्योर देख लिए होंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत सारे पोस्ट किए गए कल, और इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर जो है इस हर घर तिरंगा अभियान को इतना सक्सेसफुल बनाया, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं खुद वहां पहुंचा, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कल का ये जो सिनेरियो था ना एब्सोल्युटली अमेजिंग था यार। और सिर्फ कल ही नहीं, अभी हर घर तिरंगा अभियान हमें इसको कंटिन्यू रखना है। इंडिपेंडेंस डे पर भी हम, उससे पहले भी हम अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं, और उसको लहराते हुए एक सेल्फी भी हम अगर ले लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना, चार चांद लग जाएंगे। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो हमें भी आप टैग कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां। बात जब अपने देश की आती है, अपने देश के पर्व की आती है, तो अंदर से गूज़बम्स आने लगते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, ये मेरे साथ नहीं आपके साथ भी होता होगा आई एम श्योर। श्रोताओं आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन की स्पेशलिटी क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है आज के दिन का इतिहास।

0: ये सुनकर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए मैसेजेस तो आपके हम पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, क्या कुछ स्पेशल रहा है आज की तारीख में। तो आपको बता दें, भारत की पहले स्वदेशी डिज़ाइन किए गए विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2HT2 ने सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी थी आज के दिन 1951 में। श्रोताओं, और आज के दिन आपको बताते चलें एक और खास चीज़ हुई जिसको लेकर आज का दिन और भी स्पेशल हो गया है। एंड इजराइल और संयुक्त अरब इमीरात यानी कि UAE ने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आज ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की थी आज के दिन श्रोताओं, यानी कि 13 अगस्त सन 2020 में। एंड आज अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ के लोक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड्स डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक और बहुत ही स्पेशल दिन है जो आज मनाया जाता है, और एक बहुत ही कमाल की सेलिब्रिटी का बर्थडे हम अभी सेलिब्रेट करेंगे। जरा सी देर में उनके कुछ गाने यहाँ पर प्ले करूंगा एंड शायद आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो बड़ा मजा आ जाएगा, आपके दिमाग का बत्ती गुल मीटर चालू होगा थोड़ी देर में। इसके अलावा आज के दिन जन्मे कुछ खास कलाकारों की बात कर लेते हैं, इतिहास के पन्नों की बात तो हम कर ही रहे हैं, उसी बीच एक और बहुत ही खास चीज़ जुड़ जाती है। अमेरिका समाचार पत्र इफो अमेरिकन का जो प्रकाशन था वो आज के दिन शुरू हुआ था सन 1892 को। श्रोताओं, आज के दिन एंड इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की थी सन 1902 में आज के दिन श्रोताओं। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की जिनका हम बर्थडे आज सेलिब्रेट करते हैं। तो उषा जी का नाम सबसे पहले आता है, 1984 में इनका जन्म हुआ था। अब ये कौन है इनके बारे में बता देता हूँ, ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं एंड इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। और वैजयंती माला भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही, 1936 में इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन श्रोताओं। और भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंट मल्टी टैलेंटेड एक ऐसी अभिनेत्री को आज हम याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज ना होकर भी वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगी। उनकी फिल्में और उनके गीत खूबसूरत खूबसूरत जो हमारे दिलों को मनों को छेड़ देते हैं। भाई कौन है ये कमाल की अदाकारा, इनके बारे में ज़रूर बात करूँगा जरा सी देर में। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके प्यारे मैसेजेस का।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को प्रोग्राम चल रहा है आपका फेवरेट पसंदीदा बिंदास मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग मैगजीन शो और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। चलिए इस गाने को सुनते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए जनाब।

0: आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल,
1: मेरा इंतजार तो
0: 02444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: साथियों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और अभी आपको बता दें एक मेरे पास बड़ा प्यारा संदेश पहुंचा है जिसको मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा और उस मैसेज में लिखा है कि जो चीज आज आपको समझ नहीं आ रही है हो सकता है कल उसी के लिए आप शुक्रिया करो। कभी कभी कुछ चीजें आनंद जी समझ में नहीं आती हैं लेकिन वक्त के साथ हमें पता लगता है कि अगर ये चीज नहीं होती तो शायद उसके पीछे ये अच्छी चीज हमारे सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कहा है आपने। ये पूनम जी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त लाइन पार्क कुंदनपुर से। गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े आज की सुबह। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपका ये संदेश पढ़कर। इसी बीच एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है। नमस्कार आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अरे थैंक यू सो मच यार, माय प्लीजर। एंड मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे संदेश साझा करते हैं तो हमें भी बहुत ही खुशी होती है। आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है और इनका नाम है तारीख। ये मुझे मैसेज करते हैं मुरादाबाद से, लिखते हैं आनंद जी सुबह सुबह इतनी अच्छी और इतनी प्यारी जानकारियाँ आप लेकर आते हैं और इन जानकारियों के साथ साथ जो आपका मनोरंजन करने का तरीका होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह हम तो बस उनके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपकी जिंदगी में आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिले और बाकी जिन लोगों की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है गेट विल सून, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। श्रोताओं आपको बताते हैं हर घर तिरंगा अभियान 2026 15 अगस्त पर जो है अपने घरों में तिरंगा फहराना है। तो भैया अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अपने जो है ध्वज को फहराइए और उसके बाद इसको उधर उधर मत फेंकिए क्योंकि सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए जोश जुनून में आ जाते हैं उसके बाद हमारा तिरंगा कहीं कहीं पड़ा होता है, वो नहीं करना है। अगर आप अपने तिरंगे से जेन्युइनली प्यार करते हैं तो उसे प्लीज़ एक सेफ जगह पर रखिए क्योंकि तिरंगे की रिस्पेक्ट आप भी जानते हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इधर उधर नहीं फेंकना है। इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा एंड इन बीते दिनों में मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है आज के समय में कौन सी चीज से इंसान को आजादी चाहिए। हमारा देश आजाद हो गया है तो हम सभी को पता है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें आजादी नहीं मिल रही है। सो आप मुझे बताओ इस इंडिपेंडेंस डे आप कौन सी चीज से आजादी चाहते हो। जो भी आपको लगता है व्हाटएवर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896। मुझे तो यार थोड़ी सी फोन से आजादी चाहिए। अब आप बोलोगे आनंद ये तो बहुत ईजी है। भाई ईजी तो नहीं है, तभी तो मुझे इस चीज से आजादी चाहिए। थोड़ी सी फोन से आजादी मिल जाएगी ना तो शायद हम खुद को कंफर्टेबल फील करा पाए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना आप ना कर भी ना छोड़ नहीं पाते, वो आपकी हैबिट में आ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्लीज टेल अस, आप बताओ मुझे आप इस इंडिपेंडेंस डे कौन कौन सी चीजों से चाहते हैं कि आपको आजादी मिले। आप मुझे जरूर बताइएगा व्हाट्सएप करके कौन सी ऐसी चीज है। कोई आपकी आदत हो सकती है, कोई आपकी आपको बताया आसपास में कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लगता है जैसे कुछ लोगों को गुस्से से आजादी चाहिए कि भैया मुझे तो गुस्सा बहुत आता है मुझे इस चीज से थोड़ा सा आजाद होना है। तो आप भी मुझे बता सकते हो इस इंडिपेंडेंस डे और कौन सी चीज है जिससे आपको आजादी चाहिए। आप डेफिनेटली अपनी प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हो मेरे नंबर के थ्रू 9837896896 पे आप अपने संदेश हम तक पहुंचाएंगे तो हमें खुशी होगी। एंड अभी मैं आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक प्ले कर रहा हूं, इसको सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अभी लौट कर आएंगे तो फिर आपसे एक खास बात मैं करने वाला हूं एंड वो कौन सी खास बात है जरूर आपको पता लगेगी। बस आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हौले हौले आपको बता देंगे हम इसी स्टेशन पे। तो आप स्टे ट्यून रहिए और इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा ट्रैक है एंड आप जो मैसेज कर रहे हैं ना बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आई विल बी राइट बैक एंड आपके सारे मैसेज को यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगा अभी जरा सी देर में। और अभी ये एक प्यारा सा गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल ट्रैक, नजर में सच जादू कर दिया आतिफ असलम साहब की आवाज। यू थिंक अबाउट अक्षय खन्ना, थिंक अबाउट बिपाशा बसु एंड व्हाट अ सॉन्ग एंड साथ में सैफ अली खान।
1: पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा।
0: भाई मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा बिकॉज इतनी अच्छी आवाज ना है मेरी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: भाई स्टेशन की घड़ी ये कह रही है आनंद जी 9 बजने को है जरा सी देर में, एंड अभी फिलहाल कुछ काम की बात हो जाए फटाफट से, मैं जरा काम की बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वेदर चेक। हाय मॉर्निंग मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, बंदे को प्यार से आनंद कहते हैं जी। राइट नाउ जो करंट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि गर्मी आपको अच्छी खासी लगने वाली। हवा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ह्यूमिडिटी 77%, यानी कि चिपचिपी वाली गर्मी आज आपको लगने वाली। थोड़े से पसीने पसीने हो जाएंगे आप, इसलिए हाइड्रेटेड रहिए भैया, पानी पीते रहिए, बहुत जरूरी है। एंड बात करूँ इस टेम्परेचर की लोएस्ट एंड हाइस्ट की, तो भैया देखिए ये हाइस्ट जाएगा 36 एंड लोएस्ट जा सकता है 28 डिग्री पर भी पहुंच सकता है। सो ये रहेगा कुल मिला के आज का वेदर। गर्मी जो है ठीक ठाक रहेगी, एयर क्वालिटी तो भैया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, मतलब ओके। लेकिन मुझे बारिश नजर नहीं आ रही, फिलहाल बादल नजर आ रहे, हो सकता है दोपहर के बाद थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए। बाकी तो यार सूरज चाचू लग रहा है नाराज होके बैठे हुए, मुझे इनको मना के आना पड़ेगा। पता नहीं क्या ही दिक्कत क्या हुई यार सूरज चाचू को, मतलब कल से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं यार, इतनी भयंकर गर्मी करा दी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, कौन सी किसी से फाइट वाइट करके आए क्या सूरज चाचू। लेकिन फिलहाल मैं आपसे फाइट करने वाला हूं, आप मुझे ये बताओ ये जो अभी गाने चल रहे हैं ये कौन से अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है आज की सुबह, मुझे इनका नाम बताना है। सो यहां पर कुछ बैक टू बैक गाने प्ले कर रहा हूं। शी इज आइकॉनिक स्टार यार। आज ही के दिन जन्म हुआ था इनका। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज क्या परफेक्ट होती थी इनके ऊपर, अगर आप समझ पा रहे हैं कौन सी अभिनेत्री की बात करूं। क्या गाना था ये। अच्छा अगला वाला सुनो, ये तो मैंने पिक्चर भी देखी थी यार, बहुत बहुत प्यारी फिल्म थी। एक और गाना लगाता हूँ मैं आपको, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा ये कौन सी अभिनेत्री हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। यस चलो जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, अगर आपको समझ में आ गया है मैं कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उठाइएगा अपना फोन, टाइप कीजिएगा अपना नाम और आज की सुबह ये जो गाने चल रहे हैं कौन सी अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है। अच्छा एक और इनका गाना प्ले करता हूँ। यहाँ सॉन्ग होते थे यार पहले। चलो व्हाट्सएप कर दो फटाफट से कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ मैं।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम?
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
2: बिंदास मॉर्निंग। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
8: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
9: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
10: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका, द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद।
11: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
10: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: थर्सडे की सुबह है लेडीज एंड जेंटलमैन। इस टाइम पे स्टूडियो की घड़ी में यह वक्त हुआ है 9:04 स्टेशन क्लॉक का टाइम। मैंने आपको बता दिया है जी, हेलो हाय, कैसे हालचाल, बंदे के नाम आरजे आनंद। यहाँ पर बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है, और कुछ कमाल की बातें होती हैं। अभी बात कर लेते हैं कुछ कड़क वाली काम की। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी जो है मुश्किलें बढ़ा दी हैं यूट्यूब ने। एग्जैक्टली अभी क्या था ना, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो अपने मोनेटाइजेशन को लेकर काम करते हैं, तो उनको पता था कि भैया एक साल के अंदर यानी कि साल के 365 दिन में हमें 4000 घंटा वॉच टाइम देना ही देना होगा। बट अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दी है यूट्यूब ने। हाँ जी, 1 फरवरी 2027 से रूल्स जो है अब लागू होने वाले हैं। 2027 में ये रूल चेंज हो जाएंगे यूट्यूब के। भैया अब आपको साल के 365 दिन में 8000 घंटा वॉच टाइम देना होगा। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन यार, 4000 घंटा वॉच टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, अब 8000 घंटा वॉच टाइम। इनफैक्ट एक और चीज उन्होंने ये की है कि भैया अगर आप शॉर्ट पर 2 करोड़ व्यूज लेकर आएंगे, तो आप जो है उसके लिए मतलब उसका वो जो क्राइटेरिया

एरिया है ना वहां पर जहां पे आपको मोनेटाइजेशन वाला मिलेगा पूरा सिस्टम, वो तभी आप यू नो उसमें आप यू नो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपके पास 2 करोड़ व्यूज होंगे शॉर्ट्स पे। अगर आपके 2 करोड़ नहीं भी तो आपको 1 करोड़ तो कंपलसरी करने ही करने होंगे, मतलब 1 करोड़ शॉर्ट व्यूज, एंड वो भी आपको 90 दिनों में कंप्लीट करनी है। क्यों इमेजिन कि 90 दिनों में आपको मतलब 1 करोड़ व्यूज देने ही देने हैं शॉर्ट्स पे, एंड इसके अलावा आपको साल के 365 दिन में अपने 8000 घंटा वॉच टाइम को कंप्लीट करना है अगर आप यूट्यूबर हैं तो। आई कैंट बिलीव दिस यार कि क्या चल रहा है, मतलब यूट्यूब ने रातों रात जो है कंटेंट क्रिएटर्स को और यूट्यूबर्स को एक अलग झटका दे दिया है। भाई मैं सोच रहा था मैं भी यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं भी अपने डेली ब्लॉग बनाऊंगा, बट अब मुझसे ना हो पाएगा यार, मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब देखो यार अब गिव अप मत करो, अगर आप कर रहे हो, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप अपने आप पे बिलीव रखो यार, अपने कॉन्फिडेंस पे जो है ना काम करो यार थोड़ा सा, और आपको पता है आप अच्छा कर लोगे फिर आपको पीछे आने की जरूरत है ही नहीं यार। तो आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो मुझे लगता नहीं है फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। आपके लिए 8000 घंटा वॉच टाइम हो या 10000 घंटा वॉच टाइम हो, आप डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इसके अलावा देखिए कुछ और कड़क अपडेट हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो अभी महंगी होने वाली हैं जिन पर बात करना बनता है। एंड इस इंडिपेंडेंस डे अगर लाल किला आप जाने का प्लान कर रहे हो तो कैसे आप वहाँ की खूबसूरत चीज़ों का नज़ारा उठा सकते हो, लुत्फ़ उठा सकते हो खूबसूरत नज़ारों का, कभी कभी वर्ड्स इधर से उधर हो जाते हैं सॉरी यार, बट आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट होने वाला है ये अगला इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप ट्रैवलिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो भैया थोड़ा सोच समझ के, फेस्टिव टाइम शुरू होने वाला है तो ऐसे में क्या कुछ चीजों में चेंज हो रहा है मैं थोड़ी सी अपडेट आपको देने वाला हूं, और मुरादाबाद में क्या स्पेशल है ये भी आपको पता लगेगा इस स्टेशन पे। आप आनंद के साथ हैं और अगले गाने जो आने वाले हैं वो भी पता लगेंगे। ये गाना आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग यार, लव स्टोरी केसरिया तेरा, इश्क है पिया, वीकेंड आने वाली फीलिंग मेरे को दे देता है यार ये गाना। प्रीतम का म्यूजिक, अरिजीत सिंह की आवाज, ब्रह्मास्त्र से गाना, फिक्र तो मुझे आपकी भी है यार। जरा सी देर में इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज करके बताओ इस इंडिपेंडेंस डे आप कौन सी चीज से आजादी चाहते हो, मतलब मैं कह रहा हूँ ना इंडिपेंडेंस डे पे हम जो है हम आजादी का जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि आपको इस इंडिपेंडेंस डे और कौन सी चीज से आजादी चाहिए। आप अगर बता सकते हो तो वेरी वेरी नाइस यार, मैसेज कर सकते हो आप मुझे 9837896896 पे व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि यार आज थोड़ा सा टाइम है आनंद से बातचीत करनी है मेरे को तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है 9837896896 पे आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। एंड अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, बहुत ही प्यारा ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, एंड जब मैं लौट कर आऊंगा तो आपके साथ और भी ढेर सारी बात करूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। सो डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: यार ये गाना कुछ बताने आया आपको,
1: मतलब
0: एग्जैक्टली आज किस थोड़ा सा मतलब ही होना तो बनता है यार।
1: दुनिया की सुनता है क्यों,
0: इस गाने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव है, खुद की भी सुन ले कभी, अक्सर हम अपनी सुनते ही नहीं है यार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
2: लेकिन सोनिया
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और मेरे पास एक बड़ा प्यारा मैसेज आया है जो मैं डेफिनेटली शामिल करने वाला हूँ। अभी जरा सी देर में लौट कर आता हूँ, उसके बाद शामिल करता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जिसको पढ़ के ना मेरे को मजा आ गया यार। फिलहाल हॉलीडे से ही गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज, यह है थर्सडे की सुबह, सुन रहे हैं आनंद।

मुरादाबाद में बंदरों से इतने ज्यादा परेशान हो गए मुरादाबादीज, मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो आप ही मुझे बता सकते हो कि आप कितने ज्यादा इरिटेट हो रखे हो बंदरों से, राइट? हाय, वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आनंद को सुन रहे हैं आप। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन अब इसका तोड़ निकल कर आया है कि भैया बंदरों से जल्दी मिलेगी शहरवासियों को निजात, मतलब आपको जो इसे थोड़ी सी राहत की सांस मिलने वाली है। सच में यार बहुत ज्यादा बंदर आ गए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सारे बंदर अब हमारे घरों में एंटर हो गए यार, इतनी इरिटेट हो गए हैं लोग बंदरों से, बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं बंदरों से। तो भैया अब जो है बंदरों का जो ये आतंक है इसको अब रोकने की बात की जा रही है। हाँ जी, आपको बता दें भैया नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष कंपनी को हायर किया है और इसने अपनी जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि अब जो बंदर है उनको शहर से दूर छोड़ा जाएगा ताकि भैया आपको थोड़ी सी राहत मिल सके। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बंदर हमला भी कर रहे हैं लोगों के ऊपर, जिससे बड़ा रिस्क भी है शहर के अंदर। एंड तमाम सारे कॉलोनीज में, मोहल्लों में, छतों पर आप देखो ना बंदरों का एकदम से ऐसे बोलबाला रहता है। इवन हमारी सोसाइटी में भी आजकल बंदरों का बड़ा हमला शमला हो रहा है भाई, मतलब इतने ज्यादा बंदर आ रहे हैं मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये जो महानगर में बंदरों का जो मंकीज का आतंक है ना, अब इसको रोकने की तैयारी हो गई है, मतलब पूरी तरीके से जो इसके ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया है। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपके आसपास भी है इस तरह की प्रॉब्लम तो आप उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम को इधर से भी दूर किया जा सके, है ना। आप हमें भी बता सकते हैं, आपके एरिया में तो बंदर नहीं आते ना, अगर आते हैं तो आप मुझे बताओ, हो सकता है आपके गली मोहल्ले की बात वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचाना चाहते हो। भैया अब जो है ये जो बंदरों का आतंक है अब इसे रोका जाएगा। शहर के आशियाना हो गया एंड रामगंगा बिहार, मानसरोवर लाइन पार एंड ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था बंदरों, लेकिन अब इनको थोड़ी सी मतलब इन एरियाज को राहत की सांस मिलेगी फाइनली गाइस। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल मिलनी चाहिए यार, बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हुए एक और चीज़ मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, आज की स्पेशल चीज़ क्या होने वाली है। वीर शहीदों एवं जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी आज ट्रमिट में, एंड ये सुबह 11 बजे से जो है आज होने वाली है कुछ स्पेशल चीज़ अपने मुरादाबाद के अंदर। इसके अलावा आज एक तिरंगा यात्रा जो है बुद्ध बाजार चौकी से अभी सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, ये जो यात्रा है ये भी बहुत स्पेशल होने वाली है। एंड इसके बारे में मैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। मुरादाबाद के अंदर जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ ट्रेंड कर रही है वो है तीज वाली। भैया हर जगह पर तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है और बड़े जोरों शोरों से फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, हर जगह पर तीज की धूम मची हुई है यार। फिलहाल 9:19 का समय हो गया, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। ये कुछ लेटेस्ट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था आज की सुबह, एंड आप डेफिनेटली हमें भी शेयर कर सकते हैं, आपके आसपास भी कुछ हैपनिंग चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली डू शेयर विद मी 9837896896 पर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि भैया आप मेरे को मैसेज करके बताओ कि ये जो आप गाने सुन रहे हो ये कौन सी अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है, बिकॉज आज हम इनको याद कर रहे हैं। ये अगला गाना सुनोगे तो आप पहचान जाओगे इनको, बहुत ही प्यारा गाना है। एंड आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ आज की सुबह में, एंड बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं ये, आज ही के दिन जन्म हुआ था इनका। यहाँ से तुमको एक अलग ही पहचान मिली ये गाना। और अगला गाना जो चला रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही प्यारा ट्रैक है, इसको भी आप सुनोगे तो शायद आप पहचान जाओगे मैं कौन सी एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ आज की सुबह।

0: चलो मैसेज करो आप मुझे फटाफट से, मैं अभी लौट कर आता हूँ एंड कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद कुछ खास बातें बताता हूँ फटाफट।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 705070552।
7: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
8: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
9: अरे आनंद इज बैक।
0: इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे को लेके बहुत सारी कड़क तैयारियां चल रही हैं शहर के अंदर, जिसके बारे में बात करना तो बनता है। एंड अभी मैं लौट कर आऊंगा तो आपको एक और बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे, मैं इंतजार करूंगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। बाकी आपके मैसेज जेन्युइनली बहुत प्यारे प्यारे मुझ तक पहुंच रहे हैं, मैं बस अभी शामिल करने वाला हूं उन्हें, जरा सी देर में लौट कर आऊंगा तो शामिल करूंगा, बिकॉज आज मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा था। मैंने आपसे कहा था आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ इस इंडिपेंडेंस डे आप कौन सी चीज से आजादी चाहते हो, आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो। एंड इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपने किए हैं ना, थैंक यू सो मच ये प्यारे मैसेज करने के लिए, सच में यार एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ सवाल, इस इंडिपेंडेंस डे कौन सी चीज से आप आजादी चाहते हैं।

0: चले सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। चलो अच्छी बात है, बढ़िया चलना चाहिए। और आपके मैसेज को देखकर तो लग रहा है सब कुछ एकदम बढ़िया ही बढ़िया है यहाँ पर। और इतने प्यारे मैसेज आप कर रहे हो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। अभी मैं बात कर लेता हूँ तारीख की। तो भैया 13 अगस्त की सुबह आप आनंद के साथ हैं और ये है आपके शहर का अपना इकलौता रेडियो स्टेशन। दिस इज द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय हाउ यू डूइंग, क्या हाल एवरीबॉडी, सब बढ़िया चल रहा है। चलो अच्छी बात है, आप आनंद के साथ हैं भाई। अभी आपके यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जो आप मुझे बता रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा उनकी बात कर लेते हैं जिस चीज़ के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे भी इस चीज़ पे डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए आपको, और बहुत ज़रूरी ये बात बन गई है। हाँ जी, भारत में प्लास्टिक वाले जो नोट्स हैं उसकी जो है तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने 10 और 20 रुपये के जो नोट हैं उनको ट्रायल, उनके जो ट्रायल है उसको इन्फॉर्मेशन जो है ये बिल्कुल, अब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो अभी ट्रेंड कर रही है वो ये कि भैया अब इन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कि अब मंजूरी दे दी है कि ये नोट जो है कागजी नोट के मुकाबले जो है ज़्यादा टिकाऊ और सुरक्षित माने जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये पानी में भी गिर जाते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये जो हमारे कागज़ वाले नोट हैं इनसे, कागजी नोटों से ज़्यादा टिकाऊ और सुरक्षित माने जा रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर समेत कई देशों में जो है इन नोटों का इस्तेमाल पहले से हो रहा है, बट ट्रायल के बाद जो है इसे आगे, इसके ऊपर जो है फैसला लिया जाएगा कि इसको अब आगे मंजूरी देनी चाहिए या नहीं। फिलहाल 10 और 20 रुपए के जो ट्रायल नोट है इसकी शुरुआत अब जो है हो जाएगी, ऐसे ट्रायल के तौर पर होगी। इसको जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ये तो एक अच्छी चीज़ है ना यार, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज़ है। अभी ना ये चीन की कंपनी में एक नई सी चीज हुई है ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार। मुझे लगा यार ये कितनी प्यारी चीज़ है, मतलब चीन की एक, मतलब एक कंपनी है जहाँ पर एक अनोखी सी जो है उनको एक लीव मिली है, और उस लीव को लेकर ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। भैया लीव क्या है, देखिए जो एम्प्लॉय होते हैं कभी कभी उनको स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होती है, वो छुट्टी लेना चाहते हैं। तो भैया यहाँ पर क्या रूल है ना कि अगर कोई भी एम्प्लॉय को थकान, टेंशन या उसका मूड ख़राब है पिछले कुछ दिनों से, तो वो 10 दिनों की छुट्टी ले सकता है। एंड इस छुट्टी के लिए जो है उनको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड ये जो लीव कि ये बिल्कुल अनपेड होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भैया आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पेमेंट यू नो कंपनी देगी, ऐसा होता है ना हर बार, लेकिन इस कंपनी में थोड़ा सा अलग रूल भी है। एंड भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ कंपनी ना सच में इतनी अच्छी होती है, ऐसा लगता है यार इंडिया में कब ऐसी कंपनी आएंगी यार, मतलब इधर कब ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब अलग अलग शहरों में होती हैं, अलग अलग देशों में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं यार, हम ज़्यादा अपने दिलों पर चोट नहीं मारने वाले। आगे बढ़ते हैं, आपके मैसेज ढेर सारे मेरे पास आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताऊँगा अभी कौन सी सेलिब्रिटी की हम बात कर रहे हैं जिनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आपके मैसेज बहुत प्यारे प्यारे आए हैं। एंड एक काम करेंगे, पहले आपके मैसेज को ही हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे बिकॉज बहुत देर से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग आनंद, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग। ये विक्की सागर जी मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग विक्की भाई। एक और मेरे पास व्हाट्सएप पहुँचा है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज तुषारिका, गुड मॉर्निंग तुषारिका। ये मुझे लिखती हैं, इस वक्त मैं ऑन द वे हूँ अपने ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और आपका रेडियो सुन रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही रेडियो सुनते रहिए। कुछ वॉइस नोट भी हैं जिनको मैं अभी यहां पर शामिल करने वाला हूं इसी स्टेशन पर, बस आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: के लिए ढूंढ रहे एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: कहा मेरी कसम,
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
7: बिंदास मॉर्निंग,
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
8: अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही काम की खबर है जो मुझे आप तक पहुंचानी है। बस अभी मैं लौट कर आता हूं ना, एक गाना जो है बजाने का टाइम हो गया है। इस गाने के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी वो कौन सी काम की चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना जो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं, पूरे पूरे मेरी तरफ से ट्राई रहता है कि भैया मैं आपको ये जो काम की इन्फॉर्मेशन है ये डेफिनेटली पहुंचा दूं, ताकि आपको भैया कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि जो मुझे आनंद ने नहीं बताई है ना। मेरी जिम्मेदारी होती है, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज को जो है ना समय से अगर आपको बताई जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े यार उस इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत सारी स्टडी एंड रिसर्च करके लेकर आता हूँ इसीलिए। कल मैंने आपको बताया था ना बेंगलोर में एक लड़की का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है किस्सा, बिकॉज उसकी 3.5 लाख रुपए सैलरी कट हो गई है, वो भी इसलिए क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट कर रही थी परमानेंटली। तो ये भी सिनेरियो कल मैं बता नहीं पाया था, मुझे बीच में ही जाना पड़ता। आज मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो है ये। पहले इसको सुन लेते हैं यार।

इमरान हाशमी फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, बिकॉज जो लोग वेट कर रहे थे इनकी मूवी का कि यार कब इमरान भाई की मूवी आएगी, कब इमरान भाई की मूवी जो है हम देखेंगे, एंड फाइनली अब जो है इमरान खान के जो सॉरी इमरान हाशमी के जो फैंस हैं उनका इंतजार थोड़ा सा खत्म होगी। काफ़ी कनेक्टेड नाम है ना इमरान खान, इमरान हाशमी, ये थोड़े से बड़े रिलेटेबल लगते हैं मुझे एकदम से ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। एनीवेज जोरदार तालियां आप सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच। आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे आपके संदेश मुझे मिल रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं, ये जो इमरान हाशमी फैंस थे इनके लिए क्या गुड न्यूज़ है भैया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आवारापन 2 जो है आने वाली है जल्द ही, इसका जलवा जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है बॉलीवुड की तो क्या चल रहा है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा अभी जो है ट्रेन कर रही है, आवारापन 2 जो है रिलीज होने वाली है, एडवांस में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, एंड शुरुआत में जो है ना फैंस ने जो है खुशी जाहिर की है, एंड ये जो फिल्म है काफ़ी बताई जा रही है कि हिट रहने वाली है। जो इसका पहला पार्ट था आवारापन का उस जो 2007 में आया था, ऑफकोर्स यार इसका अब सीक्वल दोबारा रिलीज होने वाला है, यानी कि कल टुमारो ये मूवी रिलीज हो रही है, कल वीकेंड पे फ्राइडे, एंड इसका सेकेंड सीक्वल आ रहा है आवारापन 2 का, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं फैंस। इसकी बुकिंग एडवांस में हो गई है बॉस, कैन इमेजिन यार कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है फैंस, एंड इसका सेकंड सीक्वल आ रहा है तो ऑफ कोर्स यार अब इमरान हाशमी को लोग एक और नए अंदाज में देखने वाले हैं, जिसको लेके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के। देखिए अभी आपको पता है ना इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान का जो है जोरों शोरों से चल रहा है अभी काम, एंड इसको लेकर मैं भी कहना चाहता हूँ हर घर तिरंगा .com पे जाके आप अपनी सेल्फी अपलोड कीजिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ गूगल पे जाना है और अपने तिरंगे वाली सेल्फी जो आपने खींची है उसको अपलोड करना है यहाँ पे। अगर आप अपलोड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, ये येस मतलब आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, इनफैक्ट आप खुद को रजिस्टर भी कर कि आपने भी कुछ अच्छी चीज कर दी है। एग्जैक्टली है ना, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। और फिलहाल भाईजान का एक गाना

0: मैम आपको इस चीज से आजादी चाहिए, तो मुझे तो लगता है ये तो बहुत इजी है यार। जहाँ पे गॉसिप वगैरह वाली चीजें होती हैं वहाँ पे आप जाओ मत, वहाँ पे आप अपने सर्कल ही मत रखो ऐसा वाला। मुझे लगता है काफी हद तक आप बच जाओगी। बाकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर, मुझे ना सिर्फ बाहर के खाने से आज़ादी चाहिए क्योंकि बाहर का खाना खा करके मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा घर का फूड भी खाना जो है घर का एंजॉय करने का मौका मिले। तो देखो बहुत सिंपल है, आप ये भी अवॉइड करोगे तो, बट हाँ अगर आपने इसको हैबिट में ले ही लिया है तो मुश्किल ही है यार, है ना थोड़ा सा। लेकिन इतना भी मुश्किल कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, मैं अपने गुस्से से आज़ादी चाहता हूँ आनंद। हाय माय नेम इज तरुण। हाय तरुण, गुड मॉर्निंग। तरुण ने लिखा है, आनंद जी अगर मुझे गुस्से से आज़ादी मिल जाएगी तो मैं बहुत हैप्पी फील करूंगा, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता हूँ गुस्से में जिसके बाद मुझे बहुत पछतावा होता है। यार मेरे भाई तरुण, ये आपके साथ नहीं है, ये दुनिया के हर दूसरे इंसान के साथ है। जब वो गुस्से में होता है तो वो कुछ भी बोल जाता है, बट जब उसका गुस्सा थोड़ा सा भी शांत होता है ना, तो उसको रियलाइज होता है यार कि मैंने क्या बोल दिया और मेरे को क्या बोलना था यार। एक्चुअली ये सबके साथ होता है। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है। ये मैसेज जो आ रहा है ना बहुत ही प्यारा सा है यार, इन्होंने तो कुछ इंटरेस्टिंग ही बात कर दी है, मतलब मज़ा ही आ गया इनका मैसेज पढ़ के। और मैं अब इनका मैसेज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ यार, डोंट वरी। इन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी है, गुड मॉर्निंग, मुझे ना सर बस थोड़ी सी नींद से आज़ादी चाहिए क्योंकि मैं बहुत लेट सोता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगा नींद से थोड़ी मुझे आज़ादी मिल जाएगी तो सही रहेगा। अब आप मुझे बताओ आपको नींद से आज़ादी कौन सी वाली चाहिए। मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ यार रोहित। हाय गुड मॉर्निंग यार, मेरी रिलेटिव से मुझे आज़ादी चाहिए, हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। यार ट्रू, इस चीज़ के लिए तो मैं ताली बजाऊंगा और मैं भी कई बार इरिटेट हो जाता हूँ, सो मेनी क्वेश्चन यार। भाई ऐसे कौन करता है यार, जब शादी होगी तो कार्ड मिल जाएगा ना यार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी शादी से ज़्यादा ना हमारे पड़ोसी को एक्साइटमेंट होती है, जब भी जाओ एक ही सवाल, और बेटा शादी कब कर रहे हो। मतलब इतनी सारी जो है ना लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं। भाई ठीक है, जब वक्त आएगा शादी भी हो जाएगी। एंड यार सच में आपने बहुत ही अच्छी बात की, इस चीज़ से तो मुझे भी आज़ादी चाहिए यार, मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे आज़ादी दिला दो भाई। अब
1: मैं तो तेरे उत्ते सेंटी हो,
0: शादी की बात चल रही थी ना,
1: किसे नूना
0: इसी बात पे गाना निकल गया यार। जस्ट मानक राइट हियर, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 विद मी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन। कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: तापसी पन्नू एसआर खान, बहुत ही प्यारा गाना प्रीतम का म्यूजिक, अरिजीत सिंह ने गाया, इरशाद कामिल साहब ने लिखा। डंकी फिल्म से सुन रहे थे ओ माही। सच में यार बड़ा प्यारा गाना, सुबह सुबह ऐसे गाने सुन के ना मतलब मन को सुकून मिल जाता है। आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपका फेवरेट था ना ये गाना। हेलो हाय, कैसे हाल चाल है? ये थर्सडे की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:51 हो गए स्टेशन क्लॉक में। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी ना अब गेम शेम की बारी है, बहुत सारी बातें हो गई यार, आप थोड़ा सा आपके दिमाग को चेक कर लेते हैं जरा। हाँ जी, आज का दिन इतना स्पेशल है, बहुत सारी चीजें आज सेलिब्रेट की जाती है। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड्स डे आज मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है भाई, इसके पीछे का रीजन तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी बैक टू पॉइंट, थोड़ी देर पहले मैंने एक बहुत ही प्यारी आइकॉनिक एक्ट्रेस के कुछ गाने प्ले किए थे, जिसके बारे में आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके बताना था कि अभी जो आप गाने सुन रहे हैं, ये जो गाने हैं वो कौन सी अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है, ये आपने मेरे को बताना था। इनके बारे में मैं बात कर रहा था, इनके बारे में आपने मेरे को मैसेज करके बताना था और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया आज की सुबह। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां। और बहुत सारे लोगों ने एकदम सही वाले आंसर्स भी किए हैं आज की सुबह। कुछ वॉइस नोट भी मेरे पास पहुंचे थे आज की मॉर्निंग, तो जरा सुन लेते हैं इन्होंने क्या कहा था आज की सुबह।
1: आनंद भाई, बिंदास गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
0: मॉर्निंग, मैं बढ़िया,
1: मैं बहुत अच्छा हूं। और जिस अभिनेत्री के लिए आपने अभी जानकारी करी है, जिनके ट्रैक्स आपने प्ले किए थे, सदाबहार एक्टर, सदाबहार एक्टिंग, श्रीदेवी जी।
0: जी जी, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा,
1: शानदार एक्टर।
0: बिल्कुल, देखिए वो आज भली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त। और कहते हैं ना, एक सबसे खूबसूरत बात होती है हर कलाकार की, और ये बात ना मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, बिकॉज वो हमारे बीच में ना होकर भी ना हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनकी कलाकारी और उनकी जो जबरदस्त, स्पेशली श्रीदेवी जी की मैं बात करूँ तो मुझे उनके बारे में बोलते हुए भी घुसबम सारे हैं यार। मैं क्या ही मतलब कैसे मैं बोलूँ, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज 13 अगस्त का दिन है और हिंदी सिनेमा के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही खास दिन है। आज ही के दिन एक बेहद ही खूबसूरत और शानदार अदाकारा का जन्म हुआ था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी जी का जन्म हुआ था, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। श्रीदेवी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी, उनकी मुस्कान और उनकी फिल्में आज भी हमारे बीच में उन्हें महसूस कराती हैं। श्रोताओं, उनकी जो खूबसूरत वाइब, उनके जो गाने सुने ना आपने, चांदनी, मिस्टर इंडिया, नगीना, लम्हे और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों ने जो है मतलब उन्हें एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। और उनकी इन फिल्मों में जो जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की, जो अभिनय किया, उसकी जो छाप छोड़ी, जिसे हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, मैं आपको सच में बता रहा हूँ यार। और कहते हैं कलाकार चला जाता है, लेकिन उसकी कला हमेशा जिंदा रहती है। और ऐसे ही आज हम याद कर रहे हैं बहुत ही आइकॉनिक वर्सटाइल एक्टर को, जिनका नाम श्रीदेवी जी है। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं और दिल से कहते हैं, श्रीदेवी जी आप हमारे बीच में भले ही नहीं है, लेकिन आपकी अदाकारा, आपकी जो ये अदाकारी है, आपका जो काम है, वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और हमेशा रहेगा। और आप भी, बस हम तो यार यही कहना चाहते हैं, जो श्रीदेवी फैंस हैं, जो श्रीदेवी जी को बहुत पसंद करते थे, उनके लिए थोड़ा सा सैड वाला दिन हो सकता है, क्योंकि आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने कमाल की अदाकारा थी यार। चलो फिलहाल मैम को याद कर ही रहे हैं, तो अब मैं श्रीदेवी जी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ, फटाफट आप मुझे मैसेज करिएगा। अगर आप श्रीदेवी फैंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर बहुत इजीली कर देंगे। एक बहुत ही प्यारी फिल्म आई थी अक्षय कुमार के साथ श्रीदेवी जी की, एंड बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। अगर आपको उस फिल्म का नाम पता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। जो मैरिड लोग हैं ना, वो बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप मुझे बता सकते हो 9837896896 पर व्हाट्सएप करके अक्षय कुमार के साथ श्रीदेवी जी की एक बहुत ही प्यारी फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम अगर आपको पता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आज की सुबह, आई वांट टू आस्क यू, कौन सी फिल्म थी अक्षय कुमार के साथ श्रीदेवी जी की, जिसमें एक साथ नजर आए थे श्रीदेवी एंड साथ में अक्षय कुमार, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। पता है तो मैसेज कर दो 9837896896 पे, आपका नाम, आपके शहर का नाम और आपका राइट आंसर। अगेन रिपीट करूं आज का क्वेश्चन, आज हम श्रीदेवी जी को याद कर रहे हैं, आज के दिन जन्म हुआ था श्रीदेवी जी का। बॉलीवुड की बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, एंड भले आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारा हमेशा, जो उनकी एक कमाल की छापे वो हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। आप मुझे मैसेज करके फटाफट से बताओ कौन सी फिल्म में नजर आई थी अक्षय कुमार के साथ।

Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है दिलजीत दोसांझ की आवाज। कुछ लोग मुझे कहते हैं यार क्या बीच में तू इंटरप्ट करता है, आनंद चुप नहीं रहा जाता। यार देखो थोड़ा सा बोलना पड़ता है क्योंकि समय जो है ना मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। अभी स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 10:01 सुबह के। सूरमा से एंजॉय करें आप।

0: देखो यार, मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं जा रहा हूँ, बस आपको इतना बताने आया हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहता हूँ। अभी अपडेट करने का टाइम है मेरी घड़ी का टाइम। हाँ जी, आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लो यार। सुबह के 10:02 हो रहे हैं, आनंद को सुन रहे हैं आप, मैं जल्दी से लौट कर आता हूँ।
1: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
2: नालायक बेटा।
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: चलिए गाइस, फिलहाल तो यहाँ पर जाने का समय हो गया है, 10:03 हो रहे हैं। हाँ जी, और कुछ चीज़ें जो हैं अभी बम्पर वाली सस्ती हो सकती हैं फेस्टिवल टाइम पे, यू नो, कुछ सेल्स में हो सकता है कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं। अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल लेने का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये थोड़ी बहुत आपके बजट के अनुसार मिल भी जाएं, ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ मैं अभी आपको। ये आपको बताया ना, जब भी कोई फेस्टिविटी आती है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, अब तो वैसे भी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में जो है बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल ना फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और उनको ध्यान में रखकर ही आपने जो है चीज़ों को चयन करना है, चीज़ों का चयन करना है, उनको शॉर्टलिस्ट करना है ना, और जो चीज़ आपको लगता है कि सच में जिसकी ज़रूरत है वही चीज़ें आपने लेनी है, चाहे फेस्टिवल हो या कोई भी ओकेजन हो, क्योंकि यार देखो बजट गड़बड़ हो जाता है तो चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं, राइट। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 10:04 हो रहे हैं, आप सभी का वेलकम बैक है वंस अगेन। यू आर लिस्निंग टू FM मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक वाली। अभी आपको बता दें, सहारनपुर में 200,000 तिरंगा बनाने में जुटी है समूह की महिलाएं, एंड दिस इज वेरी वेरी इनक्रेडिबल जॉब, एंड आई कांट बिलीव दिस कि यार कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, है ना, जब हम इनको पढ़ते हैं सुनते हैं तो अंदर से बहुत ही अच्छी वाली वाइब्स आती है। एग्जैक्टली ना, अभी फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और इसी खास मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए सहारनपुर में जो है बहुत ही खूबसूरत एक मुहिम चल रही है, एक इनिशिएटिव चल रहा है, और एक युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, और इस अभियान के तहत जिले में 200,000 तिरंगों का निर्माण का जो एक लक्ष्य रखा गया है, एंड जो आसपास के लोग हैं वहाँ पर जो है इन झंडों को मतलब जो है वितरित किया जाएगा, ताकि लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जो है और ज्यादा सशक्त और मजबूत बना सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए ना यार, 200,000 तिरंगा जो है, 200,000 तिरंगे बन रहे हैं सहारनपुर के अंदर, वो इसलिए ताकि ये जो हर घर तिरंगा अभियान है इसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सके। It was really, really nice information. मुझे लगा फटाफट से आप तक पहुंचनी चाहिए, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं भाई, आप भी जरूर इंडिपेंडेंस डे पे अपने घरों पर अपनी छतों पर जरूर तिरंगा लहराएं, बहुत जरूरी है, और बहुत ही ये एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट होने वाला है। आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू आस्क यू कि आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ, आज श्रीदेवी जी को हम याद कर रहे हैं, आज के दिन जन्म हुआ था उनका, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, आज की सुबह उनकी एक फिल्म आई थी बहुत ही प्यारी अक्षय कुमार के साथ, वो कौन सी फिल्म है, यही आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है। आपके पास लास्ट ऑप्शन है आज की सुबह, और मैं बस अभी लौट कर आता हूँ जरा सी देर में इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आपको सच में पता है तो आप मुझे मैसेज करिए ना यार 9837896896 पे, ठीक है जी। आने वाली 20 अगस्त दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि इस 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं लिसनर डे, यानी कि श्रोता दिवस मनाया जाएगा, को लेकर भी बहुत सारी खास तैयारियां चल रही हैं। आप हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल तो हम करने वाले हैं इस श्रोता दिवस पर, यानी कि इस लिसनर डे के मौके पे कुछ तो खास होगा। बस आप ऐसी ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, जो हमारे खास लिसनर हैं उनके लिए स्पेशल दिन होने वाला है 20 अगस्त का। क्या खास होगा बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल गजेंद्र वर्मा की परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं।

0: गजेंद्र वर्मा की बड़ी प्यारी आवाज और ये प्यारा गाना थर्सडे की सुबह आप सुन रहे थे आनंद के साथ। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो आप सुन रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल मुझे घड़ी की सुइयां और ज्यादा टाइम नहीं दे रही है बात करने का, क्योंकि मुझे यार अभी एक शो भी होस्ट करने जाना है। फटाफट से यहाँ से निकल के सीधा मुझे शो जाना है अभी होस्ट करने, बिकॉज आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी होस्ट करने होते हैं। शहर में जो एक्टिविटीज चल रही है उन्हें भी कवर करना होता है, उन्हें भी फीचर करना होता है। चलिए फिलहाल आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, और आपको अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। रेडियो में सिर्फ गाने नहीं होते, अच्छी बातें भी होती हैं और साथ ही साथ अच्छी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है जो चल रहा है आसपास में, वो सब कुछ पता लगता है ना आपको एफएम मुरादाबाद पर। फिलहाल घड़ी मिला लो यार, 10:11 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में और आनंद को सुन रहे थे अभी आप। फिलहाल खुशी आ गई है, मेरे जाने का समय हो गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था आप मुझे बताइए कौन सी फिल्म में श्रीदेवी जी नजर आई थी अक्षय कुमार के साथ। बहुत ही प्यारी फिल्म थी, श्रीदेवी का बड़ा एकदम एकदम नटखट वाला उन्होंने रोल किया था। मैंने पिक्चर देखी थी, मुझे आई रिमेंबर आज भी याद है, बहुत ही प्यारी फिल्म थी एंड बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और उसमें वो कुछ चावल कच्चे हैं दांत मार लूं रोटी जल गई है उसको, मतलब ऐसे करके एक डायलॉग था बड़ा पॉपुलर सा एंड बहुत ही अच्छी, शायद इनका दुर्गा नाम था इस मूवी में, एंड बहुत ही बढ़िया फिल्म थी यार। आई नॉट शॉर्ट क्या था बट शायद दुर्गा जितना मुझे अभी आ रहा है दिमाग में, शायद दुर्गा नाम था यानी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर्स किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबडी। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, और इसमें जो है मजे की बात यह कि सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अब बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंच चुके हैं यहाँ पर एंड मेरे पास मैसेज आया है धर्मेंद्र कश्यप जी का लाइन पार कुंदनपुर से, और इन्होंने जो है मुझे एकदम सही वाला जवाब दे दिया है, एकदम राइट समय पे राइट आंसर दिया है। एंड इसी बीच मेरे पास एक और मैसेज पहुंच गया था यहाँ पर, ये गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं शिखा जी, और इन्होंने भी मेरे को सही जवाब दिया, इन दो लोगों ने एकदम करेक्ट वाला आंसर दिया है एंड दिस इज द राइट आंसर, मेरी बीबी का जवाब नहीं। कंग्रेचुलेशन धर्मेंद्र कश्यप जी एंड शिखा जी, कंग्रेचुलेशन, ऑल द वे बेस्ट। आज की सुबह आप दोनों बनते हैं हमारे शो के सुपरस्टार। बिल्कुल जी, आज हम श्रीदेवी जी को याद कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी श्रीदेवी जी। चलिए फिलहाल मैं अब लेता हूँ जाने की इजाजत, आपके मैसेज को फटाफट यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। इतना सारा टाइम आप निकाल के अपने संदेश मेरे साथ साझा करते हो तो मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग गाइज, और आप लोगों के मैसेज के लिए मैं दिल से थैंक यू करता हूँ। और ये जो मैसेज आए हैं, जैसे हमारे पास गौरव टेलर जी का मैसेज आ गया है, नवीन नगर मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं आज की सुबह, और इन्हें हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है इनको, थैंक यू सो मच, एंड साथ में प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। सही जवाब भी इन्होंने दे दिया था, 2004 में फिल्म आई थी मेरी बीबी का जवाब नहीं, एग्जैक्टली दिस इज राइट आंसर सर, थोड़ा सा लेट लेकिन सही जवाब दिया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है। सनातुर कैन नाजिया जी मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह, इन्होंने भी एकदम राइट आंसर किया था मुझे आज की मॉर्निंग। एंड अभी मेरे पास सुभाष जी का मुजफ्फरनगर से सही जवाब आ रहा था, गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हालचाल है, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मेरे पास नमन का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग पाजी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या बात है, आपका बेटा 2 साल का हो गया है, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं नासिर साहब, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स एंड बधाइयां हमारे पूरे इंटायर फैमिली की ओर से, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपके बेटे को। सही जवाब देने के लिए भी शुक्रिया मेरे भाई। ये हमारे साथ अमित वर्मा जी जुड़े थे हरथरा कॉलोनी मुरादाबाद से सही जवाब के साथ। ये हमारे साथ जुड़ चुके थे डीके अरोड़ा, साथ में उषा अरोड़ा, चंदन नगर मुरादाबाद से मैसेज किया इन्होंने मेरे को। हर हर महादेव बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से सही जवाब पहुंचा रहे थे। ये संदेश मेरे पास पहुंचा है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े सही जवाब के साथ। हमारे पास बेंगलोर से मैसेज आ रहा था राजेश मीना जी का, एक वॉइस नोट मेरे पास पहुंच गया है आज की सुबह, इनको भी सुन लेते हैं, हमारी रेगुलर लिसनर है, हमेशा अच्छी अच्छी आवाज पहुंचाती है।
1: राधे राधे राधे राधे जी, जी। श्रीदेवी और अक्षय कुमार की मूवी थी मेरी बीवी का जवाब नहीं जी। धन्यवाद
0: धन्यवाद आपका भी,
1: आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, आप तो एफएम रेडियो पे छा जाते हो।
0: रे रे, एफएम रेडियो पे छाता ऐसे बोल के मुझे रोनी आ जाएगी। चलिए आपके लिए ढेर सारी तालियां, और आपने मेरा दिन जो है बना दिया आज के सुबह। 10:14 हो रहे हैं और फिलहाल मैं आपका दिन बनाकर जा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ अच्छे गाने छोड़ के जाऊंगा, अगली कंपनी एंजॉय कीजिए खुशी के साथ। कुछ भी कहना चाहते हैं आप तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे ढूंढ सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहाँ पे भी आप अपने सजेशंस, अपने प्यारे प्यारे विचार, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज मेरे पास पहुंचा था, मेरी बीवी का जवाब नहीं, क्या बात है, नाम आपने लिखा नहीं, नंबर की 40 1448। एक और मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, बनारस से मौसिन अंसारी साहब सही जवाब दे रहे हैं आज की सुबह। ललिता कश्यप नवीन नगर मुरादाबाद से जुड़ी हैं और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है आज की सुबह। रिजवान खान साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की मॉर्निंग ग्राम बीजना से, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कल्याणपुर से हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गेश सैनी, इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंच रहे हैं आज की मॉर्निंग, यहाँ पर हरपाल सिंह का, ये गंगा मंदिर हरथला मुरादाबाद से मैसेज कर रहे हैं, और रेडियो वाले आनंद को विक्की सागर जी गुड मॉर्निंग कहते हैं। हेलो सर, कैसे हाल चाल हैं, ये दरक्षा फातिमा जिला मुरादाबाद गोदी से मुझे मैसेज करती हैं और इन्हें हमारा शो अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिखती हैं, बंदरों से सच में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि अब जल्दी बंदरों से छुट्टी हो जाएगी मुरादाबाद शहर, वाले जो परेशान हो रहे हैं उनको राहत मिलेगी। राजा कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, ये मैसेज मेरे पास पहुँच रहा है यहाँ पर पीतल नगरी से रमेश कुमार जी का, गुड मॉर्निंग सर आपको। एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है रामपुर से, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, और इन्होंने अपना नाम नहीं बताया मुझे। एक मैसेज आया है महेश जी का, गुड मॉर्निंग महेश भाई। एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है लक्ष्मी जी का सूर्यनगर से, ये संदेश अयूब अली रामपुर से पहुंचा रहे हैं, सहारनपुर से जून रोजी पलविलीज रेगुलर लिसनर जुड़े हैं आनंद भाई, गुड मॉर्निंग। मुमताज हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, रणवीर जेठालाल जुड़े हैं, भाई बहुत मैसेज आ रहे हैं, शायद मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है अब। रिहाना जुड़ चुकी हैं और जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं, टिल देन टुमारो मॉर्निंग, मोर डिटेल्स के लिए प्लीज यू कैन कनेक्टेड माय इंस्टा हैंडल, प्लीज ज्वाइन कीजिए, वहां आइए आप हमारे साथ जुड़िए, 9837896896 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप अपनी प्यारी बातें पहुंचा सकते हैं, और बाकी कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टा आईडी ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरा आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से। बाय बाय, कल मिलते हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: Listen close what I gotta say. 'Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? You ready? Let's go. Yeah.

स्वैग से स्वागत तो आरजे खुशी ने आपका कर दिया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने पहला सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी टाइगर जिंदा है एंड विशाद अदलानी जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला।

दोस्तों स्वैग से ही करेंगे सबका स्वागत और हमने कर दिया है मुस्कान से करेंगे सुबह की शुरुआत, क्योंकि जहां खुशी की आवाज पहुंच जाए वहां सुबह अपने आप खास बन जाती है। गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं अपने सिटी का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद।

दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ ना चलती रहती है, लेकिन उस बीच ना आपको मुस्कुराना बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो बहुत जरूरी है। और मुझे पता है कि आप भी बिजी हैं इस समय राइट नाउ, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बिजी रहने के बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज छाता जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि इतनी तेज धूप, बड़ा मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना। और पानी की बॉटल साथ रखिएगा, जी हाँ, बीच में पानी बीच में पानी भी पीते रहिए, बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। थर्सडी मॉर्निंग है, आरजे खुशी आपके साथ है और करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आई है खुशी एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आरजे खुशी के साथ, और अपने ब्यूटीफुल मैसेज भी पहुंचाइएगा आज की सुबह। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:34 और बहुत सारी बातें करने के लिए खुशी यहां पर आ गई है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं और अभी आपने शानदार सा ट्रैक सुना नेहा कक्कड़ और साथ में जस्सी गिल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और दोस्तों आज 13 अगस्त है और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब आपको खुशी बताने वाली है। दोस्तों आज सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड्स डे। हैप्पी इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड्स डे। जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं आज उन्हीं के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरीवन। वैसे मेरी भी एक फ्रेंड थी, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, तो वो लेफ्ट हैंड से इतने स्पीड में लिखती थी ना कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं दाहिने हाथ से लिखती थी राइट हैंड से एंड तो भी मैं अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाती थी, लेकिन वो लेफ्ट हैंड से लिखती थी, इतना स्पीड में लिखती थी और इतनी अच्छी सी उसकी यू नो हैंड राइटिंग थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने एक बार लिखने की कोशिश की, मुझसे तो लिखा ही नहीं गया है। लेकिन ये भी एक स्किल है यार, हर कोई नहीं लिख पाता है ना लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड से तो हर कोई लिख लेता है बट लेफ्ट हैंड से बहुत कम लोग लिख पाते हैं, लेकिन जो लिखते हैं बड़ा कमाल का लिखते हैं।

तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और अभी यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो दोस्त है ना वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि खुशी जी कब आएंगे और कब हमारा मैसेज यहाँ पर शामिल करेंगी। तो आप निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, अब हम आपके मैसेज को शामिल कर लेते हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा और देखते हैं कि सबसे पहले हमें कहाँ से मैसेज आया है। तो हमारे पास यहाँ पर आए सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान जी, और ये अपनी फैमिली के साथ इस समय रेडियो को सुन रहे हैं। सर अगर अभी आप राइट नाउ मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप मुझे बताइएगा कि गिरिडीह का मौसम कैसा है। हमारे मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस है एंड बाहर धूप इतनी तेज़, हाय रब्बा, बड़ा मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप छाता ज़रूर लेकर जाएँ और पानी की बॉटल भी अपने पास रखें। एंड उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास मोहसिन अंसारी जी का आया है बनारस से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर खुशी जी, जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, आपका कार्यक्रम हमें बिंदास लगता है, धन्यवाद आपका। और इन्होंने बहुत सारी तारीफें कर दी हैं आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा थॉट भी हमारे साथ शेयर किया है, कहते हैं कि चिंता करने से आने वाली परेशानियां दूर हो या ना हो ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। एग्जैक्टली सर, मैं भी अपने लिसनर्स को यही बोलती हूँ, अपने दोस्तों को जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, कि आप चिंता ना करें, जो होगा अच्छा होगा। चिंता करने से क्या होता है ना, अपना स्वास्थ्य भी खराब होता है और जो हमारा टाइम है ना वो भी खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, चिंता व्यर्थ की नहीं करनी है, हैप्पी रहना है और जो होगा अच्छा होगा। पॉजिटिव आप सोचेंगे ना तो पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ। चिंतन करने से अच्छा है कि चिंता करने से अच्छा है कि चिंतन कर लीजिए ईश्वर का। जब भगवान की हम स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो सारी चीजें ठीक हो ही जाती हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आरजी खुशी जी, गुड मॉर्निंग, एंड इन्होंने लिखा है आई मिस यू मैम। कश्मीर से हमें मैसेज पहुँचाते हैं महराजुद्दीन जी, एंड सो आप हमें मिस क्यों कर रहे हैं, हम तो रेगुलर आते हैं ना। तो अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आता है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहर हसन सिद्दीकी जी का, और साथ में इनकी पूरी फैमिली है इस समय जो रेडियो को सुन रहे हैं आप लोग, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया विकी सागर जी का, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा जी मैसेज पहुंचाती हैं। शमा हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा कैसी हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है बताइएगा हमें, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे थे आई रिमेम्बर आपने कॉल किया था, तो आप बता रही थी कि मैम मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि अब तो आप ठीक हो गई होंगी, तो आप भी अपने हालचाल बताइएगा। फिलहाल मैं आपको सुनवाती हूँ एक शानदार सा ट्रैक, फिर लौट कर आती हूँ, करूँगी बहुत सारी बातें एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आज की सुबह जो आप तक पहुँचानी है, तो आप बने रहिए, अपने संदेश भी मुझे पहुँचाइएगा और मुझे बताइए कि आप भी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं क्या। देखिए विवान, मैंने तो ट्राई किया था बट मुझसे तो नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो वेरी गुड।

0: अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुड़

0: दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और सच में बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और ये ट्रैक अभी आपने सुना बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी विकी सागर जी ने हिमगिरी मुरादाबाद।

और दोस्तों आज 13 अगस्त को हम महान लोक माता अहिल्या बाई होलकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हैं। न्याय प्रिय शासन, जन कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सेवा की अद्भुत मिसाल रही हैं अहिल्या बाई जी ने। अपने कार्यों से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सत्ता नहीं सेवा को प्राथमिकता दी। लोक माता अहिल्या बाई होलकर जी की हम उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं।

और दोस्तों गर्मी देखिए आज अपना पूरा जलवा दिखा रही है, तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं पानी की बोतल, छाता, कैप और जरूरत के मुताबिक ORS जरूर साथ रखें। कोशिश करें कि तेज धूप में ज्यादा देर ना रुकें और दोपहर की चिलचिलाती धूप में बेवजह बाहर निकलने से बचें, क्योंकि गर्मी में स्टाइल भी जरूरी है लेकिन सेहत सबसे पहले है। ओके, तो इन चीजों का ख्याल रखिए, बाकी मुस्कुराते रहिए और आपकी जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, एंड आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाती है मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। परम प्रजापति जी का हमारे पास मैसेज आया है आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नागर से रिहाना जी का, गुड मॉर्निंग कैसी हैं मैम आप, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। तो दोस्तों आप भी अपने मैसेज पहुंचाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर आपको याद है ना, अच्छा नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, मैं आपको बता देती हूँ ना, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, इस पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमें अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आज की सुबह आप क्या कहना चाहते हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। देखिए आपके बन जाने का तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ खुशी यहाँ पर आ चुकी है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन है फिर मुरादाबाद 89.6 पर, और शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। देखिए दोस्तों, आज की मैं बहुत ही खूबसूरत अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों आज की जो खबर है ना, सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि इंसानियत, हिम्मत और जिम्मेदारी की खूबसूरत मिसाल है। बांका में नदी का रास्ता तेज बहाव के कारण टूट गया था, जिससे ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को नदी पार करने में काफी परेशानी हो रही थी। जब बच्चों ने लोगों की परेशानी देखी तो उन्होंने इंतजार करने की बजाय खुद समाधान निकालने की ठानी। बच्चों ने बांस की लकड़ियां जुटाई और कई घंटों की मेहनत के बाद नदी पर एक चचरी पुल तैयार कर दिया। एंड इस छोटे से पुल ने ग्रामीणों के आने जाने की मुश्किल को काफी हद तक आसान कर दिया। हालांकि ये स्थायी समाधान नहीं है और ग्रामीण प्रशासन ने मजबूत पुल बनवाने की मांग करी है, लेकिन इन बच्चों की पहल हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी हो तो बदलाव जरूर बड़ा होता है। इन बच्चों को सलाम जिन्होंने ये साबित कर दिया कि समस्या देखकर सिर्फ शिकायत करना जरूरी नहीं, कभी कभी एक छोटी सी पहल भी किसी के लिए बड़ी राहत बन जाती है। और इन बच्चों के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही कि छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, और जहाँ हिम्मत और इंसानियत साथ हो वहाँ उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। तो इन नन्हे सितारों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है ना एवरीवन। आज की मॉर्निंग बहुत अच्छा काम किया इन बच्चों ने, और समय मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर वक्त हुआ है 11:08। बहुत सारी अपडेट हैं जो आप तक पहुँचानी है, लगातार यहाँ पर आपके मैसेज भी आ रहे हैं तो उनको भी शामिल करना खुशी की जिम्मेदारी है।

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर से रजा हुसैन जी मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया रमेश कुमार जी का, और ये भी गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं पीतल नगरी से, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राधे राधे खुशी जी, राधे राधे आपको भी लाजवाब प्रस्तुति। ये मैसेज पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, जिला मुरादाबाद लदावली से ही अपना मैसेज पहुंचाते हैं, कांट रोड लदावली से। एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है पूजा जी का विकास नगर से, और ये भी कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है एंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी होती है, धन्यवाद आपका। तो देखिए आज जयंती है श्रीदेवी जी की, एंड खूबसूरत अभिनेत्री थी और उन्हीं का एक गाना है बहुत ही प्यारा सा, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, उनका नाम बड़ा ही प्यारा है, रिहाना जी ने हमें भेजी है। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना, उसके बाद आते हैं लौट कर। फिर भी अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं आज की सुबह, कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ना, तो बिना किसी देरी के पहुंचा दीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूं। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको अगेन बता देती हूं, 9837896896। और सुनिएगा ये शानदार से गाना।

मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों, अब अपडेट जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप नोएडा से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर जी इंडिपेंडेंस डे समारोह को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा दिल्ली रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया है एंड दिल्ली के कई मुख्य रास्तों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। चिल्ला बॉर्डर एंड डीएनडी और कालिंदा कुंड से दिल्ली जाने वाले वाहनों को जरूरत के अनुसार मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों की रूट में भी बदलाव किया गया है। इसीलिए अगर आज आप दिल्ली जा रहे हैं तो निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट ज़रूर चेक कर लें और थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलिए। याद रखिए दोस्तों, जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुंचना। तो घर से निकलने से पहले रूट चेक कर लीजिए एंड धीरे रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। And safe drive, stay alert, okay? और आपकी जो मैसेज आ रहे हैं ना, बड़े ही कमाल के हैं। मुझे लगता है कि मैं ही ज़्यादा उत्साहित रहती हूँ आपके मैसेजों को लेकर, लेकिन हमें यहाँ पर आपके मैसेज देखकर लगता है कि जितना उत्साह हमारे मन में होता है उतने ही ज़्यादा आप भी एक्साइटमेंट, आपके अंदर भी एक्साइटमेंट रहता है कि जल्दी से हम खुशी जी को मैसेज पहुँचाएँ और जल्दी से हमारा मैसेज शामिल हो जाए, है ना? ये आपके मन में चलता है ना, तो फिर सोचना क्यों है इतना, जल्दी से मैसेज पहुँचाइए ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 और यहाँ पर हमारे पास आए हैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज, तो मैं भी उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ आज की सुबह। क्या पहुँचाती है हमारी ऑडियंस? हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अमित वर्मा जी का हिमगिरी मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह राधे राधे खुशी जी, आपको भी राधे राधे। सर बताइएगा कैसे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी का। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और कहते हैं कि खुशी जी हमें एफएम रेडियो मुरादाबाद को सुनते सुनते पूरे 3 साल 4 महीने 21 दिन हो गए हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है, एक एक दिन सर ने लिखा हुआ है। और ये हमारा रेडियो इतने टाइम से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 साल 4 महीने 21 दिन हो गए हैं आज इनको रेडियो सुनते सुनते, इतनी शिद्दत के साथ रेडियो को सुनते हैं आप, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। एंड हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ क्योंकि वो भी इंतज़ार करते हैं हमारे दोस्त। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, हर हर महादेव, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं बैंक कॉलोनी से। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, इन्होंने क्या पहुँचाया है ये जान लेते हैं। ये हमें मैसेज पहुँचाती हैं प्रतीक्षा जी और कहती हैं कि खुशी जी आप हमें ज़्यादा ही प्रतीक्षा करवा देती हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें आप। हमें एक गाना सुना है मैम, आप सुनवा दीजिएगा। ओके जी, सुनवा देते हैं फिर, देर किस बात की, नेकी और पूछ। चलो सुनते हैं एक शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। और ये गाना सुनना चाहती हैं दिलजीत दोसांझ जी का बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, तो आज की मॉर्निंग सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी गपशप करेंगे। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है, सोचना नहीं है आपको, बस फोन जो आपके हाथों में है उस पर टाइप करना है हमारा ऑफिशियल नंबर 9837896 और इस पर पहुँचा देनी है अपने दिल की बातें।

बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सेलिब्रेशन कोई भी हो, वेन्यू होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
2: ड्रीम वेडिंग, ग्रैंड कॉर्पोरेट इवेंट या मेमोरेबल बर्थडे, वेलकम टू देवशाह जंगल रिजॉर्ट, जिम कॉर्बेट, रामनगर नैनीता,
1: जहां नेचर की खूबसूरती मिले वर्ल्ड क्लास लग्जरी के साथ, प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट, 120 प्लस रूम्स एंड स्पा।
2: देवशाह जंगल रिजॉर्ट, वेयर नेचर मीट्स लग्जरी। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन 9258253082।

0: आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 1.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक, फ्रॉम द मूवी चांदनी से ये प्यारा से गाना अभी आपने सुना। और दोस्तों अब एक ऐसी अपडेट जो सीधा जुड़ी है हमारी सेहत से। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका में सरकार ने तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा पान मसाला और ऐसे दूसरे प्रतिबंध उत्पादों पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। और इस रोक के दायरे में सिर्फ बिक्री ही नहीं बल्कि इनके निर्माण, भंडार, परिवहन और वितरण पर भी पाबंदी शामिल है। एंड सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद लोगों को खासकर युवाओं को इन हानिकारक पदार्थों से दूर रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। तो दोस्तों बात सिर्फ किसी एक राज्य या किसी एक नियम की नहीं है, बात है हमारी सेहत की, हमारी जिंदगी की। और अगर आप या आपका कोई भी अपना तंबाकू या गुटखा छोड़ना चाहता है तो आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए, नशे को ना जिंदगी को हाँ कहिए। क्योंकि असली स्टाइल वो नहीं जो हाथ में गुटखा लेकर दिखे, असली स्टाइल वो है जो अपनी जिंदगी को हेल्दी और खुशहाल बनाकर जिए। और एक छोटी सी बात दिल से, नशा कुछ पल का सुकून दे सकता है लेकिन जिंदगी से बहुत कुछ छीन सकता है। एंड अपने होठों की मुस्कान को तंबाकू के दागों में मत खोइए, अपनी सांसों को धुएं में मत उड़ाइए। अगर आप नशे से दूर रहेंगे ना तो एवरीवन, इस फैसले से आप सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत मौका दे रहे हैं। तो एक खुद से वादा कीजिए, नशा नहीं करेंगे, नशे को बढ़ावा नहीं देंगे और अपने अपनों को भी इससे दूर रखेंगे। क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे नशे में नहीं पूरे होश और पूरे जोश में जीना है। अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हर हर महादेव खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप भी बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया दीपशिका का और दीपशिका कहती है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, सब मेरे हालचाल जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप बताइए कैसे हैं? बस आप मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं हाँ, और घर में काम में बिजी हैं। चलिए काम करना भी जरूरी है। और हमारी जो फीमेल्स हमें सुन रही हैं इस समय, मैम क्या करती हैं? सोचती हैं कि बस जल्दी से मैं काम फिनिश कर लेती हूँ सारे आराम से, उसके बाद तो मैं फ्री होकर आराम से फोन चलाऊंगी, हाँ रील्स देखूंगी। देखो फोन चलाना ठीक है, थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया पर भी बिताना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि यू नो ट्रेंड में क्या है एंड क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है हमारे आसपास। फोन को चलाइए लेकिन फोन को लत मत बनाइए, ठीक है? इन चीजों का ख्याल रखो। बाकी सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी लौट कर आने वाली हूँ मैं, तो जब लौट कर आऊंगी ना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, है ना? लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप एंजॉय करें।

0: अल्लाह
1: हो इनको भला है।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती है दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: Hey, hi everyone. Good morning. Once again, welcome back. आप सभी का आरजी खुशी वेलकम कर दी है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. और मेरा सवाल जो है ना, वो बहुत इजी है. आज श्रीदेवी जी की जयंती है, तो उन्हीं का एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है. आज की मॉर्निंग मैं प्ले कर रही हूँ और आप बताइएगा कि डायलॉग कौन सी फिल्म का है. बस आपको फिल्म का नाम बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. तो बिना किसी तरीके सुनवा देते हैं हम आपको ये पॉपुलर डायलॉग. आज जो हम प्ले कर रहे हैं, श्रीदेवी जी ने इस डायलॉग को प्ले किया है एंड बहुत ही शानदार मूवी है. आपको बस उस मूवी का नाम बताना है. तो चलिए हम सुनवा देते हैं आपको. तैयार है ना आप?
1: नहीं पागल जी, जो मोहल्ले भर में झंडोरा पिटाई कि मेरे पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं.
2: असल में मालिक ने रोक लिया तो
1: मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली, टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक.
2: काजल नहीं नहीं नहीं,
1: मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो.
2: सिनेमा हॉल खरीद के दो?
1: नहीं पागल जी, जो मोहल्ले भर में झंडोरा पिटाई.
0: जी हाँ दोस्तों, बस आपको ये सिंपल से काम करना है. जो मैंने अभी डायलॉग प्ले किया है, आपको उस मूवी का नाम बताना है कि कौन सी मूवी का डायलॉग है. एंड फटाफट से व्हाट्सएप करो, हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896. आपको छोटू से काम करना है. मैं इंतजार कर रही हूँ और एक प्यारा सा गाना जो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको बिना किसी तरीके हम प्ले कर देते हैं और लौट कर आते हैं. तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, बस बने रहना है, खुशी के साथ मुस्कुराते रहना है.

क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा आपने ट्रैक अभी एंजॉय किया। एंड बोलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैंने डायलॉग अभी आपसे पूछा है कौन सी फिल्म का है। जब आप बोलेंगे तभी तो आप जवाब पहुंचा पाएंगे ना हम तक।

0: और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अब आ गए हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप बड़े ही एक्टिव लिसनर्स हैं हमारे। जैसे ही हम कोई भी डायलॉग आपसे पूछते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज आपको करवाते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं और राइट आंसर के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी सभी ऑडियंस बहुत कमाल की है, बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड एफएम मुरादाबाद से बहुत ज्यादा आप सब प्यार करते हैं, उसके लिए भी आपके लिए तालियां जी। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले राइट आंसर हमें पहुंचाते हैं विकी सागर जी। आज की मॉर्निंग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां जी आपको, आपने दिया है सही जवाब, तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां। कमाल ही कर दिया, लगता है विकी सागर जी फिल्म में देखने के बहुत बड़े शौकीन हैं। हाँ, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रवि सैनी जी का। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर ये हमें कहते हैं हाय गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप। रिंकू सिंह जी मुरादाबाद एकता कॉलोनी से अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच रिंकू जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जेठालाल जी का मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी का और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, खुशी जी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ एंड मेरी दोस्त काफी दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए हैं, इसीलिए मैं गाना सुनना चाहता हूँ, ए मेरे दोस्त लौट कर आ जा। खेमपाल सैनी जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मैसेज पहुंचाया आज की सुबह। और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई काम है तो ही घर से बाहर जाइएगा, अन्यथा अपने घर पर ही विश्राम करो, आराम करो, ठीक है, और हमेशा हैप्पी रहो। अच्छा, तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपको सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एवरीवन। मुस्कुराहट कभी कम नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना, दिल से खिल खिलाते हैं तो बड़े ही सोने लगते हैं, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहो। बाकी सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं मिलने वाली हूँ आपको 3 से 5, तब तक के लिए कीजिएगा मेरा इंतजार और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड बहुत सारा फन एक्टिविटीज तो यहाँ पर होती ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी काम की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ढेर सारा प्यार बनाए रखिए।
1: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है खेती किसानी। किसान भाइयों कैसे हालचाल हैं आप सभी के? मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज का विषय बहुत खास है, आज की वार्ता बहुत स्पेशल है किसान भाइयों। आज का विषय है गन्ने की फसल प्रबंधन, इस पे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। और एक बार फिर से एके जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ ढेर सारी बातचीत करने के लिए, और इस पे और खास चर्चा करने वाले हैं आज हमारे साथ खेती किसानी के प्रोग्राम में। तो सर आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में।
1: आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। मेरा सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को मेरी ओर से और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार
0: जी। तो एके सिंह जी, आप आज जो है गन्ने की फसल के बारे में हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारियां देने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियां सुनकर हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
1: पीएम प्रणाम योजना है,
0: पीएम प्रणाम योजना के बारे में।
1: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
0: जी,
1: उसमें जो पोषण का तरीका है, उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
0: जी, जी।
1: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक तो उसका ये उद्देश्य है। तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी होगी। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
0: जी,
1: कंपोस्ट खाद है
0: जी,
1: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाया, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं, 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में। अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए, और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल

0: न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगे, अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जाँच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
1: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
0: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं। उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
1: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
3: और अभी हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, गन्ने की फसल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे किसान को।
0: हाँ आनंद जी, जो आपने जो फसल के बारे में कहा है गन्ना
3: जी,
0: गन्ना हमारे भारत वर्ष की एक मुख्य फसल है। काफी जो लंबे क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, लगभग हर राज्य में, कुछ राज्य छोड़ दें जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से वहाँ नहीं होता है, बाकी करीब करीब सभी राज्यों में गन्ने का उत्पादन होता है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ सकते हैं। तो इससे जो उत्पादन होता है उससे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे तैयार होती हैं, जैसे कि गुड़ है, चीनी है और मीठे से संबंधित जो भी उत्पाद है वो उनका उत्पादन होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है एक तरह से फ्यूल के रूप में भी, जैसे इथेनॉल इससे तैयार हो जाता है, सीरा इससे तैयार हो जाता है, तो बहुत सारी चीजों का उत्पादन इसके द्वारा होता है और ये एक बहुत ही अर्थ की रीढ़ है हमारे देश के लिए। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी मांग है इन उत्पादों की, जैसे कि चीनी है, गुड़ है या और चीज है, उनमें हम करीब करीब आत्मनिर्भर हैं। और ऐसी स्थिति भी आती है कि हम अन्य देशों को भी यहाँ से बेचते हैं, इधर से निर्यात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो फसल है गन्ने की फसल, ये बड़ी अहम है और साल में दो बार लगाई जाती है, एक बार जो है रबी के सीजन में और एक बार जो है आपके जायद के सीजन में, तो दो सीजन में अलग अलग समय पर लगाई जाती है। ये फसल एक ऐसी फसल भी है कि जैसे एक साल आपने लगाई है उसके बाद आप जब आप इसको काट लेते हैं तो वही फसल फिर अगले साल के लिए भी वो काम करते हैं उसको पेड़ी बोलते हैं। तो जो अन्य फसलें हैं उनको हमने जैसे एक बार लगाया तो अगली वो उनको जब वो पकी तो उनको हमने काट लेते, फिर दोबारा उनकी हम एक तरह से सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं। लेकिन गन्ने के साथ ऐसा नहीं है, ज्यादातर हिस्सों में यही होता है कि एक वर्ष जो हमने गन्ना लगाया है वो लगभग जब उसकी कटाई होती है तो अगले वर्ष भी उसी खेत में उसी फसल को आगे के लिए हम तैयार करते हैं, उसमें शाखाएं निकलती हैं, फिर उसी तरह से गन्ना तैयार हो जाता है। तो ये मुख्य फसल है और इसका जो हमें उत्पादन वो तो मिलते ही, इसके साथ साथ इसकी तूड़ी मिलती है जो एक ऑर्गेनिक के रूप जो हमारे खेत है उनके काम आ जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर का जो आल होता है वो उस समय जब इसकी कटाई होती है तो हरे चारे के रूप में काम आता है खास तौर से, और सभी जानवर बड़े चाव से इसको खाते हैं, स्वादिष्ट होता है। तो हम ये देखें कि एक तरह से ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और कभी आपने देखा होगा बहुत से क्षेत्रों में तो जहाँ पूजा होती है वहाँ पर गन्ने को रखा जाता है, और जो देव उठनी जो होती है उस समय पर सभी जगह इसकी पूजा की जाती है, रखा जाता है।
3: बिल्कुल,
0: तो बड़ा महत्व है गन्ने का हमारे जीवन में।
3: जी, जी।
0: और महत्व यही है क्योंकि जो हमारे जो खान पान के मुख्य अंग है मिष्ठान है उनमें वो सभी हमें गन्ने के द्वारा ही लगभग
3: प्राप्त होते हैं।
0: तो ये जो गन्ने की फसल में कुछ जानकारियां रही, वैसे तो जानकारियां अनेकों और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे ज्ञात था वो मैं सभी किसान भाइयों के साथ साझा कर रहा हूं।
3: डॉक्टर ए के सिंह जी, मेरा एक और प्रश्न है, गन्ने की फसल में पोषण प्रबंधन के बारे में थोड़ी जानकारी आप दीजिए हमारे श्रोताओं।
0: हाँ, पोषण प्रबंधन
3: जी,
0: गन्ने की फसल एक तरह से एक साल की फसल है लगभग
3: जी,
0: एक साल वो खेत में रहती है 12 महीने 11 महीने के करीब, और इसका विकास होता है और अक्टूबर के आसपास जाके फिर इसमें मीठापन आना शुरू हो जाता है, और नहीं शुरू तो मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास ही होता होगा।
3: ओके।
0: वो धीरे धीरे फिर उसकी जो मतलब अधिक होती चली जाती है मात्रा, और नवंबर में आते आते मतलब जो देव उठान है उस समय तक चीनी का निर्माण पूरी तरह हो जाता है, इसीलिए कि देव उठान पे फिर हम इसकी पूजा करते हैं। ठीक है,
3: बिल्कुल।
0: तो ये जो फसल एक साल तक खेत में रह रही है तो उसके लिए हमें अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है।
3: बिल्कुल,
0: अच्छे पोषण में एक तो क्या है कि हमारे खेत के अंदर जैविक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए
3: जी,
0: जो उसको पूरे साल भर सहारा देता है, जो आलम्बन देता है, और पानी को रोकने की क्षमता उसमें अच्छी जब होगी जब में जैविक तत्व होगा। तो जैविक तत्व के लिए पोषण के रूप में आप गोबर की खाद है, कम्पोस्ट की खाद है, या गन्ना लगाने से पहले हरी खाद ले सकते हैं, उससे भी हमारे खेत में काफी जो है अधिक मात्रा में जैविक तत्व उत्पन्न होता है जो कि हमारी फसल को एक अच्छा स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक। इसके बाद फिर आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं जिन्हें कि हम ऊपर से देते हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जिंक है, तो ये सारे पोषक तत्व हैं। अब इन पोषक तत्वों को जब आप लगा रहे हैं गन्ना, उस समय आप प्रयास करें कि ये सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हम अपने खेत में दें लगाते समय या खेत की तैयारी के समय। उसके लिए बहुत सारे उर्वरक इस समय पर हमारी जो मतलब भारत सरकार ने जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कराए हैं, उनमें जैसे कि कुछ NPK हैं जिनमें नाइट्रोजन भी होता है
3: जी,
0: फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है, और कुछ में आपके सल्फर भी होता है। तो ये चार पोषक तत्व मिल गए आपको, जिंक आपको अतिरिक्त रूप में अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये आप प्रयास करिए कि जो NPK हमारे आ रहे हैं उनका प्रयोग अधिक करें, क्योंकि हर दाने में समान पोषण होता है। अगर आप अलग अलग जो कोई भी उर्वरक अलग अलग आप इस्तेमाल करते हैं तो उनमें समान पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये प्रयास कीजिएगा कि आप NPK का इस्तेमाल करके इनका प्रयोग करें। तो जब आप खेत तैयार कर रहे हैं आखिरी जो हल चला रहे हैं उस समय पे इनका प्रयोग कर सकें, या जब आप जब जो मतलब लगा रहे हैं गन्ने को जो उसकी पोरियां होती हैं उसका जो कूण है उसके नीचे आप लगा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, उस समय पर आप ये लगाइएगा। और अभी जैसे अभी का जो समय चल रहा है तो इस समय पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई उर्वरक की जरूरत है, फसल तैयार है, धीरे धीरे बारिश हो रही है और स्वतः ही जो फसल का विकास अपने आप होता रहता है। एक और मैं जो वैज्ञानिक जो तथ्य है लोग कहते हैं
3: जी,
0: कि जब एक तरह से जो बारिश होती है और बिजली जो कौनती है तो उससे नाइट्रोजन है वो जो पानी के साथ नीचे आती है, तो नाइट्रोजन मतलब यूरिया। तो ऐसे समय पर जब इस तरह का माहौल रह रहा है तो आप समझिए कि प्रकृति हमारे जो भी जो मतलब इस तरह के पौधे हैं या पेड़ पेड़ है उनको अपने आप नाइट्रोजन दे रही है, उसको अलग से उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो ये एक मैंने थोड़ी हटके बात बताई है, लेकिन पोषण आप अच्छा दीजिए जिससे कि जो मतलब उसका विकास हो। तो ये पहले शुरुआत का हो गया, उसके बाद फिर जब आपकी फसल करीबन 30 दिन की हो जाए उस समय पर आप नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप यूरिया है आप स्प्रे भी कर सकते हैं यूरिया का, आपके ये जो नैनो यूरिया आता है आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका ध्यान रखें, पोषण जरूर दें, लेकिन पोषण का जो मुख्य आधार है वह है जैविक, वह जरूर दें। कोई भी फसल अवशेष खेत से बाहर जाके आग न लगाएं, उसे खेत में ही सड़ाएं, मिट्टी में मिल जाए तो अनेक जीव उससे पलते हैं और वो हमारी मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं, खेत की मिट्टी को। जब खेत की मिट्टी समृद्ध होती है तो वो मैं एक अपनी ओर से उपहार के रूप में अच्छी फसल देती है, अच्छी उपज देती है, हम उसको सहयोग करते हैं, वो हमें सहयोग करते हैं।
3: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर ए के सिंह जी ने। और इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा, गन्ने की फसल में सिंचाई, जल निकास एवं बुवाई के बारे में थोड़ी जानकारी आप बताइए।
0: ये जो बुवाई बुलाई है बनाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
3: अच्छा,
0: सिंचाई के बारे में आती हो, क्योंकि ये इसका बहुत विकास होता है और हमेशा एक साल के लिए खड़ी है तो खेत में नमी बनी रहे, लेकिन अतिरिक्त नमी भी गन्ने के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से हमें लगता है कि भाई खेत की सतह सूख गई है तो ये नमी की कमी है, लेकिन अगर आप थोड़ा उसे खोद के देखेंगे तो नीचे बहुत नमी है।
3: अच्छा,
0: तो ऐसी अवस्था में थोड़ा ध्यान रख के ज्यादा पानी न दे, पानी जब आपको लगे कि भाई अब जरूरत है खेत की जो सूखने की स्थिति है या मतलब जो आपके खेत की मिट्टी है उसमें नीचे तक नमी जो खत्म होगी तब आप जरूर पानी दें। पानी आप ठीक दें, बहुत हल्का भी न दें और बहुत ज्यादा भी न दें। इसमें एक चीज होती है, जब जब इसका अच्छा विकास हो जाता है तो ये पानी की मात्रा तो अधिक लेती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन छांव भी हो जाती है खेत, तो जो अपने खेत की मिट्टी है उससे बासपन तो रुकता है, लेकिन जो ऊपर जो इसकी हरी पत्तियां उनसे बासपन खूब होता है। तो आप प्रयास करें कि नमी बनाए रखें खेत। और फिर एक चीज होती है पानी का निकास, अभी जैसे कि बूंदाबांदी हो रही है, बारिशें हो रही है, तो ये प्रयास अवश्य करें कि खेत में पानी ज्यादा रुके नहीं। पानी रुकता है तो वो कहीं न कहीं फसल को कमजोर कर, उसको हवामान सही से नहीं मिल पाता, वो पोषण ज्यादा नहीं जो अच्छे से ले पाती है। तो पानी के निकास की व्यवस्था आप अवश्य कीजिएगा। अगर आसपास कोई नाला या नाली या ड्रेनेज नहीं है तो आप अपने ही खेत के जो ढाल वाला हिस्सा है वहाँ पे एक खड्डा बनाकर उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, और वो पानी धीरे धीरे इसके अन्य क्षेत्र में भी जाएगा तो वो कोई हानि भी नहीं करेगा, लेकिन फसल भी हमारी स्वस्थ रहेगी जो रहेगी। हो सकता है कि उससे कुछ पौधे खराब हो जाए, आपको लगे उखाड़ने पड़े। तो ये सिंचाई और जो है पानी के निकास के बारे में बात रही। अब बात ये आती है कि आपने पूछा था कि जो इसकी बनाई,
3: जी,
0: तो गन्ने की फसल जब उसका आकार पूरा होता है तो पौधे इधर उधर झुकने लगते हैं या झूलने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, सीधे नहीं रहते, तो उससे क्या होता है उसके उत्पादन के ऊपर असर पड़ता है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो उसके लिए आमतौर पर सभी जगह वो क्या करते हैं कि जैसे 8-10 पेड़ हुए उनका एक झुंड बनाया और उसको बांध दिया, उसको बोलते हैं बनाई।
3: अच्छा,
0: तो उसका फायदा एक तो ये है कि वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, सीधे रहेंगे। दूसरा, जो अपना खेत है उसके बीच में हवा आराम से पास हो सकेगी और एक अच्छा और सीधा साफ सुथरा गन्ना हमें प्राप्त होगा। ऐसा जब आप कहीं लेके जाते हैं तो वो भी उसको जो उनको अच्छा लगेगा जो आपसे खरीदेंगे। दूसरा एक और फायदा है कि जब अगर आप इस गन्ने को बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो सीधा गन्ना हमें मिलेगा।
3: ओके,
0: है ना, तो वो एक आसानी से लोग उसको पसंद करेंगे। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। फिर एक चीज और है कि जब इसकी आप जो कटाई करें तो बीच में ही जगह मिलेगी तो आराम से इसकी कटाई भी आपकी हो सकती है, छिलाई भी अच्छे से हो सकती है, उसमें कोई फिर रुकावट नहीं आएगी। तो इन तीन चीजों का आप विशेष रूप से, वैसे सभी लोग इसके बारे में जाने, लेकिन होता कभी कभी ऐसा लगता है अरे बहुत लंबा है कौन करे, इसके लिए समय नहीं है, तो उसी के पत्तों से ही पौधों को बांधा जाता है, पत्ते तोड़े जाते हैं और उसी से उसको बांध दिया जाता है। अलग से आपको रस्सी की और किसी चीज की जरूरत है नहीं, मतलब जो चीज जहाँ की है वही वो इस्तेमाल हुई और फिर जब फसल कटेगी तो वही पत्ते उसमें सड़ में आपके खेत में सड़के एक अच्छा जैविक खाद बना देंगे।
3: क्या बात है
0: आनंद जी,
3: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी जानकारी साझा करी आपने जी। सो इसी बीच डॉक्टर ए के सिंह जी, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा।
0: जी हाँ बिल्कुल आनंद जी, खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है
3: जी।
0: खरपतवार हमारे जो मुख्य फसल होती है उसके लिए एक तरह से शत्रु की तरह होते हैं
3: जी जी,
0: जो उसके भोजन को चुरा के खा लेते हैं और उसके साथ भी रहते हैं। आप ये समझिए कि वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर आए और भाग गए,
3: अच्छा
0: उसी खेत में रहेंगे और उसी फसल के साथ रहेंगे, अच्छे से विकास करेंगे और हो सकता है फसल को ढक भी देते कभी कभी, तो वो वहाँ से भोजन खाते रहते हैं। आप जो खर्चा फसल के लिए कर रहे हैं
3: जी जी,
0: वो हो सकता है कि वो खरपतवार ही खा जाए और फसल कमजोर रह जाए, तो इन खरपतवारों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। गन्ने की फसल में आम तौर पर हम देखें तो इसको हम लाइन में बोते हैं, लाइन में जब बोते हैं तो उसमें खाली जगह काफी होती है, तो इसकी गुड़ाई आराम से हो सकती है। गुड़ाई के लिए अगर छोटा रकबा है आप हाथ से कर सकते हैं, अगर रकबा बड़ा है तो आपके जो जो, जो ट्रैक्टर के हल होते हैं उनसे भी की जा सकती है। आजकल तो छोटे छोटे यंत्र आ रहे हैं उसी साइज के होते हैं और वो दो लाइनों के बीच में निकाल देते हैं और उससे अच्छे से गुड़ाई हो जाती है, मिट्टी उलट पलट जाती है, उससे हवामान अच्छा रहता है खेत के अंदर और जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, यही करना चाहिए। और इसमें एक और चीज जो अच्छी हो जाती है, अगर कुछ फसल अवशेष इधर उधर है तो वो भी टूट के अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो भोजन के रूप में उसमें काम करते हैं। तो ये थी यांत्रिक क्रिया जिसके द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं।
3: बहुत
0: दूसरा ध्यान यही रखिएगा कि खरपतवारों का नियंत्रण आपने किया है तो जो भी खरपतवार है उनके बीज न बनने पाए, यह प्रयास करें साल दस साल, क्योंकि खेत आपका है, आपने हर साल उसमें खेती करनी है। अगर इसी तरह बीज बनते रहे तो हर साल उतने ही खरपतवार फिर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, और अगर बीज बनना आपने रोक दिया तो फिर धीरे धीरे खरपतवारों जो इसमें होने वाले खरपतवार है उनकी संख्या में हर साल कमी आनी शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब बहुत थोड़े बहुत पौधे आपको दिखाई, तो यह प्रयास करें कि खरपतवारों का बीज न बनने पाए। अब आता है कि आज का समय है, कभी कभी श्रम हमारे पास नहीं होता, समय भी का अभाव होता है या यंत्र नहीं होते, तो उस समय पर हम बहुत सारे रासायनिक जो उत्पाद है उनके उपयोग से हम खरपतवारों को नियंत्रण करने का काम लेते हैं। तो उसके लिए जब जैसे जो आपकी पहली अवस्था है उसमें आप ये काम कर सकते हैं, जब भी खरपतवार 4 से 5 पत्ती की अवस्था में हो तो एक दवाई आती है हमारी उत्तम की वीडकिल के नाम से, वीडकिल 508, इसकी 2.5 लीटर मात्रा को आपको लेना है और 200 लीटर पानी में घोल के और खरपतवारों के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ये मात्रा 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए है खेत के, और इसमें जैसा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी हम जो उपयोग में ला रहे हैं उसमें कोई मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए
3: जी।
0: क्योंकि मिट्टी का कण जो हमने जो दवा इस्तेमाल करी है वो उसकी कार्य क्षमता को लगभग 30-40% तक कम कर देता है, तो ये हमें एक आर्थिक नुकसान भी होता है,
3: हाँ जी,
0: श्रम का नुकसान भी होता है क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम लगाया
3: जी जी।
0: और फिर भी हमें वांछित परिणाम नहीं मिल पाए, तो उसके लिए आप प्रयास यही करिए। दूसरा, जब आप स्प्रे कर लें तो फिर इस टंकी को आप बहुत अच्छी तरह से धोएं, सर्फ से भी धोएं और फिर सादा पानी से धोएं, क्योंकि ये जो उत्पाद है वीडकिल ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। अगर इसका थोड़ा सा भी अंश उस टंकी में या उस पाइपलाइन में या उसमें रह जाता है नोजल में, उससे फिर दोबारा आप किसी और चीज का स्प्रे करेंगे तो उसका फसल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो इसके स्प्रे के बाद आप टंकी को अच्छे से साफ करें, उसकी पाइपलाइन को अच्छा साफ करें, नोजल वगैरह को पूरी तरह क्लियर करके फिर आप दोबारा कोई स्प्रे करना है उसके लिए ये टंकी आपकी तैयार हो जाती है, क्योंकि टंकी एक ही होती है, उससे कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं, उसे ही हम पोषण का भी प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिक्विड जो फर्टिलाइजर हैं या पोषक तत्व हैं उनका भी हम प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से आपको खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखना है। और फिर मैं यही रिपीट करूंगा कि आपने हमारे मेड़ पे बहुत सारे खरपतवार होते हैं, समय पे उनको हटाते रहिए, बीज न बनने पाए। बीज बनेगा तो खरपतवार की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम परेशान हो जाएंगे, बीज नहीं बनेगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे और हमारे पूरे क्षेत्र में, और मैं तो कहता हूँ एक ही किसान क्यों, आपके आसपास जो और भी लोग हैं वो भी इसका संज्ञान लें, और अगर इस ओर सभी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हो।
3: क्या बात है किसान भाइयों, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर ए के सिंह जी। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
0: हाँ, गन्ना क्योंकि एक तरह से हम देखें तो पूरे साल की फसल है
3: जी, बिल्कुल,
0: बड़ा आसान होता है कीड़ों के लिए वहाँ पर अपना आश्रय बनाना,
3: आश्रय बनाना बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक नहीं मिलती, फसल काटी नहीं जा रही, तो वो वहाँ पर आके अपना टिक जाते हैं और उन्हें अपने जीवन यापन का एक अच्छा सहारा वहाँ पे मिल जाता है। तो जब ऐसा होता है तो कीड़े भी बहुत सारे आते हैं, अब उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक कीड़ा है जो कभी कभी क्षेत्रों में आजकल देखने मिलता है, वो है दीमक। दीमक जमीन जो अंदर रहता है, तो उसके लिए एक दवा आती है उत्तम युवोटा के नाम से। इसको करीब करीब आप 200 इसकी मात्रा आप करीबन जो 250 ml ले लें, 400 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ समान रूप से खेत पर छिड़काव करें। इससे जो दीमक है उसका एक ठीक ठाक नियंत्रण आपके क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा शीर्ष छेदक होते हैं, नीचे जो छेद करने वाले जो आपके कीड़े होते हैं, उनका भी नियंत्रण इसी दवाई के छिड़काव से हो जाएगा। दीमक भी होगा और छेद करने वाले जो गन्ने में कीट हैं, उनका भी नियंत्रण इसमें से, इस दवा से हो जाएगा। अब एक होता है एक सफेद सा, बड़ा सॉफ्ट सा, ऐसा लगेगा रुई का फाया जैसा है, उसको बोलते हैं मिलीबग। मिलीबग होता है, ये सफेद रंग का भी हो सकता है और काले रंग का भी हो सकता है। तो इसका भी आपको रोकथाम करनी है, क्योंकि ये पौधे पर चिपकी रहती है और फिर उसको जो धीरे धीरे कमजोर करती है। तो उसके लिए एक दवा टोरो आती है, ये 300 ml दवा है, 200 लीटर पानी में घोलकर इसको समान रूप से जो पौधों के ऊपर छिड़काव करें। दीमक के लिए एक और दवा है, एक स्टेम्बो के नाम से आता है, ये करीबन 13 किलो आप 200 लीटर पानी में, ये जो मतलब जो है आपके 13 किलो मात्रा है, इसको मिट्टी मिला सकते हैं और खेत में आप इस्तेमाल करें, इससे भी काफी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक तना छेदक होता है, एक शीर्ष छेदक और चोटी छेदक होता है, इसके लिए भी ये स्टेम्बो काम करता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आप अपने कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। कीट का नियंत्रण जब भी आप करें तो ये देख लें कि बहुत ज्यादा, अगर उनसे कोई नुकसान हो रहा है तो ठीक है, अगर बहुत थोड़ी सी मात्रा है तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी लोग ये जो इसलिए भी समय से पहले कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई कीड़े ना आए मेरे खेत, तो आप देख आपकी सुविधा के हिसाब से, लेकिन अत्यधिक जो इनका प्रयोग ना करें, जितना जरूरत है उतना ही डालें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपके ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और एक बार इस्तेमाल होने के बाद लगभग जो 15-20 दिन तक फिर कोई आप स्प्रे न करें, हड़बड़ी में कि भाई अभी भी दिख रहे, धीरे धीरे उनका असर होता रहता है और फिर वो कीट नष्ट हो जाते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखें। फिर एक चीज और मैं कहूंगा कि जब भी आप एक खेत में गन्ना लगा रहे हैं तो एक या दो वर्ष बाद फिर उस खेत को बदल दें, क्योंकि अगर लगातार उसी खेत में करते रहते हैं तो एक क्रम बन जाता है, सारे कीट वहीं आसपास इकट्ठे रहेंगे, उनके पास उनको पता है गन्ना आना है, तो उसी तरह के कीड़े वहां पर रह आएंगे। अगर आप एक दो साल में क्रम चेंज कर देंगे, कोई और फसल ले लेंगे बीच में, तो वो एक श्रृंखला टूट जाती है और कीटों की संख्या कम हो जाती है और आगे चल के जो हमारी फसल होगी उसमें कम इसकी जो संक्रमणता आपको देखने को मिलेगी। आनंद जी,
3: सर बेहद ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हमारे साथ आप साझा कर रहे हैं। और बस अब मेरा आपसे इसी विषय पर अंतिम प्रश्न होगा कि गन्ने में रोग नियंत्रण की थोड़ी जानकारी दीजिएगा।
0: बिल्कुल, रोग सभी में आते हैं, तो जैसे कि एक तो लाल सड़न रोग होता है, एक उखटा होता है
3: जी।
0: उखटा रोग है जिसमें कि पौधा नीचे से ही सूखने लगता है, और ये कंडुआ रतुआ इस तरह के अनेक रोग होते हैं, लेकिन उखटा मेन रोग होता है। इसके लिए एक तरह से फफूंद नाशी दवाएं हैं, वो सारी काफी कारगर होती हैं। तो उखटा रोग के लिए एक दवा आती है मैंजिम, ये करीबन 500 ग्राम दवा है, 250-300 लीटर पानी में आप इसको घोल के इसका छिड़काव करें, तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा
3: जी।
0: दूसरा एक जो है आपका जो लाल सड़न रोग है, इसके लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो एजोल करके एक दवा आती है, 200 ml दवा है, वो 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव कीजिए। तो ये मैंने जो फफूंद नाशक के इस्तेमाल से रोग रोकने की आपको विधि बताई। आजकल क्या बहुत लंबे समय से एक प्रैक्टिस भी चल रही है कि जो जब हम गन्ना लगाते हैं तो उसका बीज उपचार ही हम कर लेते हैं, जो पोरियां होती है ना उनको फफूंद नाशक के घोल में डुबो के रखते हैं और फिर उसकी हम बिजाई करते हैं। तो उससे लाभ क्या होता है कि जो अगर मतलब जो पोरियां लगा रहे हैं उनके ऊपर अगर रोग के कुछ जीवाणु हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं और जो उससे स्वस्थ अंकुरण होता है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा प्रभाव है तो आप ये भी कर सकते हैं, लगाते समय जो फारी है उसमें इसी फफूंद नाशक का आप स्प्रे भी कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर हल्का सा। तो ये दो तरह से जो ये प्रारंभिक है, अगर ये प्रारंभिक करते हैं तो इसमें हमारा श्रम भी कम लगता है, तनाव भी नहीं होता है, खर्चा भी कम होता है और पूरी फसल जीवन काल के लिए स्वस्थ फसल मिल जाती है। तो आप बीज उपचार जरूर करें, और बीज उपचार के लिए अच्छी दवा लेके आए, अच्छी कंपनी की दवा लेके आए और उसका आप प्रयोग करें। जैसे कि मैनजिम है, यह भी बीज उपचार के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसका इसी तरह से आप घोल बनाए और घोल बनाते वक्त जो सावधानी आपको रखनी है, उसमें मिट्टी का अंश नहीं हो और जो आपकी पोरियां हैं उनको पहले साफ कर लें। जैसे साफ करना क्या है कि साफ पानी में, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होता है वहाँ पे उनको, जिससे कि मिट्टी उनकी हट जाए। तो ये ध्यान रखिए और उस घोल में करीब करीब 20 जो आधा घंटे के आसपास जो मतलब आप उस पूरी को रखें तो उसका जो फफूंद नाशक उसका असर उसमें जाएगा और जो उसमें अगर रोग का कोई अंश है तो उसको ये नष्ट कर। तो ये रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी है। तो बीज उपचार से कर आप आगे के लिए इस तरह से बीजों ये जो रोग है उनको आप रोक सकते हैं गन्ने से।
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर ई के सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जो हमारे साथ स्टूडियो में है और बहुत सारी जानकारियां जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार। सर मैं आपसे जाते जाते कोई एक संदेश लेना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों के नाम, जो आप एक संदेश करना चाहें जाते जाते।
0: जी जी, ये जैसे साथियों ये जो गन्ने की फसल है, वार्षिक फसल है, इसमें जब आप लाइन से बोते हैं कभी प्रयास करके देखिए कि जो लाइन के बीच में उसमें दो दाल वाली फसल जो कि जमीन पर चलती है वो आप लगाइए। अगर आप उससे अनाज नहीं लेना चाहते हैं तो जब वो करीबन 40 एक दिन की हो जाए तो उसी मिट्टी में आप हल चला के उसी खेत में मिला दें, तो ये जैविक तत्व बढ़ाएगी और जो नाइट्रोजन की मांग है, जो आप यूरिया जो इस्तेमाल करते हैं उसकी मांग को बहुत कम कर देगी या बहुत थोड़े में, या हो सकता है कि आप यूरिया न डालें, यूरिया घोल के स्प्रे भी कर देंगे तो एक अच्छे से आपको प्रभाव मिलेगा। मतलब मेरा कहना है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके ऊपर उनका उपयोग आपको ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत कम में काम चलेगा और ये हमारे खेत के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारी सारी। और इसके अलावा एक और इसका फायदा होगा, जब आप इसको लगाएंगे तो अगर ये अच्छे से आच्छादित हो गया, इसकी पत्तियां खूब हो गई, तो खरपतवार भी इसके नीचे ढक जाते हैं और उनको जब वो ढक जाते हैं तो उनको धूप में नहीं मिलती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और वो भी छोटे रह के मर जाते। तो बहुत इसके अनेकों फायदे हैं, अगर आपका क्षेत्र है और आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा हो।
3: बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारियां दी वरिष्ठ प्रबंधक श्री ए के सिंह जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में थे, तमाम सारी जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे थे। एक और नए विषय के साथ, एक और नई अच्छी टॉपिक के साथ फिर से आपसे जुड़ेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है खेती किसानी। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमा, ऐसे ही सुनते रहिए मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। ए के सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए।
0: आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी हैं आपके लिए उपयोगी होंगी। धन्यवाद।
3: बिल्कुल धन्यवाद, नमस्कार श्रोताओं।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन।

0: खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10.9 ग्राम के बीच हो जाता है तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच होता है तो इसे मध्यम अमीनिया कहा जाता है और 7 ग्राम से कम हो जाता है तो गंभीर अनीमिया माना जाता है।
1: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा चिंता।
0: बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाएं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ सकता है।
1: तो क्या मध्यम और गंभीर अनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
1: दोस्तों अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
2: यह कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे। थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी। घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भ अवस्था में ऐसा तो होता ही है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई। रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम अनीमिया है।
1: फिर क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझाया गया, आगे की सलाह दी गई। परिवार को भी बताया गया कि यह केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है। यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
1: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाए तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
0: डॉक्टर सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को देखते हैं। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन की गोली कम असर या ज्यादा सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IVFCM जैसे नसों के रास्ते से दिए जाने वाले आयरन का उपचार पर विचार कर सकती है।
1: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
0: बिल्कुल सही RJ खुशी, IVFCM हर किसी के लिए नहीं, यह एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
1: अब जरा IVFCM को और आसान भाषा में समझाइए।
0: देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM ये कोई अलग दवा है या कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझे तो यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नसों के रास्ते से दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गर्भ आयरन या डिफेंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि बहुत तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
1: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
0: बिल्कुल RJ खुशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिलाओं की स्थिति समझी जाती है, उसके बाद ही डॉक्टर कोई निर्णय लेते हैं।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है?
0: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
1: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
0: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यह दिया जाता है। इसके बाद कुछ ही सड़क महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
1: क्या यह अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
0: जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
1: तो अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में होगा।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी। कई बार परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावित उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। सेहतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
0: क्योंकि मध्यम या गंभीर अनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, यह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसीलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्द ही प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वह IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सके।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े। पहले पूरी जानकारी ले, सवाल पूछे और स्वास्थ्य कर्मी की बात समझे।
1: सेहतिया सिंह जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिलाओं की कमजोरी दूर करना है?
0: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य है माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना। जब अनीमिया के समय इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
1: यानी फायदे केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

0: अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
1: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेकर जाए, उसमें देरी ना होने दे। तीसरा, जांच में साथ जाए। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करे। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराए। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करे। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। और आठवा, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष ना दे।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
2: इलाज के बाद भी फॉलोअप बढ़ जाता है। इलाज के बाद फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की पुण्य जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
2: बिल्कुल सही।
0: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी।
2: गलत। IVFCM निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगाने का मतलब ये नहीं है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
1: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किस जाँच या फॉलोअप की जरूरत नहीं होती?
2: बिल्कुल गलत। फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच की निगरानी में की जाती है।
0: IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
1: गलत। यह हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
2: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होगा।
0: धन्यवाद। इसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
1: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत खींचिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिलाओं को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
2: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य के परिणाम संभव है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव की अवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुमति, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की संस्कृति की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षताओं को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070 0552।

0: शान है।
1: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
2: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
1: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
1: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
2: बिल्कुल सही।
1: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
2: और स्टूडियो में ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
1: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने द्वार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। दो साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किस किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती थी वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: इस घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें, बिल्कुल,
0: है ना?
1: ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: होता है।
0: वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको
1: ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

वेलकम बैक एक बार फिर से. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी. साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है. अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी. कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है. पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला. लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली. लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा. इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें.

0: वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
1: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
0: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
1: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
0: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास, अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
1: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
0: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
0: बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
1: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
2: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
1: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजल्स और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का

0: वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
0: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो टीडी टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
0: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है और उस खून जितना ही बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है वो बच्चों में आती है तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में जो भी हमने शुरू में जिक्र किया उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है यानी उपकेंद्र है जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती है और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं चूंकि हम जानते हैं और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था सारे बच्चों को। आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं, और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है, और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है, और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए,
2: हमें केवल 19% खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित, इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया, और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
4: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
2: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
5: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिचला, लेकिन मैं एक सरुकाश हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
2: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
6: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है।
2: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
7: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है,

0: साल कांग्रेस पार्टी के YB सुब्रेड्डी ने खनिज संसाधन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर FIR करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रूपये की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रूपये की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्यों की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं।

0: ऐसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो वस्तु कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात करते हैं और जब हम उस सुनहरे दौर की बात करते हैं तो उन अभिनेत्रियों का जिक्र ना हो जिन्होंने पर्दे पर अभिनय के साथ साथ नृत्य को भी एक नई पहचान दी, तो ये कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। और आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसी अभिनेत्री की है जिनकी आंखों में अभिनय था, चेहरे पर भाव थी, कदमों में शास्त्रीय संगीत की ऐसी लय थी जिसने हिंदी फिल्म की नायिका की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार्स गिना जाता है। नाम है वैजंती माला।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। श्रोताओं, हम आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जहां हम बात करने वाले हैं महिला मंच शो में, यानी कि PMJAY के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है। यानी अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च ना करने पड़े। इलाज सरकारी और योजनाओं से जुड़ी निजी अस्पतालों में कराया जा सकता है। तो चलो मेरे साथ हर बार की तरह कंपनी देने के लिए, यानी कि मैं और खुशी लेकर आते हैं आप सभी के लिए शो। तो मैं खुशी से ही जान लेती हूँ कि इस योजना के क्या क्या लाभ होते हैं।
3: तो अभी हम करने वाले हैं अपने प्यारे श्रोताओं का यहाँ पर स्वागत। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे बड़ा लाभ यही है कि परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अगर किसी को कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायलिसिस, बड़ी सर्जरी या अन्य गंभीर बीमारी हो जाए तो इसका इलाज इस योजना के तहत कराया जा सकता है। ये सुविधा कैशलेस है, यानी अस्पताल में भर्ती होने पर आपको इलाज के लिए पैसे जमा नहीं करने पड़ते। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, डॉक्टर की फीस, जाँच, दवाइयाँ, ऑपरेशन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद की कुछ जरूरी दवाइयों का खर्च भी शामिल होता है। इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। परिवार के सभी पात्र सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी हर साल 5 लाख तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो।
2: अब हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए।
4: सभी को नमस्कार। आयुष्मान कार्ड की पात्रता जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए। beneficiary.nha.gov.in पर क्लिक करेंगे और बेनिफिशियरी से ही ओटीपी के माध्यम से जब हमारा पेज खुलकर आ जाएगा तो उस पेज पे लिखा होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रथम चरण में आपको देखने को मिलेगा जो ब्लॉक होगा उसमें लिखा होगा स्कीम, तो PMJAY स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जिस स्टेट से संबंधित है आप, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर सब स्कीम आती है, सब स्कीम में आशा, आंगनवाड़ी, BOCW जो मजदूरी कार्ड से रिलेटिव होती है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी की, कुंभ मेला वर्कर और PM जनमन PVTG जो आदिवासी क्षेत्र होता है, और PMJAY और साथ ही साथ PMJAY अंत्योदय राशन कार्ड की स्कीम होती है। आप सर्वप्रथम PMJAY स्कीम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के हैं तो मुरादाबाद सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो सर्च बाय लिखा होगा फैमिली आईडी, आधार नंबर, PMJAY आईडी। तो हम फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अपनी फैमिली आईडी डाल सकते हैं अगर हमारे पास है। अन्यथा की स्थिति में आप आधार नंबर डालेंगे और डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद सर्च पे जाएंगे। अगर आपका नाम आता है तो आप KYC के उपरांत अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
4: कार्ड बन जाने के उपरांत, आयुष्मान कार्ड का उपरांत बीमारी के अंदर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भर्ती होने पर ही लागू होता है। आप जाएंगे अस्पताल में, कंडीशन है आपकी और भर्ती हो रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड आपका नियम अनुसार सूचीबद्ध चिकित्सालयों में लगा दिया जाए।
2: अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप कहाँ कहाँ इसका इलाज करवा सकते हैं और ये इसका क्या लाभ मिलता है?
4: जैसा कि आप जानते हैं, गंभीर बीमारियां कहीं ना कहीं हमारा शोषण कर रही हैं। उन बीमारियों के लिए जो हमारा जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी है और साथ ही साथ उनको कोई बीमारी हो गई है या अस्पताल में जा रहे हैं, 5 लाख तक का मुफ्त निःशुल्क नियमानुसार इलाज का लाभ का प्रावधान है जो सूचीबद्ध चिकित्सालयों में नियमानुसार दिया जाता है।
2: अगर माता पिता का आयुष्मान कार्ड है तो बच्चों को किस प्रकार से उनके लाइफ में काम आ सकता
4: है? बहुत अच्छी बात आपने सवाल पूछा है। बच्चों का किस प्रकार लाभ मिल सकता है माता पिता के बने हुए आयुष्मान कार्ड से? माता पिता के बने हुए आयुष्मान कार्ड से अगर बच्चों को कोई दिक्कत है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज उन्हीं के बने हुए माता पिता के आयुष्मान कार्ड से हो जाता है।
2: सर, एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहेंगे?
4: संदेश, आप अपनी सभी पात्रता जानें, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जन सेवा केंद्र, पंचायत सहायक, कोटेदार, आशा, आंगनवाड़ी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। हर जगह आयुष्मान मित्र हैं जो कार्य कर रहे हैं, कार्ड अभियान चल रहा है, सभी बहुत तेजी के साथ कार्ड को बना रहे हैं। ये पूरे भारत की योजना है, इसमें आप सभी भागीदार बने, लाभ दें, साथ ही साथ स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।
2: थैंक यू सो मच सर। और इसके लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
3: इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC के अनुसार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवार इसमें शामिल हैं। अंत्योदय अन्न योजना AAI और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग भी इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में रेड़ी पटरी लगाने वाले मोची, आदिवासी, निराश्रित और अन्य पात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह योजना जाननी है कि आपका नाम इस योजना में है या नहीं, तो आप अपना मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपनी पात्रता की जांच करा सकते हैं। रीना, आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?
5: अरे बहुत आसान है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पहले अपनी पात्रता जांचें। यदि आप पात्र है तो EKYC पूरी करके घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी अस्पताल या आयुष्मान मित्र के पास जाए। वहां आपकी पहचान फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी और आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है तो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाइए। यह कार्ड बीमारी के समय आपके इलाज का बड़ा सहारा बन सकता है और आपको आर्थिक परेशानी से भी बचा सकता है। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों वेलकम बैक है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है महिला मंच, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पीएम जेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। और दोस्तों प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, भर्ती होने से पहले और बाद के कुछ चिकित्सा खर्च भी शामिल है। कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी का उपचार देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में पोर्टल बिल सुविधा यानी पात्र लाभार्थी दूसरे राज्य में भी इलाज करा सकते हैं। दोस्तों इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को मिलता है। पात्रता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तय की जाती है। अगर किसी श्रोता को ये जानना हो कि उनका नाम सूची में है या नहीं, तो वह आर्थिक आयुष्मान भारत पोर्टल या नजदीकी कमिंग सर्विस सेंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना दे, केवल अधिकृत केंद्रों और आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं जानते हैं और किसी के आप बातों में आ जाते हैं और उनको वो बोलते हैं आपसे कि हमें पैसे दो, हम आपका फ्री इलाज करवा देंगे। लेकिन जब आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है तो आपको किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ किसी को भी पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी बोले, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। श्रोताओं अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप सभी को पेश है हमारी तरफ से।
0: दोस्तों इलाज जरूरी है लेकिन उससे

हेलो नमस्कार आदाब कल गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आपकी भी अगर ख्वाहिश है कॉल करने की हमारे कार्यक्रम में तो जरूर कॉल कीजिएगा। एवरीवन हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों बारिश की बूंदों ने मौसम को कुछ यूं सजा दिया है, हवाओं में ठंडक है, फिजाओं में खुशबू और दिल कह रहा है आज तो बस संगीत हो जाए। तो इस सुहाने मौसम में आपकी अपनी खुशी लेकर आई है आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। बाहर का मौसम बड़ा ही औसम है ना, इतनी गर्मी थी फाइनली बारिश हो गई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इतना खूबसूरत बाहर का मौसम है तो एक ब्यूटीफुल ट्रैक भी हो जाए। तो चलिए एवरीवन सुनवाते हैं आपको बहुत ही प्यारा सा शानदार सा गाना, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, बूंदों ने आज फिर से एक नगमा सा छेड़ा है, मौसम ने जैसे प्यार से हमें घेरा है, हवाओं में ठंडक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मतलब उम्मीद नहीं थी ना कि इतना खूबसूरत मौसम हो जाएगा, है ना। हवाओं में है ठंडक, फिजाओं में है नमी, ऐसे सुहाने मौसम में बस आपकी फरमाइशें सुननी है। अभी अगर आप भी हमारे ब्यूटीफुल शो में कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नंबर तो बता दूं, हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है 9837896896। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और अभी आपने ये सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत, आशा भोसले जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अभी उठाइए फोन और डायल कीजिएगा हमारा मैजिकल नंबर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है। और अभी सुनिएगा एक सुहाना सा गाना, मैं बस वापस आती हूँ।

0: एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बिल्कुल जी, गुनगुनाइए, रेडियो बजाइए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि खुशी है आपके साथ। शो का नाम है हेलो फरमाइश, और वक्त मैं आपको बता देती हूँ एवरीवन, समय हुआ है 3:28, और बाहर की मतलब जो बारिश हुई है ना, उस बारिश ने तो दिल ही खुश कर दिया है ना। इतनी गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी, फाइनली सबको राहत मिल गई है। इतनी तेज बारिश आई है कि हमारे जो आसपास छोटे मोटे नाले थे वो भी फुल भरकर चल रहे थे, और मैंने देखा बाहर स्टूडियो से जाकर, तो बहुत सारे लोग जो वर्किंग है वो ऑफिस से आ रहे थे, या फिर जो टीचर है मैम वो भी भीगते भागते स्कूटी चलाकर आ रहे थे, पूरी तरह भीग चुके थे। मतलब बारिश इतनी तेज थी कि नहाए बिना तो वो जाने ही नहीं देती। तो दोस्तों किस बात का इंतजार है, जल्दी से कॉल कीजिए ना। अच्छा, ओहो आपको नंबर नहीं मालूम है, चलो मैं बताती हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जहाँ पर आपको कॉल करना है, और अभी हम सुनवाते हैं आपको एक शानदार सा ट्रैक।

0: और मानू से अभी आपने ये बेहतरीन गाना सुना, जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से। और जैसे ही हेलो फरमाइश में आप भी कॉल लगाते हैं, हम कॉल रिसीव करते हैं तो आपका भी दिल जोरों से धड़कने लगता है ना। मुझे मालूम है। चलो अभी बात करते हैं अपने एक कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: जय श्री राम। आपको भी मैम, कैसे हैं आप?
1: आप बताओ,
0: हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छे हैं। आपकी इतनी प्यारी सी आवाज है, मधुर मधुर आप बातें कर रही हैं। नाम भी बता दीजिएगा अपना।
1: अरे आप तो मधुर भी नहीं है।
0: नहीं मैम, ये तो आपकी प्यार है मैम, आप बहुत प्यारा बोलती हैं। तो आप बताइएगा अपना शुभ नाम क्या है मैम आपका? नीतू जी लाइन पार से बात कर रहे हैं। तो बताइए नीतू जी, बारिश हो गई है, कैसा लगा आपको?
1: हाँ, बारिश हुई है।
0: हाँ, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी थी कल से। हाँ, तो बारिश हुई, अच्छा लगा ना?
1: अच्छा लगा बारिश
0: जी,
1: मिला
0: मन को। हाँ, तो बताइएगा मैम, आज आपने कॉल किया है, आप क्या सुनेंगी? सावन का इतना खूबसूरत सा महीना भी चल रहा है।
1: हाँ, सावन का खूबसूरत महीना है, गाना भी मैं सावन से जुड़ा सुनूंगी।
0: हाँ बताइए। अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है। तो मतलब ये पहले से डिसाइड किया था आपने कि आज कॉल लगेगा तो मैं ये गाना सुनूंगी? अच्छा, ओके। तो ये गाना हम आपको सुनवा दें मैम?
1: बिल्कुल
0: जी। थैंक यू नीतू मैम, आपने हमें कॉल किया। और सुनिए गए प्यारा सा गाना। मोस्ट वेलकम, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और ये गाना भी सुनिएगा। तो चलिए श्रोताओं, ये फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आने वाले हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइए मुझे, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: इतने खूबसूरत गीत जब चलते हैं ना तो गुनगुनाने का मन तो ऑटोमेटिकली करते हैं ना, क्यों दोस्तों? अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी और साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गीत में म्यूजिक दिया था और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: बेटा जी, अपने खुशी बेटा।
0: हाँ जी,
1: प्यार अते सत्कार भरी सत श्री अकाल भाई।
0: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। तुसी भी दसो की हाल चाल मैनू।
1: ठीक ठाक बेटा जी, तुसी दसो भाई, घर परिवार थोड़ी सेहत ठीक रहिंदी है भाई?
0: हाँ जी हाँ जी, इसे तो इथे तो सब बढ़िया है जी, तुसी दसो।
1: ठीक है बेटा। बेटा हमारे पंजाब में तो बाहर से काम आती है, तुम्हारे से मुरादाबाद कैसे है बेटा?
0: हाँ जी, अभी बारिश बंद हुई है, बहुत तेज बारिश आई थी दोपहर में।
1: अच्छा भाई, भाई गर्मी थोड़ी जा रहा है पंजाब दे विच, अपने पंजाब दे विच थोड़ी गर्मी जा रही है बेटा।
0: हाँ, पंजाब में गर्मी ज्यादा है ना?
1: हाँ बेटा, हम अद्धा बस सौन अद्धा अद्धे तो बंद हो गया, तो हम किया आई जा मौसम अच्छी है ना।
0: हाँ जी
1: ठीक है बेटा, मैं पीछे से हूँ पहला।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: मैं भाई पिंड माहौल खुद डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो दिलजीत मट्टू बोलना बेटा जी। प्यार सत्कार भरी दोबारा सत श्री अकाल बुलाता हूँ बेटा।
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत ही मीठा बोलते हो
1: बेटा आपके फिर धिया पुत्रों भाई, तुझी सानू प्यार बेटा, तुम्हारा बहुत प्यार होता है आता है, क्या करे।
0: हाँ जी, तो
1: धन्यवाद
0: बताइएगा आज क्या सुनने का मन है आपका, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे सर?
1: बेटा। मैं बताता हूँ पहले ना बेटा, ये मेरे ना जो मेरे यार दोस्त है, मैं बेटा फिर भूल जाएगा, उसका नाम है जी परमजीत सिंह बाघा पुराना जी, ते जी स्वामी धर्मपाल सिंह कथा वाच के जी, उन्होंने जी एक फिल्म है बेटा खतरों के खिलाड़ी।
0: हाँ जी,
1: उसके ना बेटा मियां बीबी का सहयोग में बहुत अच्छा गीत है, गुनगुना कर बताऊं बेटा?
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल गुनगुनाइए आप।
1: मैं बेटा दो पहले सुन लो बेटा।

0: ये गीत सुना लो बेटा।
1: हाँ जी सुनवा दी थी सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: धन्यवाद बेटा, ज्योंदे रहो फादे रहो भाई, छोटी उम्र बड़ी उम्र बाबा नानक चढ़दी वाजे, सत्रीकाल बेटा,
1: सत्रीकाल जी। थैंक यू सर इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो श्रोताओं आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत।

0: सेलिब्रेशन कोई भी हो, वेन्यू होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
1: ड्रीम वेडिंग, ग्रैंड कॉर्पोरेट इवेंट या मेमोरेबल बर्थडे, वेलकम टू देवशाह जंगल रिजॉर्ट, जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीता,
0: जहां नेचर की खूबसूरती मिले वर्ल्ड क्लास लग्जरी के साथ, प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट, 120 प्लस रूम्स एंड स्पा।
1: देवशाह जंगल रिजॉर्ट, वेयर नेचर मीट्स लग्जरी। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन 9258253082।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है अभी 3:48। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: कहते हैं कि कौन हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, इसीलिए आज का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा। तो खुशी जी आपकी शान में कबूल हो, मोहब्बत भरा सलाम और अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके?
1: एकदम अच्छे मैम, मैं जिला रामपुर ग्राम खेत से वकील मकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा।

0: जी कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे मैम। भारत का सुहाना मौसम हो रहा है, ऐसे में आपके प्रोग्राम पे मेरे को काफी अच्छा लग रहा है।
0: जी शुक्रिया, बताइए कैसे हैं? आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम फरमाइश मूवी का नाम है पायल, तो उसी में एक सॉन्ग है, आशिकों से बस यही इंतजार है मोहब्बत न करना, कुछ इस टाइप के बोले हैं।
0: जी
1: मैं चाहूंगा कि इस जमाने से बहुत अलग हैं आप, उस जमाने से बहुत अलग हैं आप, और वो बहुत खुशकिस्मत है जिनके पास है। हमारे लिए तो वो वक्त ही हसीन है, जब दिल से याद करते वक्त मुस्कुरा लेते हो आप।
0: बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी सर। आपने हमें
1: मेरे
0: कॉल
1: साथ में
0: किया?
1: मेरे दोस्त
0: हाँ हाँ बताइए।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेत अड्डे से मोहम्मद शामिल, और जितने भी ऐसे मुरादाबाद जैसे 9 पॉइंट रहे हैं, फीमेल हो या मेल हो, सभी के लिए रेडी है रहा।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू, आपने हमें
1: ठीक
0: कॉल
1: है,
0: किया।
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर बस मैं आती हूँ। और हाँ, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त हरजी खुशी। देखिए यहाँ पर वक्त हुआ है अभी 3:57 और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं आज उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। मैम
0: जी, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं गौरव टेलर, नवीन नगर मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बस बढ़िया है, आपका कार्यक्रम सुनवाए, अच्छा लग रहा है।
0: धन्यवाद सर, आपको अच्छा लग रहा है। तो काम करते करते रेडियो सुनते हैं, कैसा लगता है आपको ये सिलसिला?
1: काम करते करते काम, जिससे काम में भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं और आप मनोरंजन भी होता रहता है, हम तो एफएम मुरादाबाद लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, दिन भी अच्छा कटता है,
0: काम में मन भी लगता है।
1: काम में मन भी लगता है।
0: हाँ
1: मेरा,
0: जी।
1: मेरा तो जो है मशीन तभी चलती है जब रेडियो चालू हो जाता है।
0: जब रेडियो को ऑन करके रखते हैं तभी आपकी मशीन भी ऑन होती है ना?
1: तभी मशीन ऑन होती है, तभी मजा आता है।
0: जी तो बताइएगा आज का मौसम कैसा है आपके साइड नवीन नगर का?
1: मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही लाजवाब हो रहा है
0: जी। अरे वाह, क्या बात है।
1: और आज ऊपर से जो है किसी से बात हो रही है,
0: अच्छा,
1: तो और अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू। बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मुझे सॉन्ग सुनना है, पैदल चल रहा हूँ, सवारी चाहिए।
0: गाड़ी चाहिए, सवारी तो मिल जाएगी, पहले तो गाड़ी होनी चाहिए ना। ओके।
1: अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, है
0: मिस खिलाड़ी चाहिए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत गाना है
1: जी। जी
0: तो ये गाना सुनवा देते हैं हम सर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, गौरव जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं इस शानदार से गाना। मैं बस आती हूँ वापस, आपको भी कॉल लगाना है तो जल्दी से लगाइएगा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी है आपके साथ और अभी आपने सुना ये शानदार से गाना और अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी मुरादाबाद से आप बात कर रहे हैं, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: अर्जुन सिंह।
0: अर्जुन सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप मुरादाबाद में?
1: बात कर रहे
0: हूं। ओके, क्या करते हैं आप सर? आप क्या करते हैं? अच्छा अच्छा ओके, तो बुद्धि विहार में आप रहते हैं और आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाया है, तो बताइएगा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? ठीक है सर, सुनवा देते हैं गाना आपको। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया जी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से। हम अभी वापस आते हैं, आप भी कॉल लगाइएगा क्योंकि जब तक आप कॉल नहीं लगाएंगे तब तक कॉल कैसे लगेगा। प्रयास कीजिए, आपका कॉल भी लग जाएगा। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुना है शानदार से गाना फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी से। और अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नेम इल्मा है।
0: जी इल्मा।
1: हाँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं
1: आप? मैं मुरादाबाद से ही बात कर रहा
0: हूँ। अच्छा, मुरादाबाद से ही बात कर रही हैं जी। बताइएगा इल्मा, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छी। आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, आई एम गुड। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: हमें 15 अगस्त का सॉन्ग सुनवा दो।
0: कौन सा ट्रैक सुनना चाहेंगी, कौन सी फिल्म का?
1: दिल जले मूवी का मैं।
0: अच्छा, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन।
1: जी मैम।
0: ओके, चलिए सुनवा देते हैं आपको। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, इल्मा की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आपको भी कहीं नहीं है जाना, हमें कॉल लगाना है और प्यारे प्यारे गीतों को सुनते जाना है।

0: 안 끊어.
1: 미리 봤어, 수놈.
0: 내 꿀 다 했었나? 가만히 만져버리자!

0: पर गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, कुमार सानू और साथ में आदित्य नारायण जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और फाइनली 20 सबरी से हम सबको इंतजार है इंडिपेंडेंस डे का। और जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं, तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रजिया सैफी है।
0: रजिया सैफी जी, ओहो आप वही रजिया हैं जो हमें मैसेज करती हैं। हाँ
1: यस मैम
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बस एवरीथिंग
0: ठीक ही रहना चाहिए। आई एम गुड, मैं भी बहुत अच्छी।

0: मैम बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहती हैं आज आप?
1: मैम
0: ओके गाना तो बहुत प्यारा है।
1: हाँ,
0: तो ये गाना किन के साथ सुनना चाहती हैं आप?
1: मैम और माय डियर हस्बैंड जो अभी मेरे साथ नहीं है फिलहाल, मेरे कॉन्टेक्ट में है।
0: अरे वाह, कोई बात नहीं, आपके साथ भी हो जाएंगे, दिल में तो आपके हैं। जी तो सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं रजिया सेफी के पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और मुझे जल्दी से कॉल लगाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और चाय की चर्चा हुई है तो चाय पीने का भी मन कर रहा है ना, पर इतना सोच क्यों रहे हैं एवरीवन? जल्दी से किचन में जाइए, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाइए, खुद भी पीजिए और जो आपके पास में बैठे हैं ना उनको भी बुलाइए। गर्मा गर्म चाय इवनिंग में पसंद है ना आपको? वैसे मुझे भी पसंद है चाय, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते हैं, बट हाँ जब मौसम सुहाना हो तो चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा बात कर रही है, बताइए आकांक्षा कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छी
0: हूँ,
1: आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: आकांक्षा जी, इधर तो सब एकदम फर्स्ट क्लास है, आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है?
1: जी मैम, हमारे परिवार में भी सब अच्छे हैं।
0: ओके, बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आकांक्षा, मैं राजा रंग मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, मेरा काम है चमेली।
0: ओहो, ये गाना किन की पसंद का है बताइए हमें?
1: मेरे पापा की पसंद का।
0: ओके हाँ सर, को इस तरह के गाने बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वक्त अभी पूरा परिवार साथ में सुन रहा है फिर मुरादाबाद।
1: जब भी हमारे पापा भी जैसे पापा चले गए हैं,
0: और हमारी सिस्टर हैं, भैया
1: हैं,
0: बुआ हैं। ओके, तो सुनवाते हैं शानदार से गाना आपको, थैंक यू कॉल करने के लिए। जी तो चलिए आकांक्षा की पसंद पर सुनते हैं ये शानदार से गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं हम लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। अभी आपने शानदार सा गाना सुना और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है, वो सर से ही बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: मैम मैं मुरादाबाद से लाइन पार से खेमपाल सैनी बात कर रहा हूँ, डीजी फैंसी टेलर
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: मैम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं
0: जी। आज फर्स्ट टाइम कॉल लगाया, कैसा लग रहा है आपको।
1: मैम बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ में पहली बार फोन लगा है, कई दफे ट्राई किया था हमने।
0: अच्छा, ट्राई आपने पहले भी किया है लेकिन कॉल आज लगाया, राइट
1: जी। मैम
0: जी, बताइएगा कैसे हैं परिवार में आपके, यहाँ पर सब।
1: मैम परिवार में अच्छे हैं, आपके परिवार में कैसे हैं मैम।
0: हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: मैम आज हम वो गाना सुनना चाहते हैं, लगी दोस्ती की किसको नजर तू
0: ओके,
1: बदल जाएगा।
0: और ये गाना आप अपने दोस्तों के लिए सुनना चाहते हैं।
1: जी मैम।
0: क्या नाम है आपके दोस्त का, जरा हमें बताइएगा।
1: मैम हमारा बचपन का यार है दीपक, दीपक दिवाकर।
0: ओके
1: और मैम दूसरा दोस्त हमारा योगेश सैनी
0: ओके,
1: जी।
0: ठीक है, तो आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना। आपने कॉल किया, धन्यवाद सर आपका
1: जी। धन्यवाद मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये शानदार से गाना, लौट कर आते हैं हम। तब तक आपको भी है कॉल लगाना, मिस बिल्कुल मत कर जाना, इस शो को सुनना।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। समय हुआ है 4:42, 4:42 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी साथी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फरमाइश, शो में बताइएगा क्या नाम है आपका।
1: जिला अमरोहा, नई बस्ती, पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी मैम।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: बस अच्छे हैं मैम।
0: और परिवार में बताइएगा कैसे हाल चाल है सबकी।
1: घर परिवार में भी सब लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है, आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: जहाँ तक पसंद का सवाल है तो मैं फिल्म का नाम है अर्जुन, आज का अर्जुन।
0: हाँ जी।
1: उसमें गाना था चले आना पान की दुकान पर, ये गाने के बोल थे।
0: ओके, ये गाना आपको सुनवा देते हैं सर।
1: और कुछ नाम थे।
0: बस दो ही नाम ले सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं।
1: शाकिर अली शान है खोर से, और इकराम प्रेमी साहब है रामपुर से।
0: ठीक है सर, धन्यवाद आपने हमें कॉल किया। आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गाना। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आज का अर्जुन से ये खूबसूरत सा गाना।

0: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना

0: मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: कोई मिल गया,
2: कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, खुशी यहाँ पर है ना आपके लिए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है। और आज कॉल नहीं लगाए तो परेशान मत होइएगा, आपके पास कल भी मौका है, इवन परसों भी है, सैटरडे तक हमारा शो आता है। और अभी आपने शानदार से गाना सुना आ राजकुमार सिंह, अरिजीत सिंह और साथ में पलक मुछल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और अभी बात कर लेते हैं अपनी लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुहानी है।
0: सुहानी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: हाँ जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ सुहानी, आप बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज?
1: मुझे गाना सुनना है तेरे इश्क में जोगी होना।
0: तेरे इश्क में जोगी होना। ओके तो सुनवाते हैं शानदार से गाना सुहानी, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक सुहानी की पसंद पर, सुहाना सा गाना। और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलने वाली हूँ आपको कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए और हर एक मोमेंट को अच्छे से जिएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है? और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जो होगा अच्छा होगा। और ये प्यारा सा गाना सुनो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: भाग रहे हैं कोई लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार अपनी मांग बदलते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश के समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शु फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शु ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा कायदा हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और युवा और नागरिक शामिल हुए। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है। मेरा गांव मेरी धरोहर है,
2: मेरा गांव मेरी धरोहर। पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।
0: मेरी

0: पीरों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: आदा, ये है ऑल इंडिया रेडियो। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से।

जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। यानी कि आरजे जी ने आधे घंटे बाद कनेक्ट हुई श्रोताओं, क्योंकि एक्चुअली देखिए जब काम आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा डिले करना पड़ ही जाता है। फाइनली आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और करेंगे ढेर सारी बातें इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:35 हो चुके हैं, यानी कि अपना शो अब स्टार्ट हो चुका है। जानेंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल 15 अगस्त की तैयारियां यानी कि जोरों शोरों से है, और रक्षाबंधन के लिए यानी कि जो यूपी की माताएं बहनें हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी यानी कि देखिए रक्षाबंधन का तोहफा आपको मिल गया है। अब वो तोहफा क्या है उसके बारे में भी बताएंगे आप सभी को, बस इंतजार करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए हमारे यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यानी कि प्यारी बहनों के लिए, लेडीज के लिए यानी कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया है, यानी कि रक्षाबंधन से पहले ही। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि हर साल ये शुरू होता है 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है वो बताएंगे अभी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस तो बनाना बनता है जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे, फिर बताएंगे आपको।

0: गिफ्ट मिल चुका है। गिफ्ट ये है कि रक्षाबंधन के मौके पर, यानी कि 26 तारीख से लेकर यानी कि 31 अगस्त तक जितनी भी बहनें हैं वो रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए अपने घर जाएंगी, अपने भाई के घर जाएंगी, तो उनके लिए जो बस सेवाएं हैं वो फ्री है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि प्राइवेट बस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी बसेस में आप सभी के लिए यानी कि सेवाएं फ्री उपलब्ध है। तो तभी जब भी आप अपने घर जाए तो ये जरूर ध्यान रखिए कि जो प्राइवेट बस है उसमें ना चढ़े, जो सरकारी बस है उसमें ही जाइए, क्योंकि अगर आप उसमें जाएंगे तो आपके एक भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। आप आसानी से फ्री में आप अपने घर जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर रिटर्न आप 31 तारीख तक करते हैं तो भी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो हमारे यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यानी कि बहुत अच्छा वाला तोहफा हर साल दे ही देते हैं रक्षाबंधन के मौके पर, कि जब बहनें अपने भाई के घर जाए तो उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना होए, पैसे देना ना पड़े, आराम से अपने घर पहुंचे, क्योंकि वो इससे ज्यादा बड़ा और गिफ्ट क्या ही हो सकता है, ये बताइए। ये तो बिल्कुल आराम से जाइए और एंजॉय करिए। और साथ ही साथ कुछ कमर्शियल म्यूजिक ब्रेक का टाइम हो गया श्रोता, उसके बाद एक बहुत ही प्यारा गाना सुनेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बातें श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और सच में भाई बहन का जो बंधन होता है ना, बहुत ही प्यारा बंधन होता है। मतलब एक कह सकते हैं दुनिया का अनमोल प्यार भाई बहन का होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। यानी कि भाई बहन का रिश्ता होता है वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। जब बहन परेशान होती है तो भाई उसके साथ खड़ा रहता है, और जब भाई परेशान होता है तो बहन उसके साथ खड़ी रहती है। यानी कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है भाई बहन का प्यार, और हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। क्योंकि गुस्सा भी, प्यार भी, लड़ाई भी, झगड़े भी, और जब बड़े होते जाते हैं एक दूसरे के बीच समझदारियां आ जाती है, और फिर एक दूसरे के साथ बड़े शिद्दत से निभाने लग जाते हैं। कब वो लड़ाई एक दिन जब दूर चले जाते हैं तो उस प्यार का और भी एहसास होता है। तो भाई बहन का जो प्यार है, सच बताओ, बहुत ही अनमोल है, बहुत ज्यादा अनमोल।
1: धागों से बांधा।
0: और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे उस बॉलीवुड एक्टर की, आज जिनका बर्थडे है, उनके बारे में बात करने वाले श्रोताओं। और साथ ही साथ आज यानी तारीख की बात करूं तो 13 अगस्त के, 13 अगस्त को क्या स्पेशल डेज मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज मुरादाबाद की टेम्परेचर अभी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बारिश होने के बावजूद भी उमस वाली गर्मी बढ़ गई है। लेकिन फिलहाल कह दूं कि कल बताया जा रहा है कि बारिश आने की पूरी संभावना है श्रोताओं, तो संभावना बस ये बनी रहनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ संभावना हटाइए, बस बारिश आ जाए, भगवान जी की कृपा रहे। आज मतलब उम्मीद नहीं थी कि बारिश आएगी, लेकिन एकदम अचानक झमाझम जो इतनी तेज बारिश हुई है ना, मतलब ऐसा देख लग रहा था कि बस अब जो मौसम है ना बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेकिन जो उमस वाली गर्मी बढ़ गई है ना, अब इससे क्या ही कह सकते हैं। बस अपना ध्यान रखिए और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। एक श्रीदेवी की गाना आप सभी को सुनाते हैं, उसके बाद इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको, यानी कि कौन सी मूवी से पॉपुलैरिटी मिली और कैसे बॉलीवुड में आई है। और आज हर किसी के दिलों में राज करती है, भले ये हमारे बीच आज नहीं है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, देश बसंती चोला। आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। इंडिपेंडेंस डे यानी कि बहुत नज़दीक है, आज की तारीख 13 अगस्त और कल 14, परसों 15 अगस्त, और 15 अगस्त को ही हरियाली तीज है। तो दो दो सेलिब्रेशन है, जश्न मनाइए और अपने देश के लिए यानी कि हर घर तिरंगा फहराइए। देखिए, आज से ये कहा गया था कि अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराइए, अदरवाइज आप 15 तारीख को अपने हर घर यानी कि हर घर तिरंगा फहराना है।

0: श्रोताओं अपने छत पर झंडा फहराइए और फोटो उनके साथ जरूर क्लिक करिए, क्योंकि जो हमारा तिरंगा है ना, हमारा जो फ्लैग है, वो गर्व है हमारा। और ये नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त को आपने झंडा फहराया अपने छत पर और उसको फिर कूड़े में या फिर कहीं फेंक देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप उसको फेंकते हैं तो सोचिए आप अपने अभिमान को फेंक रहे हैं, इसीलिए उसको संभाल कर रखना है। इनफैक्ट हटाना ही नहीं है, आपने उनको लहराते रहने दीजिए डेली, यानी कि छतों पर देखने का अलग ही रौनक, अलग ही मजा आता है। 15 अगस्त को जब आप छत पर जाएंगे, जब देखेंगे चारों तरफ बस तिरंगा ही तिरंगे फहराता हुआ दिखेगा, और आपको कहीं भी तिरंगा अगर नीचे गिरा हुआ दिखता है तो उसको उठाइए। जरूरी नहीं है कि आप उसको वहीं छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोचिए कि आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त को ही हम तिरंगा फहराएंगे, बाकी दिन हमने उठाया और इधर कूड़े वूड़े में फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि श्रीदेवी के बारे में, यानी कि आज बॉलीवुड की वो चांदनी, वो हवा हवाई और अपनी अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी जी का जन्मदिन होता है। श्रीदेवी जी ने यानी कि बॉलीवुड में, यानी कि पहला उनका फिल्म था रानी मेरा नाम, यानी कि बाल कलाकार फिल्म से उन्होंने अपने फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने यानी कि हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी पहचान यानी कि हिम्मत वाला फिल्म से उनको मिला जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिल गई थी, और साथ ही साथ उनकी बाद में जो फिल्में आई जो आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। और ये मूवी जो है यानी कि ऑल टाइम देख लीजिए, तब भी आपका मन नहीं भरेगा, बस दिल से एक ही आवाज आएगी, चलो यार एक बार और देख लीजिए। सदमा और साथ ही साथ मिस्टर इंडिया, मतलब मिस्टर इंडिया जो मूवी है ना, सच में बहुत गजब है। नागिन, चांदनी और चालबाज और लम्हे मूवी बहुत ही खूबसूरत है। और अगर गानों की बात करूँ तो हवा हवाई, कांटे नहीं कटते, और हाथों में है नो नो चूड़िया, चांदनी ओ मेरी चांदनी, ये जो गाने हैं ना हमेशा जुबा पर रहते हैं। जब भी श्रीदेवी का नाम आता है तो ये गाने तो भैया हर किसी के दिलों में यानी कि सबसे पहले जुबान पर आता है। श्रीदेवी की खूबसूरत अदाए आंखों ने, यानी कि उनकी जो आंखें होती थी बड़ी कटीली, भाई हर कोई उनकी अदाएं और आंखों पर बहुत ज्यादा फिदा हुआ करते थे। सच बताऊं तो जब भी वो मूवी यानी कि जब शूटिंग चलती थी मूवी की ना, तो वो कभी भी रीटेक नहीं लेती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही फाइनल कर देती कि ठीक है भैया, एक बार बस वो पढ़ती थी और एक बार में कट फाइनल हो गया। मतलब उन्होंने कभी रीटेक लेने की कोशिश नहीं करी, स्टार्टिंग में ही करी थी, उसके बाद तो वो फिर आने दे और जाने दे ऐसा था। मतलब उनकी जो भी फिल्म आप उनकी देख लीजिए, हर फिल्म की उनकी जो अदाएं हैं एक अलग ही लेवल वाला है। मतलब रोता हुआ इंसान भी ना उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब श्रीदेवी की मूवी देखते हैं। तो फिलहाल आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा राज करती रहेंगी। और जिन मतलब ऐसा लगता नहीं कि हमारे बीच नहीं है, कि उनकी उनकी अदाएं इतनी अच्छी हैं, उनके जो फिल्में देख लीजिए, ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे आसपास ही है। फिलहाल इसके बाद हम बात करने वाले श्रोताओं, यानी कि आज स्पेशल डे क्या है आज का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। आप सभी के मैसेज भी आए हैं, वो भी शामिल करेंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

क्या बात है श्रोताओ, चांदनी मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है लता मंगेशकर जी की आवाज में। और इस मूवी में यानी कि श्रीदेवी ऋषि कपूर के ऊपर ये मूवी फिल्माया गया है और आप गाना एंजॉय कर रहे हैं मेरे हाथों में नोनो, यानी कि आप सभी को हरियाली की एडवांस में ही शुभकामनाएं जी, क्योंकि शनिवार को यानी कि हरियाली तीज के साथ साथ यानी कि देश आजाद हुआ था यानी कि मनाया जाएगा 15 अगस्त जी। फिलहाल हम बात करेंगे यानी कि देखिए आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। श्रोताओं समय की बात करूं तो 6:21 हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 13 अगस्त को क्या स्पेशल डेज मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंग दान दिवस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जाने के बाद भी उसका उसके बॉडी का एक न एक ऐसा हिस्सा होता है जो दूसरे इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों को अंग दान के प्रति जागरूकता करना और यह समझाना कि अंगदान का फैसला किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन का एक नया मौका बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बॉडी के कौन से अंग है जो हम दान कर सकते हैं। किडनी, लीवर, हृदय और फेफड़े, ये ऐसे है कि इंसान के यानी कि जाने के बाद भी जो चीजें हैं हम दान कर सकते हैं, ये जो अंग है वो दान कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे मरीज के जीवन को बचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जानकारी की कमी और कई तरह की गलत धारणाओं की वजह से लोग अंग दान के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। आज इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत दिन मनाया जाता है। कहते हैं ना, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, किसी के जाने के बाद भी किसी और के जिंदगी बचाने का नाम होता है ये जिंदगी। तो श्रोताओं, अंग दान के बारे में सही जानकारी ले, परिवार से बात करें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि आपका एक फैसला किसी के लिए जिंदगी का एक उम्मीद बन सकता है। और चलिए देखते हैं आज मैसेज आ गए हैं, जरा उनको भी शामिल करते हैं। हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। आपको आज शाम जो आपने गाना प्ले किया है बंधन मूवी से, यानी कि हमारी शाम आपने बिंदास कर दी है, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि आजादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आओ धन्यवाद करें हम उनका जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार आपने लाइन लिखी है। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट हो गई है। गुड इवनिंग पहुंचाती हैं आप सबको हमारी तरफ से, हम आपके प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं, क्या बात है जी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं। दीपक जी का मैसेज आ गया है, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। और साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो शालिनी जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाती है, वेरी गुड इवनिंग जी। और आपने भाइयों के बारे में जो यानी कि जो एक गाना प्ले किया है बंधन, सच बताओ ये गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और आज शाम आपने ये गाना प्ले करके यानी कि जो हमारी शाम है और भी बिंदास कर दिया आपने, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते श्रोताओं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं कड़क सवाल के साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:32 हो चुके हैं। और देखिए, आज जो सबसे पहले आंसर देगा वही विनर बनने वाले हैं। और विनर बनने वाले को, यानी कि संडे का दिन है 16 अगस्त और उस दिन आपको फ्री में मूवी देखने का मौका मिल जाएगा, वो भी रात के 8 से मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो आज सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आप राइट आंसर देते हैं तो आप मूवी देखने का मौका है वो आपको मिल सकता है। तो आज विनर, आज आपको जल्दी महसूस करने पड़ेंगे श्रोताओं, क्योंकि आपके पास है आज लकी चांस। जहां पर आप टिकट खरीद कर मूवी देखने जाते थे, लेकिन यहां पर अब आपको फ्री में मूवी दिखाया जाएगा, वो भी 16 अगस्त को रात के 8 संडे का दिन है, दिन है। तो आज का हमारा कड़क सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? नंबर है 9837896896। आपने सोच समझ कर मैसेज पहुंचाना है हमें, क्योंकि आज आपको विनर बनने का मौका मिल सकता है, मूवी देखने का मौका मिल सकता है संडे को फ्री में। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, भारत का संविधान कब लागू हुआ था ये मैसेज करना है आपने। सोचिए और मैसेज करिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए जी, फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। सारी नाइट ओ बेसरमी की नाइट, यानी कि देखिए एक शाम एक ऐसा समय होता है, नाइट एक ऐसा समय होता है जिसको आप बिंदास होकर जीते हैं, बिना टेंशन के जीते हैं, यानी कि किसी की भी लोड नहीं होती है, बस क्योंकि रात अपनी होती है, शाम अपनी होती है, इंजॉय करने के लिए होती है। तो श्रोताओं, आज का कड़क सवाल भी बहुत आसान है और इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। इसके होने से क्या क्या फायदा आपको हो सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज का कड़क सवाल भी बहुत आसान पूछा है मैंने आप सभी से। अगर आप राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको मूवी देखने का मौका मिल सकता है फ्री में, वो भी संडे वाले दिन, क्योंकि संडे को हर कोई फ्री होता है ना, तो इसीलिए फ्री का काम फ्री में करेंगे। लेकिन इसलिए अगर आप मैसेज सबसे पहले पहुंचाते हैं तभी आप विनर बन पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं रे पापा, नहीं बन पाएंगे। तो आज का कड़क सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपने बताना है। नंबर है 9823789689 पर कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए जी सोचिए, लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करेंगे तेर सॉरी बात तेरी बाबा दिला दे घर
1: बना दे घर दिला दे घर। ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: हाँ जी, सही बात है। सीट बेल्ट हेलमेट लगाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, जिंदगी से अगर आपको बचना है तो हेलमेट और सीट बेल्ट तो लगाना आपको पड़ेगा है जी। आज जो रीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, गट वाली इवनिंग है। समय की बात करूं तो 6:49 हो चुके हैं और आप सभी के बीच हम कनेक्ट हो गए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। क्या आपके घर में आयुष्मान कार्ड है किसी का बना हुआ? तो ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि इलाज के समय छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यानी कि पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तय के यानी कि इलाज की सुविधा मिल सकती है। लेकिन अस्पताल जाने से पहले ये जरूर देख ले कि अस्पताल में आप इलाज करवाने जा तो रहे हैं, ये योजना में शामिल भी है या नहीं है। जो इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं यानी कि उसमें उनका नाम मेंशन है या नहीं है, ये जांच करना बहुत जरूरी है। अस्पताल पहुंचकर यानी कि आयुष्मान मित्र से संपर्क करें और भर्ती होने वे इलाज की जानकारी ले, अपना आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि पहचान की जांच यानी कि KYC की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ इलाज शुरू होने से पहले एक सवाल जरूर पूछे, मेरा इलाज किस पैकेज में कवर है और इसमें क्या क्या शामिल है, ये भी पूछना बहुत जरूरी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि सही जानकारी बेहतर इलाज और परिवार की चिंता कम। इसीलिए जब आप ये सब चीजें पूछ लेते हैं तो बाद में आपको जब बिल लास्ट समय जब पे करने जाते हैं उस टाइम किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो इस चीज का जांच करना बहुत जरूरी है श्रोताओं। और साथ ही साथ आज मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी बहुत ही आसान पूछा है, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज के लिए।

0: आपसे पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपने बताना है। चलिए जी, सोचिए और महसूस करिए, क्योंकि अगली बारी आपकी।
1: Let's go crazy.

जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोता। और समय की बात करूं तो 6:54 और आप सभी के मैसेज की बाड़ी आ गई है। अब देखना ये है कि भैया किन का राइट आंसर आया है सबसे पहले, क्योंकि आज का कड़क सवाल यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए जो देखते हैं किन का राइट आंसर आया है हमारे पास। January 26, 1950। गज वाली इवनिंग है रीना जी। विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि इनका कहना है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आर्यन पाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि 26 जनवरी 1950। मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि भारत का संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। रवि सैनी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। गीता जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि सही सवाल है यानी कि सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अरे भैया, लेकिन इन्होंने तो अपना नाम ही नहीं लिखा है। इनका कहना है कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके, लेकिन सर आपको अपना नाम भी बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर बता देते हैं 7170। अगले मैसेज की बात करूं तो इनका कहना है कि 15 अगस्त 1947 को। अरे सर, इस दिन तो हमारा देश आजाद हुआ था यानी कि संविधान लागू हुआ था, ये बताना था आपको।

गई हैं, यानी कि ये कनेक्ट होती है हमारे साथ फरीदाबाद से, और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है 26 जनवरी 1950 को। चलिए जी, फिलहाल और मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज इस शो के विनर कौन बने हैं और कौन ले जा सकते हैं मुके, यानी कि मूवी देखने का आपको मौका मिलेगा। किन को मिलेगा वो अभी तो देखना है रे पापा। नेहा जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि यानी कि 15 है, ओ दोबारा मैसेज किया इन्होंने, 26 जनवरी 1950 को। ओके जी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का मैडम, बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब बताते हैं, यानी कि राइट आंसर बताने का नंबर आ गया है कि कौन आज विनर बनते हैं। तो आज के विनर बनते हैं विक्की सागर जी, तो आपको मूवी देखने का मौका मिल सकता है, लेकिन विद फैमिली नहीं, सिर्फ आप ही जा पाएंगे क्योंकि एक के लिए ही टिकट अवेलेबल होगा, विद फैमिली नहीं। तो आप मूवी देखने जा सकते हैं, यानी कि कहाँ जाना है उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कल, यानी कि मेरे शो में मिलने वाली है और कल भी विनर बनाने वाले हैं। तो बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिएगा और कल के लिए रेडी रहिएगा कि पहले मैं आंसर, कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ, तो पहले मैसेज करोगे तभी आप पहले यानी कि विनर बन सकते हो, मूवी टिकट जीत सकते हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ श्रोताओं जाने की इजाज़त, कल मिलेंगे कहाँ, अरे सेम टाइम सेम जगह मिलने वाले हैं जी। अभी के लिए बाय बाय, चाचा, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। कोई ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी से।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर

0: आने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती हैं, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी से भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुंह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: सही बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जूस स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: हेलो जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़े ऐसी एक्सपर्ट जिनको सुन के ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेन करके रखती है भाई साहब, क्योंकि किसी की स्माइल अच्छी बनाती है, किसी की स्किन अच्छी बनाती है, किसी के बालों को अच्छा बनाती है। एंड मतलब शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड किनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी एंड इनके बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब इनको बोलना चाहिए। सो डॉक्टर दिशा जग्गी मेरे साथ मौजूद है। हेलो मैम, हाउ आर यू?
1: हेलो, हाय आरजे आनंद, व्हाट अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपके बारे में मैंने हमेशा आपका सुना है एंड इतने आप कैप्टिवेटिंग वे में बोलते हो कि आपकी आवाज से मेरी वो नहीं, अटेंशन नहीं हटती है।
0: मैम थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड स्पेशली नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपका देखता रहता हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम सुपर हैप्पी।
1: माय प्लेजर,
0: थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आज तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को।
1: हाँ जी, मैंने अपना एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से किया है, अलॉन्ग विद

0: Instagram, you can find me.
1: That's very amazing, wonderful introduction, ma'am. Seriously. So, ma'am, शुरू करते हैं आज का सिलसिला. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे. मैम, आजकल ना इंस्टाग्राम का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है. इंस्टाग्राम पे जैसे हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हजारों रील्स हमारे पास आ जाते हैं. स्पेशली आप ये वाला फॉर्मूला आजमा लो, आप ये वाली रेमेडीज फॉलो करो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो. और कई बार लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए सही होता है और कितना ज्यादा रॉन्ग होता है. आजकल ऑडियंस को पता नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं.
0: सो देखो, आई विल नॉट से कि ऑल होम रेमेडीज आर रॉन्ग. मैं एक जनरलाइज चीज नहीं बोल सकती, या एक जो होम रेमेडी है वो सबको सूट करेगी, मैं वो भी नहीं बोल सकती. सो सी, डिफरेंट, अगर आपकी ड्राई स्किन है, सो यू नो समथिंग लाइक अ मसूर की दाल, बेसन विल हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर ऑयल सिक्रेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, कि हल्दी लगा लिया. एंड देन जो ड्राई स्किन टाइप्स हैं, उन्होंने अगर कर्ड के साथ में कुछ लगा लिया, कर्ड के साथ मिक्स करके, सो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम आउट. बट अगेन, हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है. अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको हनी और इवन एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है. आई हैव सीन ब्राइड्स जो आती हैं, हल्दी लगाया रात को या नेक्स्ट डे शादी है एंड पूरा फेस बर्न हो गया, क्योंकि पहले के जमाने में जो हल्दी थी और आज के जमाने में जो हल्दी मिल रही है, द थिंग्स हैव चेंज्ड. तो अब उतनी क्लीन सामान हमें मार्केट में नहीं मिल रहा, अंटिल अनलेस आपका खुद का कोई फार्म है या जहाँ से आप सामान लेकर आ रहे हो, पिसवा रहे हो, तो एक अलग चीज होती है. बट अगर नहीं है, सो इट इज बेटर आप वहाँ उस चीज पे स्टिक करें जहाँ पे आपको पता है कि थिंग्स विल नॉट रिएक्ट टू योर स्किन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम. अच्छा मैम, आजकल आपको पता है ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है. और आई थिंक इसका रीजन में मुझे लगता है कि आजकल का लाइफस्टाइल भी है, बिकॉज इतने लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना है, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको. मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: स्किन का जो हेयर के इश्यूज है, एज यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग, तो बाल सिर्फ हमारा, देखो पहले जो जनरेशन था जिसको ये अफेक्ट करता था, वो जनरली 40-45 प्लस था.
1: करेक्ट.
0: जैसे अगर जिनको गंजापन आ रहा है, तो क्या हो गया था, एक बहुत एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी था कि ठीक है, गंजापन है, कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई. अब क्या है, पीपल इन देयर 20s आर हैविंग हेयर फॉल, पीपल इन देयर 30s आर हैविंग हेयर फॉल, जिनकी शादी नहीं हुई है, दे आर स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, और उनको मैसिव हेयर फॉल है. और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक इसमें रीजन होता है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल, जिसको हम बोलते हैं सीरम फेरेटिन और TIBC, दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और थायराइड. ये 3-4 टेस्ट आप अगर अपने करा लेते हैं, तो आपको अपने स्टेटस, स्किन के अंदर का या बॉडी के अंदर का स्टेटस पता चलता है कि डेफिशिएंसीज किसकी. अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है, सपोज, देन हार्मोनल रीजन एक और होता है, जिसमें बालों में पतलापन या थिनिंग आने लग जाती है. अगर विमेन का होगा तो आपकी मांग चौड़ी होने लग जाएगी और बालों में क्वालिटी मोटे से पतला होगा. और अगर मेन में हो रहा होगा, देयर विल बी एम शेप पैटर्न, एक एम शेप का पैटर्न फॉलो करेगा आगे से स्कैल्प, पीछे मतलब फोरहेड और सर के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन जो होता है, वो हेयरलाइन खत्म होती जाएगी, बोलते रिसीडिंग हेयरलाइन.
1: राइट.
0: सो वो हार्मोनल पैटर्न है. सो किस वजह से हो रहा है, हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है. न्यूट्रिशनल बेस्ड है, हार्मोनल बेस्ड है, एंड कई बार होता है हमारे गट में इश्यूज होते हैं कि हम दवा तो खा रहे हैं मगर बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको.
1: करेक्ट.
0: तो वो एक और इश्यू होता है. सो वो यू हैव टू, मैं उसका एक वो नहीं बता सकती कि रामबाण है, ये कर लो हो जाएगा. आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, कंसल्टेंट डॉक्टर, सो दैट यू नो आप क्या कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली. बहुत ही अच्छा आपने बताया मैम. एंड आई थिंक मैम, एक और चीज जो आजकल हम देख रहे हैं, मैं यूथ में, इनफैक्ट हर किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोग खुद से कुछ भी यूज कर लेते हैं. जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पिंपल स्किन एक्ने की अगर मैं बात करूं, एक एक्ने एंड पिंपल, ये बहुत ज्यादा स्किन में आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों को, मैं देख रहा हूं. इवन मेरी कजन सिस्टर है, उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. बट वो क्या है करती है, कभी भी कोई भी क्रीम उसने मेडिकल स्टोर से ले लिया, कुछ भी लगा लिया, जबकि एक्ने एंड पिंपल इट्स नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम. आई थिंक ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, एंड मेरे से बेटर तो ऑफकोर्स आप ही जानते हैं. तो मतलब किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया, मेरी कजन सिस्टर वो कुछ भी लगा लेती है, तो क्या ये करना चाहिए अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है?
0: वही साथ ही सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कपड़ों के साथ कर लो, स्किन के साथ मत करो। एक बार पिंपल्स आ गए तो खड्डे हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे, या कहीं पिगमेंटेशन हो गया। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि मैम बेटनोवेट लगा रहे थे, किसी ने स्किन लाइटनिंग क्रीम दी, स्किन गोरी हो जाएगी। अब उसके क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, मगर साथ में स्किन को डैमेज कर देगा। आपका स्किन का जो बैरियर है ऊपर वाला उसको उड़ा देगा, साथ में बालों फेस पे बाल आने लग जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी धूप से। सो दीज आर द साइड सम साइड इफेक्ट्स। और साथ में क्या होता है, फिर ऐसी स्किन पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने स्किन का बैरियर डिसरप्ट कर दिया है बाय यूजिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन उसके बाद जब मैं कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर कुछ भी देती हूँ तो वो जल्दी काम ही नहीं करता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो स्पेशली एक्ने के लिए यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन। अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आज की तारीख में इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आप ऑनलाइन दिखा लो एंड देयर विल बी पीपल टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो एक्ने में आपकी डाइटरी हैबिट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। अगर आप मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो दैट हैज टू बी कट डाउन।
1: ऑल राइट, बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक और चीज मैम, आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, इवन तो देख ही रहे, आजकल सभी देख रहे हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा है, आजकल लोग ये करा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी बन गया है और काफी बढ़ भी रहा है ये। बट एक्चुअली क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है?
0: परमानेंट इफ यू आर लुकिंग एट कि जिंदगी भर वो बाल रहेंगे, नो
1: एब्सोल्युटली।
0: सो द हेयर जो आपके पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं, फ्रंटली उनको ट्रांसप्लांट या लगा दिया जाता है स्लिट्स बना के। अब उनकी जो लाइफ स्पैन है, जनरली अगर आप उनका अच्छा केयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 8 to 10 years वो रहते हैं। एंड उसमें भी ऐसा नहीं है, वो देखिए हमने बीज लगाया है, अगर बीज लगा के तो उसमें खाद नहीं डालेंगे देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दे कैन फॉल ऑफ अर्ली। सो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है। साल में एक या दो सेशन मेंटेनेंस के आपने लेने रहते हैं जीएफसी या पीआरपी के, एंड वट एवर मेडिकेशन आपका डॉक्टर ने बताया है वो आपको ऑन एंड ऑफ लेना रहता है।
1: ऑल राइट, वेरी नाइस। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे वही एक आम इंसान के बारे में बात करूँ, सपोज दैट कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, बट शाम को एटलीस्ट हर किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो खुद के लिए टाइम निकाल सकता है और वो इस बात से डिनाय भी नहीं कर सकता इनफैक्ट। सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, बट वो दो तीन चीजें ऐसी क्या कर सकता है जिससे उसकी स्किन भी हेल्दी रहे, उसके बाल भी हेल्दी रहे और उसकी पर्सनैलिटी भी शाइन करे, कॉन्फिडेंट बढ़े, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें personality को?
0: First of all, which I personally recommend, देखिए nothing can reap a good fit personality, that is इंसान जो की हेल्दी है और फिट है।
1: Absolutely.
0: That is your workout, exercise. जैसे आप मुंह में खाना डाल रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शरीर हिलाना है। सो प्लीज मूव योर बॉडी, क्योंकि द मोमेंट आप अगर फिट हैं और अगर आप एक कमरे में वॉक इन करते हैं, द कॉन्फिडेंस यू होल्ड, नो बोटॉक्स, नो फिलर, नो लाइपोसक्शन, कुछ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो कॉन्फिडेंस आपकी एक फिट बॉडी आपको दे सकते हैं। सेकेंडली योर वट एवर आप मुंह में डाल रहे हैं, देखिए आज की तारीख में एज आई यू सेड इंस्टाग्राम आप खोलो, ओवर नॉलेज है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके कौन से इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है और आपको पता है कौन से नॉन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है। मतलब कि प्रोसेस्ड सबको पता है खराब है, सबको पता है मैदा खाना नहीं है, सबको पता है कि पैकेट से निकला हुआ खाना हेल्दी नहीं है। वी ऑल नो दिस कि हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो हम लोग क्लास वन से पढ़ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। शाम को वो समोसे आए, हाँ भाई लाओ लेकर खाते हैं। तो दैट इज हाउ हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन बन चुके हैं।
1: Exactly.
0: It is disgraceful and a shameful thing.
1: Absolutely.
0: So nothing to be proud of. And secondly, yeah, nutrition, as in आप अपने मुंह में जो भी डाल रहे हैं, प्लीज देखिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है।
1: वैल्यू क्या, करेक्ट।
0: Yeah. And thirdly, I would say just using the bare minimum which suits you. Like आपको सब नहीं लगा लेना है कि मैं सब दे का सब कर लिया। बेसिक यूज करने सामान यूज करिए टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, विच इज अ बेसिक पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। जैसे एक सनस्क्रीन हो गया मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, एक मेडिकेटेड फेस वॉश। ये तीन चीजें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगी बट 60-70% योर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल।
1: That's very amazing, ma'am. बहुत ही wonderful तरीके से आपने explain कर दिया and very very quickly आपने बता दिया, मतलब unbelievable, incredible, ma'am. Lovely talking to you, ma'am. एक question, this is my personal question, so I want to ask you कि जैसे आजकल ना बालों में dandruff की problem बहुत हो रही है और कई लोगों को लगता है कि hair fall अगर हो रहा है, dandruff हो रहा है, तो हम अगर daily shampoo करेंगे तो ये काम हो जाएगा।
0: Okay, so dandruff generally जो होता है, हमारा excess में sebum या oil secretion होने के कारण होता है।
1: All right.
0: और एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम होता है मेलेसीजिया। ये फंगस सीबम या ऑयल पे थ्राइव करती है, उसका खाना है सीबम। तो और कुछ खाने हैं, कुछ फूड्स हैं जैसे कि डेयरी, दूध, चाय, कॉफी, शुगर, इन चीजों से हमारा टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी की मात्रा बढ़ती है। और जिन चीजों से डीएचटी बढ़ेगा उनसे आपका सीबम सिक्रीशन या ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा स्कैल्प में, फेस पे। तो जब वो होता है तो आप फंगस को खाना दे रहे हैं कि आओ बेटा खाओ खाना, तो इसलिए उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी डाइट में, उससे फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, ऑल्टरनेट डे बाल धोना चाहिए। हम लोग जितनी धूल मिट्टी में रह रहे हैं, आपके स्कैल्प में गन दो दिन बाद अगर हल्का फुल्का भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउट तो उस पे धूल मिट्टी बैठ जाती है, सो स्कैल्प इज डर्टी, तो उसको क्लीन करना है। गंदा स्कैल्प रखेंगे हेयर फॉल ज्यादा होगा। ऑल्सो जो लोग हेयर फॉल गो थ्रू कर रहे होते हैं वो हेयर वॉश ही नहीं करते चार चार दिन, सात सात दिन, क्योंकि मैम मैं बाल छूता हूँ तो और बाल झड़ता है भाई, फिर ऐसा क्या हो, ऐसे हेयर फॉल बढ़ जाता है। सो केटाकोनाजोल बेस्ड मेडिकेटेड शैम्पू 2% केटाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डे हेड वॉश करना चाहिए विथ ल्यूकवॉर्म और कोल्ड वाटर, गर्म पानी मत यूज करिए।
1: ओके, मतलब इससे हम काफी हद तक फिर हम बच भी पाएंगे, इनफैक्ट
0: इससे काफी हद तक बच सकते हैं। इससे ये इवन अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, केटाकोनाजोल बेस्ड शैम्पू अगर वंस अ वीक आप यूज करते हो फॉर योर स्कैल्प, जो भी बिल्डअप हो जाता है हम लोग की स्कैल्प में वो भी क्लीन करता है।
1: क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल डाइट बॉडी में डालना बहुत जरूरी, जैसे आजकल खीरा है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों को कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारे बालों पर।
0: सी, नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आप देखेंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है नेचर की सब्जियां और फल चेंज हो जाते हैं।
1: Absolutely.
0: आप वाटरमेलन खा लीजिए, आप हाइड्रेट हो जाएंगे, आप फुल हो जाएंगे।
1: करेक्ट,
0: ठीक है। आपका हाइड्रेशन पार्ट, फाइबर पार्ट आपको फ्रूट से बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि पता है कि भूख कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू समर्स। एंड आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अपना इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग की इंडियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन कभी भी था ही नहीं। सो हम लोग को प्रोटीन की मात्रा हमेशा खाने में रखनी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बाल और स्किन बना प्रोटीन से है। तो आप अगर वेजिटेरियन है तो सत्तू को अपने डाइट में इंप्लीमेंट करिए मॉर्निंग इवनिंग। सत्तू का पाउडर आता है, देखिए नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत सोर्सेज है, वेजिटेरियन के ऊपर मैं बात करूंगी ज्यादा।
1: करेक्ट,
0: जैसे कि आपकी दाल हो गई, दाल आप खाइए, ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट कुछ तो मिलेगा। सेकेंडली

0: कड़ी जो दही के अंदर पेस्ट पे बनी हो, और योर राजमा, लोबिया, तो अलग अलग दिन एक एक चीज इनमें से जरूर लीजिए. देन सोयाबीन की वड़ी, तो ये अपने खाने में डाइट में हर रोज बनाइए. एंड इवनिंग के टाइम अगर आप एग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट दो अंडा खा सकते हैं, दो से तीन एग वाइट. और इसके साथ अगर आप फ्रूट्स ले हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो इन योर एवरीडे डाइट, खीरा, ककड़ी, योर वाटरमेलन, मस्क मेलन इन योर फ्रूट्स, जो बेरीज आती हैं जो वाइटामिन सी रिच होती है, आंवला अगर डाल सकते हैं आप हर चीज में, किसी भी फॉर्म में, जूस में ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, अचार ले लीजिए, कुछ भी, एक पूरा आंवला खाइए. सो आपका स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होके ग्लो करेगा.
1: That's very nice, ma'am. That's very nice. Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर दशा सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करती है, बल्कि इनफैक्ट वो एक इंस्पायरिंग, जैसे कहते हैं ना, इंस्पायरिंग वाली फीलिंग्स अंदर से आना, इंस्पायर होना, वो एक अमेजिंग लेडी है. मैम, इतना सारा कैसे आप मैनेज करते हो, मतलब खुद की लाइफ के लिए भी प्रोडक्टिविटी, और मतलब सबके लिए इतना सारा कुछ करना, मतलब अनबिलीवेबल. कैसे, मतलब इतना एनर्जेटिक रहा, अभी भी आप इतना एनर्जी साउंड कर रहे हो.
0: I am already working in the clinic. I have one patient already lined on, two people waiting outside.
1: Oh my God.
0: But the point is this, that see, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, I practice what I preach. मैं जितनी कहानी सुना रही हूँ चार लोगों को, मैं अपने ऊपर भी personally वो use कर रही हूँ. That is why I know how it works. मुझे पता है उसका क्या result है और वो कैसे काम करता है.
1: That's very nice, ma'am. And I think मुझे लगता है कि हर एक women कुछ special कर सकती है अगर वो कुछ अच्छा ठान ले तो करने का.
0: True, आज की तारीख में women, men, they're all doing the same.
1: 100%.
0: So, ऐसा कोई वो specific कब है नहीं रहेगा.
1: True. अच्छा मैम, मैं एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैंने जब मैंने कल आपसे बात करी थी, तो आपने एक स्माइल के बारे में बात करी थी कि घूमी हुई स्माइल ठीक करना, एंड जिनकी चीन शेप में नहीं होती है वो इम्प्रूव करना, फेस का वॉल्यूम वापस लाना, वो सब कुछ कैसे, मतलब थोड़ा सा उसके विषय में अगर मैं जानना चाहूँ तो.
0: बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स ओनली,
1: yeah.
0: जो मेरी एक्सपर्टीज है. तो जैसे किसी के गम्स दिख रहे होते हैं स्माइल करते समय, उसको हम गम्स को नीचे ला सकते हैं, हल्का सा बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बॉटुलिनम टॉक्सिन को डाल के आपके लिप्स नीचे आ जाते हैं. इट इज अ 2 मिनट्स प्रोसीजर, हार्डली कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 rupees, एंड आपके लिप्स जो गम्स दिखते हैं हंसते हुए वो चले जाते हैं. आपकी चिन कई बार होती है पीछे है, आपकी फेशियल प्रोफाइल में अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो चिन थोड़ी सी पीछे आ रही है, तो फोटोज में अच्छा नहीं लगता है, या आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे अच्छा नहीं लगता है. सो वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ डर्मल फिलर. इमीडिएटली यू सी रिजल्ट्स विद इट, एंड वो आपको अगले एक साल तक लास्ट करता है एक सेशन आपका. एंड सिमिलरली ऐसी और चीजें होती है, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो नाक आपकी फ्लेयर हो रही है, तो हम हल्का सा स्प्रे बॉटुलिनम टॉक्सिन देते हैं और आपके नोज को पतला कर देते हैं. इट लुक्स लाइक कि आपने सर्जरी कराई है, बट सर्जरी नहीं होती है, 5 मिनट का काम होता है जिसको हम नेजल फ्लेयरिंग का बोटॉक्स बोलते हैं.
1: दीज
0: आर सम ट्वीक ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को और फेस को काफी एस्थेटिक बना सकता है.
1: That's very nice, ma'am. कितनी सारी चीजें आजकल आ गई, लोग सिर्फ AI पे ही निर्भर रह गए. भाई AI से आगे भी दुनिया आ गई. आई नो AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे आसपास जो कि हमें पता ही नहीं है. इनफैक्ट
0: True.
1: Yeah. Well, thank you so much, Dr. Dasha ma'am. अपना टाइम आपने हमारे लिसनर्स को दिया. थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू. एंड सच बताऊँ तो मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन कैसे 20 मिनट हो गए, अनबिलीवेबल.
0: सीरियसली थैंक यू सो मच. आई नो हम लोगों को 10 मिनट बात करनी थी, वी आर ऑलरेडी डन 20 मिनट्स. थैंक यू सो मच आरजे आनंद.
1: जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती हैं, तमाम ऑडियंस आपकी आवाज सुन रही है रेडियो पर.
0: जस्ट बी फिट एंड बी योर ऑसम सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से टू एवरीवन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वंडरफुल मैसेज.
0: आप मुझे सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ ऑन FM मुरादाबाद, एंड आई एम डॉक्टर दिशा जग्गी, एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर दिशा जग्गी.
1: लवली टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू सो मच. बाय बाय मैम.
0: थैंक यू. बाय बाय.
1: नाइस डे मैम. थैंक यू.
0: बाय बाय.
1: गाइस, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के साथ. तब तक के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन. स्टे कनेक्टेड.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक

0: एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
3: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट आरजे छाया और आप सुन रहे हैं मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। मौजूद है आपके साथ लेकर अपना नया कार्यक्रम विशेष बातचीत, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मनोज वर्मा मनुजी। आपको बता दे दोस्तों कि मनोज मनुजी एक कवि, गजल, गीत, नज्म और दोहे जैसी रचनाएं करते हैं, और आज के इस विशेष बातचीत में हम सुनेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी की कुछ रचनाओं को, और साहित्य जगत से जुड़े हुए होंगे कुछ सवाल जवाब। तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद छाया जी।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
1: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में, मेरे परिवार की देन है, और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सतरूपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
0: हाँ जी जी जी। तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे, उस समय और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, जनपद रामपुर जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे। तो और बंदा अपने दिल की बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें।
1: शुक्रिया
0: जी। जी, तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है, क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
1: मकतवेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो छाया जी, मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है, और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना, ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है?
1: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली हुई होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती। तो शायरी के कई पक्ष हैं, ये सामाजिकता को लिए हुई होती है और अपने दिल के जज्बों को भी समेटे हुए होती है। तो जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्क दर वर्क पन्ने खुलते चले जाएंगे।
0: वैसे ये जो मुक्तक था काफी अच्छा लगा हमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुक्तक आपको इतना पसंद क्यों है,
1: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो यकायक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं। और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद।
0: क्या बात है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए, ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाएं।
1: जरूर, देखिए गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है, तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साज साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आप के आवाज और अंदाज को शामिल करते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये किसी भी रचना के शिल्प और उसकी अदायगी का प्रश्न है। परंपरागत तौर पर शायरी का अपना ही एक व्याकरण है, बाकी कंटेंट के रूप में सामाजिक और मानविक मूल्यों के उठाए गए सच्चे विषय जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये बात अंदाजे बयां को एक पुख्तगी और एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज से एक पुख्तगी आती है। जब हम सच कहेंगे तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, हमें एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
1: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
1: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है, तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं हमारे श्रोताओं और हमारे दिल को सीधा ही संपर्क कर रही हैं, और इसी के साथ
1: शुक्रिया।
0: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथकों और सुनने वालों के साथ कितना संपर्क रखता है।
1: जी, मैंने बताया कि सुनने वालों को जो इंटरेक्ट करता है, जो संपर्क रखता है, वो अपने आप में विलक्षण होता है। जैसे हम कभी कोई भी बात अगर प्रोज में या गद्य में पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ शेर जो आज से सदियों पहले कहे गए आज भी बिल्कुल वैसे ही और उसी ताजगी के साथ जिंदा हैं। इसलिए इसका इंटरेक्शन और इसका जुड़ाव यकीनन बहुत अच्छा है।
0: जी जी, जरूर सही कहा आपने। वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है शायरी और गजल, और इसीलिए आपकी और हमारी मुलाकात हुई है इस विशेष बातचीत में। अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप अपने विचार में गजल और शायरी के भविष्य पर कुछ विचार देना चाहेंगे।
1: जी जी, गजल और शायरी का भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और हमेशा से उज्जवल रहेगा। हाँ, अगर शायरी केवल बादशाहों के हरम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है। तो यूथ का जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूंगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों,

0: जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों, किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों, अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों। और अभी तो शम रोशन है ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों, जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की तो, जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की तो, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, रहवा के रुक के जानी भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
0: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। और ये गजल के दो मिसरे भी इसमें है कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
1: क्या बात है, जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना।
0: जी, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इस समय क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुंचाना चाहूंगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, और जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
1: क्या खूब, क्या खूब,
0: शुक्रिया।
1: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ, किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा?
0: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश था मुशायरों का, तो ये टीन एज से ही हमें शौक लग गया था, तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था, इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीन एज से ही ये रोग हमारे साथ है। खैर।
1: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
0: जी, क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका कर संपर्क होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा। एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ पंक्तियाँ, शहर

लिए हुए। इस गीत में आपको जो इससे संबंधित इतिहास है वो थोड़ा देखने मिलेगा, उसकी झलक मिलेगी। तो मैं रखता हूँ। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने

लिए हुए। ये पीतल लकड़ी कहलाता है, विश्वविख्यात है और नक्काशी यहाँ का मेन वर्क है। तो नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाए, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमाएं क्या क्या दिखलाए। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाए, हुक्का बर्तन आभूषण प्रति

0: अपने शहर मुरादाबाद को आपने बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरोया है और इसका वर्णन किया है, बहुत अच्छा लगा हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। इस एपिसोड का ये हमारा विशेष बातचीत का कार्यक्रम और इसका पहला एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं और इसका पुनः प्रसारण आप कल सुनेंगे 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इसका फीडबैक मैं अपने शो यानी छाया गीत के शो में जरूर लेना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा पसंद
1: आया। साथियों अब तुम्हारे हवाले।

सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने

0: और इसी गीत के साथ आज का ये गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चेतन को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं, उसी पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक

मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल

0: तक मूसलाधार बारिश की आशंका और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य

0: मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। तो इस समय हो रहे हैं 9:09 और आप लोग भी अपने अपने कार्यक्रम से मतलब कार्यस्थल से 9:11 हो ही गए होंगे, चल दिए होंगे अपने घर की तरफ या फिर घर वालों के साथ कहीं घूमने की तरफ। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और अगर मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हॉर्न भी ज़्यादा नहीं बजाना है, कहीं भी भीड़ भाड़ हो चुपचाप निकल जाना है। अगर कोई गलत साइड चल रहा है तो उसे इशारा कर देना है, साहब अपनी साइड में आ जाओ, गलत साइड बिल्कुल मत चलो। तो चलिए आपकी भी फरमाइश लेंगे, आज खूब सारी बातें होंगे। जैसे कि पता है कि 15 अगस्त परसों ही आने वाला है, तो खूब सारी तैयारी चल रही है, खूब सारे प्रोग्राम्स शेड्यूल हुए हुए हैं। किसी ने अपनी छुट्टी शेड्यूल कर रखी है तो किसी ने मेहमान को बुला रखा है कि भैया आ जाना, 15 अगस्त को छुट्टी है ही, सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो या तो आप आ जाओ हमारे घर या हम आपके घर आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। चलिए बात करते हैं अपने एक लिसनर से और उसके बाद करेंगे खूब सारी बातें, क्योंकि आज होगी दिल से दिल की बात, ना कोई स्पेशल टॉपिक ना कुछ, क्योंकि पूरी आज़ादी है साहब आपको भी अपनी बात कहने की। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हेलो दिल से दिल तक सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या कर रहे हैं साहब आप?
1: सर इस टाइम तो मैं बैठा था खाना वाना खा के, वो मैं प्रोग्राम सुन रहा था, काफी अच्छा लग रहा था, सोचा कॉल लगा ली जाए। सर कॉल लग के अच्छा लग रहा आपसे बात करके। सर गर्मी बहुत है आज,
0: अभी तो प्रोग्राम की शुरुआत आप ही से हुई है इशरत जी। तो इशरत जी ये बताइए कि 15 अगस्त की आपकी क्या तैयारी है, कौन सा जो है गाना आप ज्यादा गुनगुनाते हैं अपने देशभक्ति का?
1: 15 अगस्त मेरा देश मेरा मतलब वाली मूवी नहीं है, अजय देवगन की वाला गाना भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा देश मेरा ये वतन है, वतन है वतन, सर काफी अच्छा में सॉन्ग लगता है।
0: क्या बात, अच्छा है, मतलब ये गाना ऑलमोस्ट आप जो है जब भी देश प्रेम ऐसा कुछ होता है तो आप ये पहले गाना गुनगुनाते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये काफी मतलब फेमस होता है गाना ये, 15 अगस्त 26 जनवरी पे।
0: ये तो है, ये कोई बहुत सारे गाने हैं जो अपने देश से जुड़े हुए और हमेशा अच्छे लगते हैं। और वैसे कहूँगा मैं जो भी जिस गाने में भी
1: एक गाना जो अभी आपने पहले किया था जलवा मेरा जलवा, सर ये भी अच्छा गाना काफी फेमस है ये भी, ये सुन रहा था गाना।
0: तो अभी आपकी कौन सी गाने की फरमाइश है?
1: गाने के बोले हैं मुझे लहंगा चोली सिला दे, नाचूंगी सारी रात में। सर उससे पहले मैं जानकारी चाहता हूँ मुरादाबाद के मौसम कैसा आज का?
0: मुरादाबाद का मौसम भी सही है, जैसा मौसम आपको मिल रहा है उससे थोड़ा ऊपर नीचे है, मगर है अच्छा।
1: सर काफी गर्म है इधर तो, आज सर ज्यादा गर्म है, हवा नहीं चल रही ना?
0: ये तो है, हवा आज नहीं चल रही है,
1: लगता है बारिश होगी 1-2 घंटे में,
0: मगर होती नहीं है साहब बारिश, लगता तो बिल्कुल ही ऐसी है बारिश हो जाएगी,
1: लग के रह जाता है,
0: बारिश होती नहीं है, मगर उम्मीद है कि कल और परसों में कुछ मौसम खुले और बादल आए और हमें दिखे।
1: मैं तो ये देखता हूँ जब नींद का टाइम हो जाता है 2-2.5 बजे से तब बारिश होती है।
0: आज हमारे यहाँ भी बारिश हुई थी, मगर शाम को जब हुई बारिश तो थोड़ी देर के लिए हुई थी, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया इस वजह से। और होता क्या है कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ही हिस्सों में बारिश हो रही होती है और कुछ हिस्से में आपकी बारिश नहीं हो रही थी। अगर हमारे मुरादाबाद में देखा जाए तो आज मानसरोवर की तरफ बहुत बारिश हुई दिल्ली रोड पे, और उधर कांट रोड पे बूंद भी नहीं गिरी।
1: सर हमारा फॉर मतलब 3 किलोमीटर दूर हमारे गांव से, तो हमारे फॉर में होकर रह जाती है और हमारे गांव में नहीं होती है।
0: होता रहता है ऐसा, हुआ ऐसा मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, लोको शेड का फ्लाईओवर का एक तरफ आया तो बारिश ही बारिश और दूसरी तरफ गया तो भाई सब बिल्कुल सूखा था। तो ये भी कुदरत का खेल है, मजा ये भी अच्छा लगता है।
1: सर ये कुदरत के नजारे हैं।
0: तो चलिए आपका भी फरमाइश पूरी करते हैं, कोई बात आज कहने जाए, क्योंकि आज हम जैसे आजादी है तो आज हम बोलने की भी आजादी दे रहे हैं, मगर हाँ ऐसी भी कोई बात
1: कहने का मतलब ये सब आपस में भाईचारे के संग रहे और किसी के साथ में बुरा नहीं करें, और किसी के साथ में मतलब बुरा भी हो तो सही करते हैं, एक दूसरे का साथ दें और आपस में भाईचारे के संग रहें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के दौर में ऐसा कोई है नहीं, आपस में तो सर बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, ये दुनिया हो गई है मतलब ही, बस अपनी अपनी हो रही है आज के दौर में।
0: बिल्कुल
1: देख
0: सही
1: रहे हो।
0: सही सही, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अभी भी आप भी अपने मतलब का गाना हमें सजेस्ट कर देंगे और हम प्ले कर देंगे। ये
1: भाईचारे से
0: मजाक
1: करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा ना सर, गलत बहुत हो रहा है आज के टाइम में, मैं देख रहा हूँ
0: सर, सही करेंगे। अगर हम सही रहेंगे तो सब कुछ सही होगा।
1: सर। हम तो सही है मगर दूसरा सही नहीं है ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ मगर कुछ ऐसे हैं सर सही नहीं है देखा जाए तो।
0: बिल्कुल सही
1: ये
0: कह
1: तो
0: रहे
1: हर
0: हैं।
1: बात गलत है, इंसान खुद सही रहे तो मतलब दूसरा जब भी सही रहेगा, दूसरा तो खैर अपने ऐसे रहेगा जैसा है।
0: कोई बात नहीं सर, आप भी बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, वो आजकल हम सभी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं बहुत ही जो है ना आज ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो
1: सर मैं
0: सभी
1: तो ये सोचता हूँ किसी के साथ में कुछ बुरा या किसी के साथ में गलत ना हो सर, मैं मतलब दूसरे बंदों को कोई बात भी हो जाती है मतलब बजवा देता हूँ, मैंने कहा ना अपने वजह से किसी को नुकसान पहुंचे सर,
0: बिल्कुल सही
1: कुछ
0: कहा,
1: बातें
0: और
1: मेरी
0: ऐसे ही
1: ऐसे हो
0: होना
1: जाती
0: चाहिए।
1: हैं सर,
0: कभी
1: मैं
0: कभी भी कुछ गलत होता हो नजर आए तो आवाज़ तो उठानी चाहिए साहब।
1: सर जो मतलब मेरे साथ में कुछ गलत हो जाता है सर, मैं घर पे भी नहीं कहता हूँ कि मेरे संग ऐसा हो गया, तो घर वाले ही कहते हैं ये तो कुछ बदलाता नहीं है, मैं चाहता हूँ अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी दूसरे को दूसरा जैसे कटा करन दो सर तो खुश
0: बिल्कुल
1: रहेगा।
0: बिल्कुल सही। तो आज आप कौन
1: सर
0: सा गाना भरने के लिए कह रहे हैं ये बताइए हमें।
1: गाना जो सुनूंगा आज सर,
0: वो ही आप गाना भी सुनाएंगे एक बार, एक आध गाना सुनाएंगे, गा के भी सुनाएंगे,
1: मैं
0: एक आध बोल बोल दीजिए आज।
1: 15 अगस्त पे 15 अगस्त को लगाऊंगा, शो आएगा नहीं आएगा उस दिन,
0: 15 अगस्त पे शो आपको कल पता
1: नहीं
0: चलेगा।
1: आएगा शनिवार के दिन आ रहा ना सर शायद, हाँ तो उस टाइम तो नहीं आएगा।
0: तो आप आज ही सुना दीजिए कोई गाना, आज कोई गाना सुना दीजिए आप।
1: सर इस टाइम मौसम कुछ ऐसे हो रहा है ना, इस टाइम तो मैं नहीं सुना पाऊंगा और मतलब
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: करवा
0: हम सुना
1: पाऊंगा
0: देते हैं साहब। अली साहब, इशरत अली साहब, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल करी और हमें ज्वाइन किया आपने, और अपने अपने दिल की बात भी बोली। थैंक
1: सर। थैंक यू, नमस्कार सर।
0: यू सर। तो श्रोताओं, ये जुड़े थे हमारे साथ इशरत जी, कह रहे हैं आज मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ, बस खाना खा लिया है और छत पे जा रहा हूँ चारपाई लेके, बस चारपाई पे जाके लेटूंगा, आराम करूँगा और थोड़े से गाने सुनूंगा जो ही आपका प्रोग्राम चल रहा है। तो ज़रूर इशरत जी, आप भी एंजॉय करिए और आपकी पसंद का हम गाना प्ले करते हैं। तब तक आप लोगों के भी कोई दिल की बात हो तो हमें कॉल करें 9837896896 पे और बताएं कुछ भी, ऐसी आज़ादी जो दिल से आपकी निकली हुई हो बोलने की, किसी को विश करना हो या किसी को सरप्राइज देना हो तो ज़रूर हमें कॉल करें और खूब सारी गुफ्तगू करें।

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना रेडियो स्टेशन। कहते हैं ना साहब कि आज़ादी का मतलब सिर्फ एक अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। हाँ बिल्कुल सही, अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसको अच्छे से बड़ा करना, पूरा ग्रो करना, उसका ध्यान रखना, वो भी आपकी एक जिम्मेदारी है। आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं तब भी एक आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप सड़क पर एक्सीडेंट देखकर मदद करते हैं तो भी आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत केसेस में ऐसी होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो चलो मेरा क्या काम हो जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगी या 100 नंबर पर डायल कर दो, पुलिस आ जाएगी, वो देख लेंगे। मगर थोड़ा सा अगर हम कर सकते हैं तो साइड में रोक के अपने व्हीकल को आराम से, और एक बार देख के कि हाँ कैसी इमरजेंसी है, किस तरह का है, तो उसकी शायद कुछ आप मदद कर सकें किसी भी रूप में, कैसे भी रूप में। अगर कॉल भी कर सकें और किसी को बुला सकें हेल्प के लिए, वो भी एक तरह की मदद ही होती है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो भी आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो देशभक्ति जो है ना, हमेशा सीमा पर खड़े होकर नहीं की जा सकती है। हम लोग भी अपना पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे के और इस देशभक्ति में अपना अहम किरदार निभा सकते हैं। तो चलिए अपने नए लिसनर से बात

0: पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है इस समय।
1: हेलो
0: हेलो
1: अजय,
0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो धैर्य, कैसे हाल चाल है आपके? क्या कर रहे हो आप आजकल? 15 अगस्त की क्या तैयारी चल रही है आपकी?
1: 15 अगस्त की तैयारी तो हमारे स्कूल में गए थे हम। मैं तो फिलहाल मेरे स्कूल में परेड होगी और डांसिंग होगा और सिंगिंग कंपटीशन होगा।
0: तो हर साल जो है तुम तब तक रुकते हो जब तक तुम्हें लड्डू नहीं मिल जाता? अच्छा, इस साल? हाँ चलो, इस साल भी जो भी कुछ मिलेगा वो बचा के रख लेना, मैं आके शेयर करूंगा, ठीक है? और बताओ, परेड में आप क्या पार्टिसिपेट करते हो? आप ऐसे पार्टिसिपेट करते हो, लीड करते हो परेड में, कैसे करते हो आप परेड में?
1: हम लोग मतलब हमारा स्कूल ऐसे ही कि हमें हर एक हमारे मतलब 4 बुक्स है
0: ओके।
1: उनका नाम दे रखा है, हाउस है जैसे मैं ग्रीन हाउस में हूँ, एक रेड हाउस है, एक येलो हाउस है और एक ब्लू हाउस है। तो उसके हमारे एक कैप्टन होते हैं और एक वाइस कैप्टन होते हैं जो उसको लीड करेगा और एक हेड बॉय होता है जो सारा अनाउंसमेंट करता है, सारी चीजें देखता है क्या हो रहा है, कि नहीं हो रहा, कुछ वो कैप्टन अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देते हैं उनकी टीम जो कहते हैं
0: स्कूल
1: उसको
0: प्रिंसिपल मैम को जाती होगी सारी रिपोर्ट।
1: प्रिंसिपल मैम को नहीं, मतलब उनकी जो लीडर होती है ना ग्रुप की,
0: हाँ हाँ
1: टीचर वगैरह, उनको जाती है उनकी रिपोर्ट।
0: ओके ओके ओके। तो अगर कुछ भी कहीं भी कोई भी चीज मैसेज देना होता है तो वो हेड बॉय के थ्रू सभी ग्रुप के जितने भी हाउस के उनके लीडर्स पे आ जाता है और फिर वो अपने में कन्वे कर देते हैं और वैसी ही परफॉर्मेंस होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो धैर्य, कौन सा ऐसा गाना है जो तुम्हारे को बहुत, जब भी सुनते हो तो ऐसा लगता है कि बस मैं बॉर्डर हूँ, मैं ही एक आर्मी का क्या कहते हैं ना, मिलिट्री पर्सन बन गया हूँ या मैं फिर आर्मी से जुड़ गया हूँ, कोई ऐसा होता है ना कभी कभी गाना सुन के अच्छा लगता है बहुत ही देशभक्ति वाला? अच्छे लगते हैं तो चलो आज हम भी आपको एक देशभक्ति का अपना फेवरेट गाना आपको जरूर सुनाएंगे, ठीक है? और आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? अपने दोस्तों के नाम बोल दो। किसको? आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है आपको, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं आप? इंडियन आर्मी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। जय हिंद जय भारत, और जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। बाय बाय धैर्य। तो श्रोताओं, ये जुड़े थे हमारे साथ धैर्य जी, जो अभी स्कूल में खूब अपनी पार्टिसिपेशन में लगे हुए हैं। परेड होने वाली है, इनके यहाँ भी खूब एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में और ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा करते हैं। साहब, ये समय ही ऐसा होता है कि जब भी ऐसे दिन आते हैं, जब भी कोई ऐसा फंक्शन आ रहा होता है, जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम स्कूल में होने वाले होते हैं, तो खुद से अंदर से आवाज़ आती है कि चलो चलो, लड्डू तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर पहले कुछ पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं एक गाना आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, हमारी तरफ से भी, धैर्य की तरफ से भी, और उसके बाद मिलेंगे, छोटी छोटी सी बातों को लेके दिल की बात करेंगे। 9837896896 पे आप कॉल भी करें और हमें मैसेज भी करें और अपनी फरमाइश भेजते रहें।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, और ये आपका अपना ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। तो खूब सारी बातें हो रही हैं, खूब सारी दिल की मुलाकातें हो रही हैं, और 15 अगस्त जैसे ऐसे पास आ रहा है, अपनी देशभक्ति की भी आवाज़ें ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। तो मेरे पास मैसेज आया है रोहित जी का रामपुर से, कहते हैं, अखिल भाई मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूं। तो क्या बात है रोहित जी, यही तो असली आज़ादी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सपनों को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए और अपनों को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि उसे पूरा कर सकें। सपना आपका हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने की मेहनत भी तो आप ही की होनी चाहिए ना। हमारे पास दूसरा मैसेज आया है संगीता जी का बरेली से, क्या बात है, आज आसपास तक नेटवर्क पूरा पूरा है अपना। वो ये कह रही हैं कि मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है कि लड़कियां बिना डर के पढ़ें, काम करें और अपने फैसले खुद लें। तो क्या बात संगीता जी, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। किसी भी समाज की जो है ना असली आज़ादी तभी है जब वहाँ की बेटियाँ, उसकी बेटियाँ बिना डर के सपने देख सकें, और जब वो सपने देखेंगे ना तो 100% है आसपास के लोग खुद ब खुद उन चीज़ों को फॉलो करना चालू करेंगे। तो चलिए अपने लिसनर से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो आज। हेलो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल।
0: रणवीर सिंह जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: आपके गाने सुनना है और आपके पलाव में बैठे हैं, बस उनकी सितारों के पलाव में बैठे।
0: बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक आध सितारा ऊपर से तोड़ लाइएगा। बिल्कुल सही कह दिया आपने, चांद पे चांद लगा दिया साहब।
1: चार चांद कहते हैं ना, हम तो आठ चांद कह रहे हैं।
0: तो और कुछ सुनाएंगे आज आप रणवीर जी?
1: हाँ जी, गाना तो पहले समझ लो हमारा।
0: हाँ आपका गाना भी समझ लेंगे, पहले अपनी कोई शायरी सुना दीजिए।
1: गाने को पहले शायरी अच्छी लगेगी
0: तो बताइए बताइए साहब।
1: बेवफा सनम का गाना है, कहाँ गया बेदर्दी मन को तरसा के।
0: कहाँ गया बेदर्दी मन को तरसा के।
1: तरसा के जी, अब कैसे कह लो आप? आप तो मालिक का था, आप तो हमारे पैर पे बैठे हैं, कैसे आपको हो गया? सही बात, सही सही है सब। आप
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप शायरी भी सुना दीजिए।
1: सुनाए सर।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: भूल जाए तुम्हें कोई इरादा नहीं है, भूल जाए तुम्हें कोई इरादा नहीं है, तेरे सिवा किसी से कोई वादा नहीं है, निकाल देते इस दिल से तुमको। सुनिए सर।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: निकाल देते इस दिल से तुमको, मगर इस नादान दिल में अखिल सर कोई दरवाजा ही नहीं है।
0: क्या बात है क्या बात है, अच्छी बात है। दिल में दरवाजा होने नहीं चाहिए, एक ही सिंगल डोर होना चाहिए, बस अंदर आ जाए फटाफट चटकनी बंद कर ली जाए।
1: भाई भाई क्या बात है, क्या बात है।
0: धन्यवाद रणवीर जी, आप जुड़े और आपने इतनी अच्छी बात बोली, और आपका ये गाना हम अभी प्ले करते हैं और आपकी फरमाइश ही पूरी करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, सुनाइए।
1: आजादी के लिए जिन्होंने लड़ी कठिन लड़ाई थी, आओ धन्यवाद करें हम उनका जिन्होंने हमें आजादी दिलाई।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इनका तो जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है जो इतनी हमें।
1: क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, धन्यवाद तो आपका है।
0: नहीं नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया रणवीर जी, और बहुत अच्छा लगा।
1: एक बात बताइए सर आप।
0: हाँ जी सर बताइए, पूछिए पूछिए।
1: आप कौन सी वो मिल की चीनी खाते हैं जो आपकी आवाज इतनी मीठी है?
0: साहब ये कुछ कुछ तो राज रहने दीजिए, अब सारी आपको बता देंगे, पता चला आप मिली बंद कराने पहुंच गए तो कैसे होगा काम।
1: भाई भाई क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार सर, शुभ रात्रि।
0: नमस्कार जी रणवीर जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे रणवीर जी, और उन्होंने खूब कड़ी दिल की बात आज सुनाई, दो दो शायरी भी, एक आज़ादी के ऊपर और एक अपने दिल के ऊपर। बहुत ही अच्छा लगा, और कहते हैं ना जब आपको लिसनर्स ऐसे इतने अच्छे और दिल के करीब मिल जाते हैं तो सारी दिल की बातें ऐसे ही निकलती। तो चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है जो आपके दिल से जुड़ी हुई है और अपने इस 15 अगस्त के उसके उपलक्ष्य में भी आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ भी आपके दिल से ऐसी कोई शायरी या कोई बात निकल रही तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें 9837896896 पर। चलिए इस गाने के बाद मिलते हैं आपसे।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और कहते हैं ना जी कि जैसे जैसे शो का टाइम नज़दीक हो रहा है ख़त्म होने का, वैसे ही वैसे थोड़ी सी धड़कने और थोड़ी सी बातें जो है ना कहने का बहुत मन करता है। कॉल नहीं उठा पाते, कॉल नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, कभी कभी नंबर बिजी आता, मगर बातें तो करनी है ना साहब, कुछ तो निकालना ही है अपने दिल से बाहर। तो चलिए करते हैं बात अपने नए लिसनर से। हेलो नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: जी नमस्कार सर, सबसे पहले अखिल जी को, अखिल जी के साथ साथ सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नूर का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, क्या कर रहे हैं नूर साहब इस समय आप?

0: इस समय तो आपका शो सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। सर
1: और वैसे क्या काम करते हैं आप?
0: मेरा फर्नीचर का शोरूम है, साथ साथ मेरी प्रिंटिंग प्रेस है। नहीं,
1: कहाँ? यहीं मुरादाबाद में, करनपुर
0: करणपुर में।
1: में। तो नूर जी, आज आप जब बातें सुन रहे हैं, हमारा एफएम सुन रहे हैं, तो हम बातें कर रहे हैं कि जैसे जैसे 15 अगस्त पास में आता है ना, तो कुछ ना कुछ दिल की बातें, दिल की आज़ादी निकल के आती है। तो ऐसी कोई बात जो आपकी भी बहुत करीब हो, स्कूल में कभी आपने 15 अगस्त पे कोई फंक्शन किया हो या कुछ ऐसा प्रोग्राम किया हो जो आज तक आपको याद है?
0: नहीं सर, मैंने कभी स्कूल लाइफ में कोई ऐसा वो फंक्शन किया ही नहीं। नहीं
1: आपने ऐसा कभी कोई फंक्शन नहीं किया? मगर
0: सर, मैं आज तक स्टेज पे नहीं गया।
1: आप आज तक
0: मैं सर अपनी स्कूल लाइफ में कभी स्टेज पे नहीं गया।
1: स्टेज पे नहीं गए? तो मगर वहाँ
0: नहीं
1: से लाइन में खड़े होके तो देखते होंगे कि स्टेज पे कभी कुछ हो रहा है।
0: हाँ सर, देखते थे
1: तो 15 अगस्त को क्या लड्डू मिलते थे आपको या टॉफी मिलके काम हो जाता था आपका?
0: सर, हमारे जमाने में नुक्ती बोलती थी।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आपको कोई शायरी या कोई ऐसी बात जो आपको याद है या सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने श्रोताओं से?
0: आज तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा जितने भी मेरे दोस्त इस समय मुझे सुन रहे हैं,
1: हाँ
0: सब
1: जी,
0: हंसी खुशी रहे, साथ साथ में 15 अगस्त को मतलब अच्छे से मनाएं।
1: बहुत बढ़िया साहब। कोई गाना आप जो डेडिकेट करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपने कॉल करी है?
0: सर मेरा एक फेवरेट गाना है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है।
1: क्या बात है साहब, ये बहुत बढ़िया है। ये दिलरुबा देश ही क्यों नहीं हो। तो किसी को आप किसी का नाम बोलना चाहेंगे
0: नाम तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी सर
1: जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, कहना ये कहना चाहेंगे आप?
0: सर समझदार तो नहीं, समझदार तो भाई ही है।
1: चलिए साहब, तो बहुत आया, कम से कम आपका ये गाना जो भी डेडिकेटेड है उन्हें उन्हें पहुंचे और खूब अच्छे से एंजॉय करें आप। धन्यवाद नूर। तो ये थे हमारे साथ नूर साहब, कह रहे हैं कि 15 अगस्त मनाना है, खूब अच्छे से मिल भाव के, देशभक्ति की एक भावना के साथ रहना है। और इन्होंने इतना पार्टिसिपेशन तो नहीं किया, मगर हाँ, तब भी जब भी स्कूल में थे, लाइन से अपनी खड़े होके या उस प्रोग्राम का एक हिस्सा बन के भी खूब एन्जॉय करते थे और खूब उसका आनंद लेते थे। तो चलिए आज उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, मेरा दिल जिस पे फिदा है। और क्योंकि शो का टाइम बिल्कुल उसके परवान 10 बजने वाले हैं और आपकी हमारी गुफ्तगू जो है बिल्कुल अंत समय तक आ गई है, तो चलिए करते हैं पहले इस गाने को एंजॉय, फिर करते हैं आपसे बात।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। मिट्टी की खुशबू से रिश्ता हमारा पुराना है, इस देश की मिट्टी ने ही हमें पहचाना है। तिरंगा रहे हमेशा ऊंचा आसमान में, यही तो हर हिंदुस्तानी का सपना सुहाना है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि हर चीज़ जितनी भी दिल से चाहो वो उतनी ही आपके पास करीब आने लगती है, और अब धीरे धीरे आती है वाली जो फीलिंग्स होती है आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो खूब आपको एकदम मोटिवेट करती है कि हाँ कि अब तो शायद अच्छा होने वाला अपने साथ। तो चलने का समय आ गया है, और उस चलने के समय से पहले हमारे साथ एक लिसनर है जो जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और फिर आपसे करेंगे मुलाकात कल। तो चलिए पहले सुनते हैं अपने लिसनर से क्या कहते हैं वो आज अपने दिल से। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका सर? नमस्कार जी। नमस्कार, क्या रामधन जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है। आप लोग सुनाओ सर्दियों के बारे में
0: कैसा है इस समय मौसम वहाँ पे?
1: मौसम भाई साहब बस पूछूंगा तो घर के मुरादाबाद का मौसम इस समय बहुत गर्मी का हो रहा है, हवा चल नहीं पा रही।
0: तो साहब जब हवा नहीं चल पा रही है तो हमें कहीं ना कहीं तो उसे धक्का देना पड़ेगा ना कि भैया तेज से इस भाग। तो
1: हवा चल जाएगी सभी लोगों को राहत मिल जाती है।
0: हाँ, ये तो है सर। तो रामधन जी, जैसे आज बातें चल रही हैं 15 अगस्त को लेकर, कि जैसे जैसे 15 अगस्त पास आ रहा है तो अंदर ही थोड़ी सी फीलिंग्स होती है ना अपने अंदर कि हाँ कुछ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: जी कुछ कहना तो चाहेंगे जो 15 अगस्त जो परसों घर के आने वाली है इस समय,
0: हाँ जी।
1: तो ये सभी देशवासियों के लिए सबका माहौल है।
0: बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात कही है आपने।
1: और सर ये है कि जो घर के देश आज़ाद करा रहे थे सभी लोगों के धन्यवाद चाहते हैं सब लोग हम।
0: बहुत बढ़िया बात साहब, बहुत ही अच्छी बात कही आपने ये भी कि सभी लोगों का साथ रहे और तभी सभी का साथ विकास रहे,
1: जी सब मिलकर के अपने इसको झंडा का उत्सव मनाएं
0: अपने अपने देश की, क्योंकि हम लोग अगर साथ रहेंगे तभी तो अपने देश के निर्माण में एक तरीके से कहते हैं ना हम योगदान दे रहे हैं सबके साथ।
1: जी सर। जब हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी का तो
0: बिल्कुल सही कहा, ईमानदारी से अपना काम करते रहें, सड़क पे अगर चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स को ही फॉलो करते रहें, पानी और बिजली भी बचाते रहें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते रहें और अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप इस उसमें सब सभी हमारे श्रोताओं को?
1: भैया जी आज गाना हमें नाम फिल्म का सुनवा दीजिए, चिट्ठी आई है पतन से, चिट्ठी आई है।
0: जरूर साहब जरूर। आप चिट्ठियाँ आपके पास वैसे आई हैं कभी? चिट्ठियाँ जी कभी लिखी हैं आपने भी चिट्ठियाँ?
1: सर बहुत चिट्ठियाँ आती थी पहले, चिट्ठी वगैरह बॉक्स वगैरह में आती थी, इस समय तो मोबाइल का मामला चल रहा है
0: सर। अब तो सर व्हाट्सएप चिट्ठी आती है, पहले तो एक पोस्ट कार्ड होता था जिसपे अपना टिकट लगा के चिट्ठियाँ लिखते थे, लिमिटेड स्पेस होती थी उसी के अंदर सब कुछ, एक एक छोटी छोटी लाइन लिख के
1: बस उसमें सारी चीजें लिख करके भेज दिया करते थे,
0: कि दूसरा पोस्ट कार्ड खर्च ना करना पड़े, एक ही पोस्ट कार्ड में सारी खर्च बातें हो जाए। चलिए साहब बहुत ही शुक्रिया रामधन जी, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी बात बोली।
1: भैया जी कोई बात करना चाहते हैं?
0: हाँ हाँ बताइए
1: भैया जी, एक दो आदमी का नाम ले सकते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे करीबी आदमी।
0: जरूर जरूर लीजिए साहब।
1: भैया जी एक घर के करनपुर से नूर है भैया,
0: करनपुर से, जिनका अभी कॉल आया था आपसे पहले।
1: जी जी उनका कॉल आया था।
0: क्या बात है, वो देखिए साहब नूर साहब आपकी बात है एकदम एकदम, इसे कहते हैं एकदम आपकी, आपसे भी बात हो गई आज और आपके एक जो दोस्त हैं उनसे भी बात हो गई।
1: जी भैया घर के करंट ये बहुत तो खुद से रजा होते हैं थे, वो तो पता नहीं कॉल करते हैं नहीं, उनको भी सभी लोगों के लिए हम गाना सुना
0: सुन रहे होंगे आज, रजा हुसैन साहब सुन रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको चिट्ठी लिख देंगे साहब।
1: करीबी आदमी हमारे सभी ये श्रोता लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं और सभी खुश हैं हम लोग।
0: चलिए साहब बहुत अच्छा सर, सभी खुश रहें, सभी मस्त रहें और सभी स्वस्थ भी रहें।
1: हाँ जी भैया बस ये झंडा फिरवा तो ये गाना हमारा
0: ठीक है साहब। श्रोताओं ये जुड़े थे हमारे साथ रामधन जी, जिनकी हमने लिए आज लास्ट कॉल और खूब सारी बातें भी हुई उनसे, खूब उन्होंने देश हित की बात हमारे साथ शेयर करी, अपने दोस्तों के नाम भी बोले कि भैया ये मेरे दो दोस्त हैं नूर साहब और दूसरे साहब हमारे फैजान साहब, तो बहुत ही कहते हैं ना यही तो है जो आपके दिल से दिल के तार जुड़े हुए हैं, और शायद दूसरों के बाद सुन के एकदम कॉल भी आ जाता है कि अरे चलिए सर आज रामधन जी ने मेरे को याद किया तो हम भी आज उन्हें याद कर लेते हैं। मगर अब हमारा हो गया चलने का समय, और आज हम सब ने खूब इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग खूब सारी बातें करी, सेलिब्रेशन से बातें करी, चाहे वो धैर्य हो चाहे हमारे रामवीर साहब हो जेठालाल जी, तो सभी ने अपने अपने देश प्रेम की तो बातें करी हैं। मगर एक छोटा सा प्रॉमिस हमें खुद से भी करना है कि हमें अपने देश को, अपने इस देश के आगे को बढ़ने के लिए एक कोई ना कोई कार्य में बिल्कुल ईमानदारी से और स्वच्छ भाव से करनी है, कि देश के लिए कुछ ना कुछ करने की तो मैं कोशिश करूँगा ही करूँगा। मैं व्यवस्था से शिकायत करने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं कहूँगा नहीं कि कोई देश को बदल दे, मैं कहूँगा मैं शुरुआत खुद से करूँगा, क्योंकि देश बदलने की शुरुआत संसद से नहीं हमारे घर से होती है, और घर बदलने की शुरुआत समाज से नहीं हमारे खुद के व्यवहार से होती है। तो दोस्तों आज की शाम एक दिन एक बात दिल में लेकर ज़रूर जाइए कि आज़ादी हमें मिली थी लेकिन देश को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वंदे मातरम के 150 वर्ष की यात्रा भी हमें याद दिलाती है कि कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। जी हाँ, वंदे मातरम के इस गीत को पूरे 150 वर्ष हो गए हैं पूरे, तो वो भी एक कहते हैं ना अपने में हम कितने लकी हैं कि हम इस समय में ये सब चीज़ें अपने सामने देख रहे हैं और इन्हें महसूस कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि देश के लिए ना अपना कंट्रीब्यूशन छोटा हो सकता है लेकिन कभी बेकार नहीं होता। आप किसी को मुस्कुराहट देते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, या पेड़ भी लगाते हैं, या ईमानदारी से काम करते हैं, तो किसी जवान का भी आप सम्मान करते हैं, तो आप अपने भारत को मजबूत ही कर रहे हैं। जाते जाते एक शायरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ना पूछो मेरे देश ने मुझे क्या दिया, ना पूछो मेरे देश ने मुझे क्या दिया, बस इतना पूछो मैंने देश को क्या दिया। मेरी सांसों में इसकी मिट्टी की खुशबू रहे, मेरी हर कोशिश में भारत का नाम रहे। तो इसी के साथ मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और यह था आपका शो दिल से दिल तक अखिल संग, जिसमें आपने अपने दिल से खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं ना वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे आपके साथ इसी शो पे, इसी स्टूडियो में, FM मुरादाबाद 89.6 पर।
2: सुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था। लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यही उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यहीं से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे, वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोता को बताइए आप।
1: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
0: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
1: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
0: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
0: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
1: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर से मैं बोलूंगा।
0: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
1: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस है या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
0: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
1: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
1: हाँ, बिल्कुल बना सकता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में, अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी वसीयत, अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट्स हैं, उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए, कोई भी अगर लगता है आपको कि कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
1: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
0: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
1: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
1: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
0: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
0: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
1: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो, एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी हैं, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
0: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
1: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
0: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
1: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती हैं जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
0: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
1: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
0: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
1: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होके घर चले आना है, बस बात खत्म। तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में, और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस कि लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते।
0: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार। जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत

0: क्या किया जा सकता है?
1: देखिए, संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी, साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे, जो भी अदालत, जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब एक उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके,
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके, क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित, हाँ, आप कोई भी, अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए, वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए के रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते तो बता दीजिए और नहीं बताना तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है, मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो है रिकनसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉ या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आपका मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजोल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए, यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्बद्ध वसीयत बनवाएं, जो भी एस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें, और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए, और ये सेफ है प्योरली, और जो है आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए, संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें, और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें, और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें, और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी
0: होता
1: है, उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात होगी, वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे यहाँ।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है, और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है।

और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर, जो आज क्लियर हो गया है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।